ये आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ माह की 22वीं तिथि, तदनुसार 13 जुलाई सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा।

ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में यानी सुबह के 6 बजे होंगे हिंदी में समाचार, अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए प्रतीक्षा करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैंबर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। श्री गोयल 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। सहकारिता मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम के दौरान वे एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत पौधा लगाएंगे और अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार किए गए एक विशेष प्रकाशन का विमोचन करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव इसका शुभारंभ करेंगे। इसका उद्देश्य वैश्विक क्षमता केंद्र, डेटा केंद्र और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के लिए राज्य सरकार के दृष्टिकोण को भी साझा करेंगे। वे निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करने के लिए उद्योगपतियों के साथ बैठक भी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहा है। मंत्रालय के अनुसार प्रतियोगिताएं जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाएंगी। 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिंदी, अंग्रेजी और किसी भी क्षेत्रीय भाषा में अपनी प्रविष्टियां भेज सकेंगे। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों से मुक्त और बिना रुकावट नौ वहन को जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय के बयान में इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जलपोतों पर लगातार हमलों की घटनाओं पर चिंता प्रकट की गई है।
1: भारत ने तनाव को तुरंत कम करने और कूटनीतिक समाधान के लिए बातचीत को शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचाने की मांग दोहराई है ताकि इस इलाके में शांति और स्थिरता कायम की जा सके। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक ठिकानों को निशाना बनाना बंद होना चाहिए। भारत ने ओमान तट के पास वाणिज्यिक पोत GFS गैलेक्सी पर हमले की कड़ी निंदा की है। पोत पर सवार 11 भारतीयों में से 10 को सुरक्षित बचा लिया गया है जबकि एक लापता है। ओमान में भारतीय दूतावास स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है और खोज तथा बचाव अभियान में ओमान के अधिकारियों के साथ समन्वय कर रहा है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: कोलंबिया के बुकारामांगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में भारत के 5 विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत बेंदाले, नई दिल्ली के ऋषित गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरित जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने रूस, चीन, कजाखस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से पहला स्थान हासिल किया। 87 देश के 381 विद्यार्थियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल मुकाबले तय हो गए हैं। पहला सेमीफाइनल बुधवार को फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल गुरुवार को इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच खेला जाएगा। इंग्लैंड ने नॉर्वे को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है अर्चना का। आरंभ कर रहे हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

0: अभी श्रोता भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है कार्यक्रम विवरण का। सुबह 6:30 पर श्रोता सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीत होंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुबह 6:40 पर। दैनिक वैचारिक क्रम सुबह सुबह आप 7 बजे सुन सकते हैं। 7:05 पर सुनिएगा कृषि चर्चा पर आधारित हमारा कार्यक्रम कृषि संकेत। आपके अनुरोध पर गीत मनचाहे गीत कार्यक्रम में सुबह 7:20 पर होंगे। 7:45 का समय संगीत सरिता का रहेगा। आज सुबह 8:15 पर आप लोक संगीत सुनेंगे और 8:30 पर बिंदिया कार्यक्रम होगा। प्रायोजित कार्यक्रम मनोपचार सुखी संसार, इसका समय रहेगा सुबह 9:50। 10 बजे जिले की चिट्ठी और 10:05 पर सुनिएगा फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम। सुबह 11 बजे होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। शाम 5 बजे इस घंटे की सुर्खियां। शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। शाम 5:30 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता।
1: CERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार तक। समय होता है सुबह 11 से साढ़े

0: यादें हमारी धरोहर हैं, यादें हमारे दिलों में बसती हैं, यादों का कारवां। सुनिए आकाशवाणी सागर से हर माह के चौथे शुक्रवार को सुबह 10:05 से।
1: यादें याद आती हैं।
0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
2: शाम 6:30 पर सदाबहार गीत सुन सकते हैं हमारे श्रोता। 6:45 पर और 7:20 पर लेकर आएंगे लोक रंग कार्यक्रम। रात्रि 8:00 चित्रपट संगीत होगा। 8:20 पर संगीत सरिता, मनचाहे गीत कार्यक्रम रात 9:00। 11:00 आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये आकाशवाणी सागर है, 6:30 होने को हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज आप इसकी 47वीं कड़ी सुनेंगे। स्वर है मन्ना डे और शोभा जोशी के।

श्री रामचरित के विविध प्रकरणों की व्याख्या करने के पार्वती के अनुरोध पर सुख स्वरूप भगवान शंकर ने श्री राम की लीलाओं का सांगोपांग वर्णन किया। बोले, जिनके नाम के उच्चारण के साथ काशी में मरते हुए प्राणी को मैं शोक रहित कर देता हूँ, वही मेरे प्रभु जड़ चेतन के स्वामी और सबका अंतर्मन जानने वाले हैं। पार्वती का प्रश्न सहज था, तब उन्होंने किस कारण मनुष्य का शरीर धारण किया। उमापति ने तब निर्मल रामचरितमानस की वो मंगलमय कथा सुनाई जिसे काकभुशुंडी ने विस्तार से पक्षीराज गरुड़ को सुनाया था। वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है उसके बारे में ये नहीं कहा जा सका कि वो कारण बस यही है। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षसों का प्रकोप बढ़ जाता है, तब तब प्रभु विविध रूपों में शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं।

अभी श्रोता श्री रामचरितमानस से पाठ सुन रहे थे। आज आपने इसकी 47वीं कड़ी सुनी, जिसमें मुख्य गायक स्वर मन्ना डे और शोभा जोशी के थे। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है। 6:40 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कुछ पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। श्रोताओं, इस मानव जीवन में न जाने कितने ऐसे रहस्य हैं जिनको इंसान कभी पूरी तरह समझ ही नहीं पाता। ऐसे ही जीवन और मृत्यु का ये चक्र, जिसपे न जाने कितने सवाल हैं जिनके जवाब किसी को मिलते ही नहीं। आइए सुने पुष्पांजलि फिल्म से ये गीत। मुकेश की आवाज़ है, आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया है।

0: और आइए अब सुनते हैं ये संदेश।
1: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
0: श्रोताओं, इस जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत मजबूत जोर से जुड़े हुए होते हैं। ऐसा लगता है कि उन्हें किसी डोर ने बांध रखा है, और उनमें से एक अगर बिछड़ता है तो दूसरे का जीवन भी बहुत कष्टमय महसूस होता है। कुछ ऐसी ही बात है इस गाने में, जो है फिल्म महाराजा से। लता मंगेशकर ने गीत को आवाज दी है, कैफी आजमी ने लिखा है और मदन मोहन ने इसके लिए संगीत दिया है। ये गीत है फिल्म महाराजा से।

0: ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे बॉय
0: दिखा। हाँ मेरा फेवरेट कलर
1: हमेशा शॉपिंग।
2: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट।
3: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
4: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
2: आई नो ना
4: आरबीआई कहता है
5: करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: कभी कभी हमें ये पता ही नहीं होता कि हम किस डोर से एक साथ आए हैं। जहाँ एक जाता है वहीं दूसरा खींचा चला जाता है। किस छोर से कहाँ तक जाना है कुछ खबर नहीं। आइए सुनिए दुर्गेश नंदन फिल्म से गीत लता मंगेशकर और साक्षी की आवाज़ में राजेंद्र कृष्ण के लिए है।

अभी आप कुछ पुराने फिल्मी गीत सुन रहे थे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में। थोड़ी ही देर में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से।

0: स्वकीयम् आह्वानं पुनः प्रतिपादितम्। आक्रमणस्य तीव्रनिन्दां कुर्वता विदेशमन्त्रालयेन निगदितं यत् पोते स्थितेषु एकादश भारतीय नागरिकेषु दश नागरिकाः एतावता सुरक्षिततया निष्कासिताः, अपरत्र एकः नाविकः अधुनापि विलुप्तः। मन्त्रालयेन प्रतिपादितं यत् ओमान देशे स्थितः भारतीय दूतावासः स्थिते सूक्ष्मावलोकनं करोति। सहैव प्रचलत् सुरक्षा कार्येषु ओमान देशस्य प्राधिकारिभिः साकं सक्रिय समन्वयं साधयति। नवदिल्ल्या वाणिज्यिक नौवहनेषु प्रचलत्सु निरन्तर आक्रमण प्रसंगेषु स्वकीया गभीरा चिन्ता प्रकटिता। अनेनैव सह भारतस्य अस्य राजनैतिक समाधानाय वार्तानां शीघ्र सम्पूर्त्यै याचना विहिता, येन अस्मिन् क्षेत्रे पुनः शान्तिः स्थिरता च प्रवर्तेत। फीफा विश्वचषक पादकन्दुक प्रतिस्पर्धायां सर्वेषां प्रागुपान्त्य चरणात्मकानां द्वन्द्वानां समाप्त्यनन्तरम् उपान्त्यचक्रस्य रूपरेखा पूर्णतः सिद्धा सञ्जाता। प्रथमायाम् उपान्त्यस्पर्धायाम् आगामि बुधवासरे फ्रांस स्पेन दलयोर्मध्ये स्पर्धा भविता। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं रात्रौ सार्धद्वादशवादने समारप्स्यते। इति वार्ताः।
1: ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 7 बजे हैं, समय है कार्यक्रम सुबह सुबह का। सबके जीवन में सफलता के मापदंड अलग अलग हैं। कोई किसी क्षेत्र में सफल होने को अपनी सफलता मानता है तो कोई दूसरे क्षेत्र में सफल होने को। लेकिन सत्यता ये है कि सफलता सिर्फ बाहरी उपलब्धियों से नहीं बल्कि अपने मन के अंदर की शांति और संतोष से ही नापी जाती है। जब हम अपने मन की आवाज़ सुनते हैं, जब हम अपने काम से प्रेम करते हैं, तभी देखा गया है कि सफलता बड़ी सरलता से मुस्कुराती हुई हमारे पास आती है। जब किसी काम को करने का सच्चा जज्बा या जुनून होता है तो ये बिल्कुल सच बात है कि बड़ी से बड़ी रुकावट भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाती और हम सफलता की राह पर आगे बढ़ने लगते हैं। ये सच्चा जज्बा हमें लगातार मेहनत करने और अपने लक्ष्य तक पहुंचने की जैसे एक प्रेरणा सी देता रहता है। जब भी देखा गया है कि लोग मुश्किल समय से उबर गए हैं तो ये भी देखा गया है कि मुश्किल समय में भी हार न मानने की जो शक्ति है वो अपने अंदर के जज्बे से ही आती है। ये सच है कि लगातार की गई कोशिश असंभव को भी संभव बना सकती है। बात करते हैं सपनों को हकीकत में बदलने की, तो अपने सपनों को हकीकत में बदलने की अगर शुरुआत देखी जाए तो वो भी खुद पर भरोसे से ही होती है। अगर हमें खुद पर ये भरोसा ही नहीं है कि हम ये कर पाएंगे तो वाकई हम ये कैसे कर पाएंगे। जब लक्ष्य स्पष्ट हो, समय की कद्र हो और हर दिन कुछ नया सीखने का जज्बा हमारे साथ हो तो कोई भी कारण नहीं बचता कि सफलता हमसे दूर चली जाए। निश्चित है कि हम सफलता पा ही लेंगे। इसके लिए किसी एक दिन के प्रयास से काम नहीं चलता। निरंतर किए गए प्रयास किसी भी असंभव कार्य को संभव बना सकते हैं। जैसे आपने और हमने देखा ही है कि निरंतर बहती नदी पहाड़ तक को काट देती है। जीतना है तो खुद पर, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना होगा। सफलता कोई भी

0: ऐसी चीज नहीं है कि एक दिन में हमें मिल जाए। इसके लिए हमें निरंतर प्रयास, धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता जरूर होती है। कई लोग हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जब भी हम सफलता पाने की कोशिश करते हैं तो नित नई चुनौतियां हमारे सामने मुंह उठा कर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन हमें समझना ये होगा कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें कमज़ोर बनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि वो तो हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि हमारे इरादे मजबूत हों और लक्ष्य स्पष्ट हो तो कोई भी बाधा हमें आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। आज सुबह सुबह बस इतना ही। अनुमति दीजिए साहिबा को इस कार्यक्रम से। आकाशवाणी सागर से अब आप सुनेंगे कृषि संकेत। रासायनिक दवाओं के उपयोग में क्या विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं, इस विषय पर केंद्रित है आज का ये अंक। विशेषज्ञ हैं विपिन जैन।
1: कोई भी रसायन बिना किसी विशेषज्ञ के लेना, खरीदना या डालना बहुत ही गंभीर विषय है। बिना वैज्ञानिकों की कोई भी रसायन नहीं लेना चाहिए जिससे आपको कोई हानि हो। सबसे पहले विशेष वास्ते ध्यान रखें, यदि खरपतवार नाशक है, फपूंद नाशक है, बीज उपचारक है, कोई भी दवा है, तो जो अपन डिब्बा लेते हैं या पैकेट लेता है तो उस पर पूरी विस्तृत उसकी जानकारी रहती है। यदि बीज उपचार की दवा है तो उस पर बीज उपचार लिखा हुआ होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसान भाई जो दवाई ले रहे हैं, कुछ जो कंपनियां हैं अच्छी कंपनी की अपन को दवाई लेना है, सस्ते के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो दवाई अच्छी कंपनी की है वो लेना है, ठीक है। अब जो दवाइयां रहती हैं उसमें बहुत सारा विस्तार से रहता है, जैसे कीटनाशक रहता है तो कीटनाशक की दवाई हरे लेवल की रहती है, पीले लेवल रहता है, रेड लेवल रहता है, ये दर्शाता है कि ये किस प्रकार से इंसान को घातक है या पौधों को नुकसान करता है, इस बात का भी ध्यान रखना है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण रहता है जो अपनी दवा है उसका उत्पादन तिथि, कब उसका उत्पादन हुआ है और किस तिथि तक एक्सपायरी डेट रहती है, अंतिम तिथि वो कब तक की है, उसको ध्यान रखना है। यदि अंतिम तिथि निकल गई है तो उस दवा का प्रयोग अपन को नहीं करना है। तो अपन को एक्सपायरी डेट भी और उत्पादन डेट का भी ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी ध्यान रखना है कि पैकेट आपका खुला हुआ ना हो, डिब्बा आपका कहीं से लीक ना हो पहले से, ठीक है, इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें चेक करके आप उसको खरीद सकते हैं। दवाई चूँकि रसायन है और किसी ना किसी रूप में वो यदि उसका सही प्रयोग ना हो तो चाहे पौधों को हो या मनुष्य को हो नुकसान ही देगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि ये बच्चों की पहुँच से हमेशा दूर रखना, ठीक। अब जैसे बीज उपचार की बात आती है, बीज उपचार का जो रसायन है, किसान भाई हैं बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन यदि बीज उपचार कहते हैं वो ग्लव्स नहीं पहनते, मास्क नहीं लगाते, ये बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद ग्लव्स और मास्क लगाना है, किसान भाई को ध्यान रखना है। जब अपन दवाइयों का प्रयोग करते हैं या बीज उपचार कर रहे हैं, हाथों से उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो उस समय अपन को ध्यान रखना है बीड़ी, तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला, ये कुछ नहीं खाना और एकदम बंद कमरे में इनका प्रयोग नहीं करना है। क्या है, बंद कमरे में वायु का आवागमन नहीं होता है, जिसके कारण भी यदि ज़्यादा मात्रा में आप उसको सूंघ लें या आँखों में चली जाए तो हो सकता है सिर दर्द होने लगे, सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि ग्लव्स पहनना है, मुंह बांधना है और खाने वाली वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना है। निंदा में अपन रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, चूँकि अब इस समय वर्तमान में अपन देख रहे हैं जो अपना रकबा है लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले किसान भाई सक्षम थे, मजदूर आसानी से मिलते थे तो कुछ निंदाई गुड़ाई करके अपना खरपतवार नियंत्रण कर लेते हैं। चूँकि अब खरपतवार नियंत्रण व्यक्तियों के माध्यम से, मजदूरों के माध्यम से कुछ असंभव हो गया है, तो अगर खरपतवार नियंत्रण की बात करें, ठीक है, तो खरपतवार नियंत्रण में प्री इमर्जेंस आते हैं और पोस्ट इमर्जेंस। प्री इमर्जेंस वो होते हैं जो अपने पौधों के निकलने के पहले प्रयोग किए जाते हैं, और पोस्ट इमर्जेंस जो होते हैं जो पौधे अपने हो जाते हैं उसके बाद प्रयोग करते हैं।

0: प्री इमर्जेंस टू पोस्ट इमर्जेंस में आप सबसे पहले ध्यान रखें, कोई भी रसायन प्रयोग कहते हैं तो ध्यान रखना है जो रसायन जिस समय के लिए रिकमेंड किए उसी समय रिकमेंड करना चाहिए। किसान भाई क्या कहता है, जैसे रवि ऋतु की फसल थी गेहूं वगैरह, उसमें उनने खरपतवार नाशक का प्रयोग किया। खरपतवार नाशक का प्रयोग करने के बाद जो उनके कृषि यंत्र रहते हैं, पंप वगैरह रहते हैं, और अगर उनको धोके और साफ करके नहीं रखते, कुछ मात्रा में उनकी रह जाती है, और जब अपन खरीफ ऋतु के रसायन का प्रयोग करके उसमें डालते हैं तो शुरुआती जो पंप रहेंगे उसमें वो पुरानी दवा आ जाएगी। तो आप ये समझो कि पहले पंप की दवा का प्रभाव ऐसा रहेगा कि वो अपनी पहली फसल को नुकसान करेगी।
1: अभी श्रोताओं ने कृषि संकेत का ये अंक सुना। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया जाएगा।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने उन्हें दूरदर्शी नेता बताया। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव करेंगे शुभारंभ। निवेश और प्रौद्योगिकी विकास पर रहेगा फोकस। आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू। प्रदेश भर के 5.5 लाख से अधिक पशुपालकों तक पहुंचने का लक्ष्य। और प्रदेश में मानसून की रफ्तार थमी, अगले 5 दिन भारी बारिश के आसार नहीं। 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। शेख हमद बिन खलीफा का कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर की सरकारी इमारतों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित नहीं होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि शेख हमद एक दूरदर्शी नेता थे, जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्री किरण रिजिजू भारत सरकार की ओर से शोक संदेश देने कतर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1-800-117-800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माई जीओवी पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कल भोपाल में आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में सहभागिता कर प्रतिभावान विद्यार्थियों एवं विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले नागरिकों को सम्मानित किया। उन्होंने सभी प्रतिभाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाएं अपने परिश्रम के बल पर समाज में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करती हैं।
2: प्रतिभा सम्मान समारोह में 591 अलग अलग प्रतिभागियों को आपने ये मौका दिया। ये केवल पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम नहीं है। हमारे अलग अलग प्रतिभाएं अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करती है और संस्कार और राष्ट्र निर्माण के इस महासंकल्प में अपनी क्षमता

0: बुद्धिमत्ता, युक्ति, समय की सदुपयोगिता, ऐसे कई कारणों से अपने आप को उस रूप में लाती कि वो पुरस्कृत होकर के समाज के सामने अपना नया परिचय पाते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चलाए जा रहे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत इंदौर में कल एक बड़े पौधरोपण अभियान की शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुड़ानिया गांव स्थित बीएसएफ परिसर में आयोजित कार्यक्रम में महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 21 लाख पौधे लगाने और 51,000 वर्षा जल संचयन इकाइयां स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण, हरित विकास और वर्षा जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देना है। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में कृषि उपज बाजार समिति एमपीएमसी के अमृत महोत्सव के दौरान नए सब्जी उपयार्ड का उद्घाटन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्री शाह एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत एक पौधा लगाएंगे और समिति के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में तैयार की गई एक विशेष प्रकाशन पुस्तिका का विमोचन भी करेंगे। इस अवसर पर श्री शाह दाहेगाम एपीएमसी बोर्ड के सदस्यों से बातचीत भी करेंगे। भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। वे उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ 1-to-1 बैठक कर निवेश और नई परियोजनाओं पर चर्चा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश की तकनीकी विकास यात्रा पर विशेष प्रस्तुति दी जाएगी। इसके साथ ही कई रणनीतिक साझेदारियों और समझौतों का आदान प्रदान भी होगा। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या newsonair ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
1: समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। देश में आम नागरिकों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 15 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत देश भर में 1 करोड़ घरों में सौर बिजली संयंत्र स्थापित कर बिजली खर्च में प्रतिवर्ष 75,000 करोड़ रुपए की बचत करने का लक्ष्य रखा गया है। आज अच्छी खबर में प्रदेश के पश्चिम क्षेत्र में इस योजना के क्रियान्वयन पर इंदौर से हमारे संवाददाता मनीन्द्र दुबे की ये रिपोर्ट।
3: पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने अधिकार क्षेत्र के 15 जिलों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को एक जन भागीदारी का रूप दे दिया है। पश्चिम मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए कंपनी के प्रबंध निदेशक अनूप कुमार सिंह ने आकाशवाणी को बताया।
4: इंदौर में अब तक लगभग 7,000 सोलर संयंत्र स्थापित हुए हैं और 53,000 आवेदकों को लगभग 414 करोड़ रुपए सब्सिडी हस्तांतरित की जा चुकी है। इस योजना में अब तक कुल 219 मेगावाट क्षमता के संयंत्र कंपनी क्षेत्र के 15 जिलों में स्थापित हो चुके हैं, जिससे लगभग 2,62,000 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आई है।
3: इंदौर जिले की देपालपुर तहसील के वरिष्ठ पत्रकार एवं समाज सेवी विमल फौजी ने योजना को ग्रामीणों और किसानों के लिए बड़ी आर्थिक राहत वाली योजना बताते हुए कहा।
5: देपालपुर नगर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब किसान इस ओर अग्रसित होते जा रहा है। जिस प्रकार उन्होंने अपने खेतों पे लगाया, लेकिन अभी अपने घरों के ऊपर भी सोलर पैनल लगा रहे हैं।
3: वहीं इंदौर नगर निगम सीमा में रहने वाले योजना के हितग्राही रूपेंद्र सिंह चौहान एक महत्वपूर्ण योजना बताते हैं।
6: हमने अपने घर पर 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया है। योजना के तहत हमें सरकार से अनुदान मिला है। इसके साथ ही हमारे घर में बिजली पर होने वाले खर्च में भारी कमी आई है।
3: मनिंद्र कुमार दुबे, आकाशवाणी समाचार, इंदौर।
1: दतिया उपचुनाव में टिकट कटने के बाद प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की। मिश्रा ने कहा कि किसी का कद पार्टी से बड़ा नहीं होता। उन्होंने पार्टी के फैसले को सम्मान के साथ स्वीकार करने की बात कही। इससे पहले टिकट कटने पर समर्थकों ने हाईवे पर चक्का जाम किया था। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प में 6 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दतिया उपचुनाव के लिए 30 जुलाई को मतदान होना है। ग्वालियर के प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि सरकार हर कदम पर व्यापारियों के और उद्यमियों के साथ खड़ी है। श्री सिलावट रविवार को कैट द्वारा आयोजित व्यापार उद्योग संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि व्यापारियों की समस्याओं के लिए हर 3 माह में बैठकों का आयोजन किया जाएगा और मंत्री ने सभी मुद्दों का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया। भोपाल के सिंधु भवन में कल आदिवासी जैन जी फेस्ट का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छात्रों की गूंज अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर के आदिवासी सांस्कृतिक दलों ने पारंपरिक लोक नृत्य, प्रस्तुत किए। महाराष्ट्र की आदिवासी रैपर माही जी की प्रस्तुति कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रही। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी और मीनाक्षी नटराजन ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगवार ने आदिवासी युवाओं को बेहतर शिक्षा और अवसर देने पर जोर दिया। खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कल सागर जिले के कई गांवों का दौरा किया। उन्होंने करीब 10 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने सुर्खी में जल्द शुरू होने वाली देहरा बांध परियोजना की जानकारी दी। इस परियोजना पर करीब 400 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिससे 23,000 एकड़ भूमि सिंचित होगी। ग्वालियर में चार्टर्ड अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर 21 करोड़ रुपए की ठगी हुई है। राज्य साइबर सेल ने इस मामले में 1,82,00,000 रुपए फ्रीज कराए हैं। ठगों ने खुद को निवेश सलाहकार बताकर संपर्क किया था। शुरुआत में अच्छा रिटर्न दिखाकर भरोसा जीता और जांच में सामने आया कि ये गिरोह विदेश से संचालित हो रहा है। रकम को छिपाने के लिए 12 लेयर में 19,000 से अधिक बैंक खातों का इस्तेमाल किया गया। भोपाल में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो रहा है। इस अभियान में भोपाल के 415 वार्डों में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जाएगा। अब बात करते हैं मौसम की। प्रदेश में मानसून की रफ्तार फिलहाल थम गई है। प्रदेश में करीब 60% हिस्से में मानसून के बादल गायब हैं। अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी बारिश के आसार नहीं है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। ग्वालियर के एयरपोर्ट परिसर में कल एक पेड़ माँ के नाम अभियान में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हिस्सा लिया। मंदसौर के सांदीपनी विद्यालय में भी एक पेड़ माँ के नाम 3.0 अभियान के तहत पौधरोपण का आयोजन किया गया। आगरमालवा के साथ नीमच के 6,878 पशुपालकों को दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान के तहत प्रेरित किया जाएगा। छतरपुर के शासकीय सांदीपनी विद्यालय में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया और रीवा के डाकघर संभाग में पीएलआई और आरपीएलआई व्यवसाय के लिए डायरेक्ट सेल्स एजेंट चयन के लिए 27 से 31 जुलाई तक इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।
7: ये आकाशवाणी सागर है। 7:20 हुए हैं। समय है मन चाहे गीत कार्यक्रम का। कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। पहला गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। गीत को लिखा है असद भोपाली ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत तैयार किया है। ये गीत है फिल्म पारस मणि से, जिसको आप सुनना चाहते हैं। मुंडा टोला डाडी लोहारा जिला बालोद से धूमेंद्र नेताम, गंगेश्वरी नेताम, चंचल कामेश, माहिर नेताम। गायत्री कॉलोनी रहली से हेमराज ठाकुर, राकेश श्रीवास्तव, नवल किशोर नामदेव, राघवेंद्र, नरेंद्र सोनी, जीतू नामदेव, छोटू नामदेव, उमा सराफ, राम जैन। दिल्ली शहर मोरीगेट से कन्हैया लाल, रीता देवी और उनके परिवारजन। शास्त्री नगर बीड शहर से किसन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साई राज, विशाल। और ये अनुरोध है मार टेकड़ी अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे, श्रद्धा ढेकरे का। नेपाल पहले सागर से अनुरोध करता है तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन राणा।
8: जब याद आए

चा चा चा ये फिल्म का नाम है, जिससे अगला गीत हमारे श्रोता सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, नीरज की गीत रचना और इकबाल कुरैशी का संगीत। सुनने के ख्वाहिशमंद हैं शाहूनगर यवतमाल से राहुल, मनवर, सरला, रोशनी, चेतन, विशाल, बेबी प्रियांशी। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ये हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी। दुबिया नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय। बिलासपुर छत्तीसगढ़ से छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा श्रीवास, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास बागवानी। ये अनुरोध है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना, निवान। साथ ही ये अनुरोध खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू, लक्ष्य मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा और शिवाजी कॉलोनी रोहतक से अनुरोध करता है पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, दुग्गू भाविक सिक्का। ऊपर कोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकट परवीन अब्बासी, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरसान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय। अगला गीत फिल्म सीमा से है। मोहम्मद रफ़ी और शारदा के युगल स्वर हैं, गुलजार की गीत रचना है, शंकर जयकिशन का संगीत है। सुनना चाहते हैं आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाड़कर, सुमित गवाड़कर, कुमारी धवनी गवाड़कर, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, राही श्रीमती सरिता गवाड़कर, प्रिंस एकांश गवाड़कर, बदलापुर मुंबई से सिद्धांत गवाड़कर, प्रणीता, अर्जुन और टुक टुक, नरवेल महाराष्ट्र से PS नहावकर, निर्मला, विशाल, और मलकापुर महाराष्ट्र से ये अनुरोध है नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोहंकर का। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से कौशल्या देवांगन, रोशन लाल देवांगन, हेमलता, डिम्पल, कुमारी भाव्या देवांगन और उनके परिवार के तमाम लोग। गुजराती बाजार सागर से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना मनवानी, चंपक भाई जैन, निर्मल भोले बजाज, रूपेश मनवानी, और सिंधी कॉलोनी से सीमा, महक, अंजलि, भूमि, बरखा और प्रियंका मनवानी। अडार नाद घाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल और गोपी वर्मा। आप सबकी पसंद का, आइए सुने ये गाना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: आप सुनते हैं कैफी आजमी के पुल मदन मोहन के संगीत में। ये गीत मोहम्मद रफ़ी ने गाया है। गीत है फिल्म हीर रांझा से, जिसको सुनना चाहते हैं। गिरडी झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, हसन नवाज और बाबू अहद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत, सादिया। आसाम से अनुरोध है इतेंद्र दास का। परभणी महाराष्ट्र से रुपेश सिंघई, महेश सिंघई, प्रगेश सिंघई, प्रतेश सिंघई और पूरा परिवार। कोपर गांव से ये अनुरोध है सुरेश मालौदे, श्रद्धा, मानसी, वर्षा। ये फरमाइश हमें भेजी। ग्राम बाघामुड़ा कोमाखाना छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश देवांगन, गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन। जिला नादेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जयसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद, अर्णव, दुर्गेश्वरी जयसवाल। अस्पताल रोड विश्वविद्यालय सागर से चंद्रेश गौहर, वंदना गौहर, मयंक गौहर, तन्वी गौहर। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खटसे, विनोद खटसे। आइए सुने आपकी पसंद पर ये गीत।

आप श्रोता सुनेंगे लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज़ में प्रेम धवन की रचना, जिसे चित्रगुप्त ने संगीत से सजाया है। जबक फिल्म से है ये गाना। जिसको सुनना चाहते हैं, चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, विमला अनेजा, सिल्लौड जिला छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र से अनिल कुमार घुड़के, वैशाली अनिल प्राजक्ता वैष्णवी, गायत्री और यज्ञेश घुड़के, भवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम देवांगन, चंपा देवांगन, राजू नेहा जगदीश, अनारकली बाजार जगराव पंजाब से यह हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार, मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल, रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश, कोल सिटी बरकाकाना से अफजाल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी मोहम्मद, अफजल मलिक, टाउनशिप सेक्टर 8 भिलई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, आसमा श्याम कुमार, दीपक और अनुश्री श्याम कुमार, ग्राम लोहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, राघवेंद्र यादव, अरविंद, रागनी रिया, रेणु और रोनिका यादव। आइए सुनते हैं प्रोग्राम के आखिर में ये गीत।

अभी श्रोता मन चाहे गीत कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। 7:45 हुए हैं। आइए सुने संगीत सरिता। सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं पंकज उदास की आवाज में ये गजल। दुनिया भर की यादें हमसे मिलने आती हैं, शाम ढले इस सूने घर में मेला लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है।

0: का मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: और आइए अब सुनिए लता मंगेशकर और जगजीत सिंह को।

अभी आप संगीत सरिता कार्यक्रम में कुछ गैर फिल्मी गजलें सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे समाचार प्रभात।

0: बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार, पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में होंगे लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के तीन प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए और यानिक सिनर ने अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराकर विंबलडन पुरुष सिंगल्स खिताब बरकरार रखा। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे।
3: पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 राज्य विधानसभा ने 29 जून को पारित किया था। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद यह विधेयक अब कानून बन गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत असामाजिक गतिविधियों में शामिल व्यक्ति या भविष्य में ऐसी गतिविधियों में शामिल होने की संभावना वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। निवारक हिरासत के आदेश राज्य सरकार, पुलिस आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट या सरकार द्वारा अधिकृत DIG रैंक के पुलिस अधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं। कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिस कर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्यवाही को सक्षम बनाएगा। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। एक रिपोर्ट।
4: पहला परीक्षण समुद्र में उतरने के बाद क्रू मॉड्यूल की सीधी स्थिति सुनिश्चित करने से संबंधित था, जिसे चालक दल की सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक माना जाता है। दूसरे परीक्षण में अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन, क्रू मॉड्यूल और बिजली देने वाले सर्विस मॉड्यूल के बीच कड़ी का काम करने वाले अम्बिलिकल मैकेनिज्म के अलगाव की जांच की गई। तीसरे परीक्षण ने एपेक्स कवर के अलग होने की घटना के दौरान क्रू मॉड्यूल की संरचनात्मक अखंडता को सत्यापित किया। अपने तीनों परीक्षण से इसरो ने यह पक्का कर लिया है कि अंतरिक्ष यात्रियों का केबिन सही समय पर अलग होगा, उसके पैराशूट सही से खुलेंगे और पानी में गिरने के बाद वह डूबेगा या उल्टेगा नहीं। समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
2: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा का उद्देश्य व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, नवाचार और स्थिरता पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूरोप के साथ भारत की आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है। अपनी यात्रा के पहले चरण में श्री गोयल आज स्पेन जाएंगे। वे स्पेन के चैम्बर ऑफ कॉमर्स CEOE और ICEX स्पेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के साथ व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

0: करेंगे। 14 और 15 जुलाई को बेल्जियम की यात्रा के दौरान श्री गोयल थेल्स और सिलॉक्स समूह के अधिकारियों के साथ बैठकें करेंगे। यात्रा के तीसरे चरण में श्री गोयल 16 और 17 जुलाई को फिनलैंड जाएंगे। वे भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड 2026 में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में शानदार प्रदर्शन करते हुए इन भारतीय छात्रों ने देश को गौरवान्वित किया है। स्वर्ण पदक विजेताओं में पुणे के कनिष्क जैन, इंदौर के रिद्धेश अनंत पिंडाले, नई दिल्ली के रिशद गर्ग, मुंबई के श्रेष्ठ सुरैया और अहमदाबाद के स्वरज जोशी शामिल हैं। इस उपलब्धि के साथ भारत ने 87 देशों के 381 प्रतिभागियों के बीच रूस, चीन, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया और ताइवान के साथ संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह उपलब्धि भारत के ओलंपियाड कार्यक्रम की सुदृढ़ता को रेखांकित करती है, जिसका नेतृत्व टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के राष्ट्रीय केंद्र होमी भाभा सेंटर फॉर साइंस एजुकेशन द्वारा किया जाता है। पिछले एक दशक में इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रत्येक भारतीय प्रतिभागी ने पोडियम फिनिश में जगह बनाई है। आनंद कुमार के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर में 11वीं इंटरपोल डिजिटल फोरेंसिक विशेषज्ञ समूह की बैठक में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि भारत 2022 के बाद दूसरी बार इस प्रतिष्ठित वैश्विक मंच की मेजबानी कर रहा है।
3: इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अत्याधुनिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का लोकार्पण करेंगे, जो एआई आधारित वित्तीय अपराध जांच, मीडिया फोरेंसिक और क्राइम सीन मैनेजमेंट पर केंद्रित है। इसके साथ ही ऑनलाइन साक्ष्य जुटाने में सक्षम एशिया की पहली स्वदेशी साइबर फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन वैन को भी हरी झंडी दिखाई जाएगी। इस सम्मेलन में 30 से अधिक वैश्विक कंपनियों की अत्याधुनिक तकनीकों की प्रदर्शनी भी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसके बाद दोपहर को सहकार से समृद्धि का संकल्प आगे बढ़ाते हुए गृह मंत्री देहगाम में कृषि उपज मंडी समिति के अमृत महोत्सव के दौरान नवनिर्मित सब यार्ड का उद्घाटन करेंगे। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव के तीसरे संस्करण का आयोजन आज किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
4: भोपाल में आज एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। कॉन्क्लेव का मुख्य फोकस ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, डेटा सेंटर और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री राज्य सरकार के प्रौद्योगिकी आधारित औद्योगिक विकास के विजन को भी साझा करेंगे। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख प्रौद्योगिकी कंपनियों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, उद्योग संगठनों और शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 6 लेन लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस

0: योजना का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: यह सेवा पर्यटन और सिविल विमानन विभाग की ओर से संयुक्त रूप से चलाई जाएगी। आज से ही आम लोग इसके लिए ऑनलाइन बुकिंग करा सकेंगे। इसके तहत राज्य सरकार के अनुदान से अब पर्यटक पटना जॉय राइड के लिए 2100 रुपए, राजगीर के लिए 4000 रुपए, वाल्मीकि नगर के लिए 5000 रुपए और कैमूर के लिए 6000 रुपए में टिकट बुक कर सकते हैं। यह सेवा 18 जुलाई से प्रत्येक शनिवार और रविवार को शुरू होगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक।
0: छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। ये सत्र 17 जुलाई तक चलेगा। इस दौरान कुल 5 बैठकें आयोजित की जाएंगी। सत्र में वित्तीय मामलों पर चर्चा होगी और राज्य सरकार लगभग 8 संशोधन विधेयक भी पेश करेगी। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके लिए माई भारत पोर्टल पर पंजीकरण आज से शुरू हो रहे हैं। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ फिर से सैन्य हमले शुरू किए हैं। अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि इस अभियान का उद्देश्य हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले नागरिक नाविकों और वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये हमले राष्ट्रपति के निर्देश पर ईरानी सेना के जहाजों पर हमले के जवाब में किए गए हैं। खाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही तनाव व्याप्त था और इन ताजा हमलों ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी का कल निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे जिन्होंने कतर को विकास और समृद्धि के नए मुकाम तक पहुंचाया। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के उत्तरी पूर्वी हिस्सों, पश्चिम बंगाल और बिहार के अलग अलग स्थानों पर तेज बारिश और अगले 4 से 5 दिनों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। इटली के यानिक सिनर ने विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शीर्ष वरीयता प्राप्त सिनर ने फाइनल में दूसरी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया। ये सिनर का लगातार दूसरा विंबलडन पुरुष सिंगल्स और 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में राष्ट्रीय जल मिशन की अपर सचिव और मिशन निदेशक अर्चना वर्मा के साथ जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
2: धन्यवाद विशाल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जहाजों की आवाजाही को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच फिर सैन्य टकराव आज के सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, जंग फिर शुरू, हॉर्मुज बंद। अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत, ओमान, जॉर्डन और यूएई को बनाया निशाना। वहीं नव भारत टाइम्स ने लिखा है, ओमान के पास व्यापारी जहाज पर हमला, 10 भारतीय बचाए गए, एक लापता। विदेश मंत्रालय ने कहा, क्षेत्र में जहाजों को निशाना बनाना तुरंत बंद होना चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री 30 दिन जेल में रहे तो होना चाहिए निलंबन, जनसत्ता सहित कई अखबारों में है। 130वें संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने की सिफारिश, मानसून सत्र में पेश हो सकती है समिति की रिपोर्ट। नए वोटर के लिए माता पिता का एसआईआर ब्यौरा अनिवार्य, दैनिक जागरण के अनुसार मतदाता सूची में पहली बार नाम जुड़वाने वाले नए मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने लागू किया नया प्रावधान। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया न्यूजीलैंड यात्रा पर अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, वैश्विक भू राजनीतिक संकटों के दौर में दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय केवल द्विपक्षीय रिश्तों का विस्तार नहीं है, बल्कि ये तेजी से बदल रहे हिंद प्रशांत क्षेत्र में नई भू राजनीतिक और आर्थिक वास्तविकताओं की स्वाभाविक प्रतिक्रिया भी है। आने वाला दशक दोनों देशों के संबंधों को हिंद प्रशांत के सबसे सशक्त और भरोसेमंद साझेदारियों में बदल सकता है। उत्तराखंड के गांवों से बढ़ते पलायन पर राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, देव भूमि से रूठे देव, पर्यटकों को बुला रहे पहाड़ पर अपने लोगों से टूट रहा नाता, राज्य के 15% गांव

0: निर्जन पलायन करने में युवा आगे।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पारित दो नए अपराध रोधी कानून आज से राज्य में लागू। इसरो ने गगनयान क्रू मॉड्यूल सिस्टम के 3 प्रमुख परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए। 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते। विश्व रैंकिंग में भारत अन्य देशों के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र पश्चिम बंगाल और बिहार में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया। अमरीका ने ईरान पर फिर से हमले शुरू किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: सागर है आकाशवाणी सागर से। अब आप सुनेंगे लोक संगीत। आइए सबसे पहले सुने हर गोविंद विश्व और साथियों को।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
1: हेलो माँ, माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
2: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
1: News on AIR?
2: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
1: अरे वाह माँ, कमाल है।
2: News on AIR।
3: और आइए अब सुनते हैं मुन्नीलाल बरसैया से।

का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर नंबर।

राजू पटेल के गाए इस कृषि गीत के साथ ही लोक संगीत यहीं संपन्न करने की अनुमति दीजिए। एफएम बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है,

0: 8:30 हुए हैं, आइए सुने कार्यक्रम बिंदिया।
1: नमस्कार सखियों, बिंदिया कार्यक्रम की एक और खुशनुमा महफिल में सभी सखियों का, सहेलियों का और हमारे श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत करते हैं। आज आप साथ हैं रेडियो सखी रानी के, स्वीकारे हमारा स्नेहिल नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत कर लेते हैं घर आंगन की बातों के साथ। बताएं सखियों, कैसी हैं आप? बिल्कुल, इन दिनों बारिश का मौसम तो चल रहा है, पर ये जो बूंदे हैं उनका रुख कुछ समझ नहीं आ रहा है। कभी रिमझिम रिमझिम बरस जाती हैं तो कभी हमें इंतज़ार दे जाती हैं। तो कोई बात नहीं सखियों, मौसम तो मानसून का है जो पल पल बदलता रहेगा, लेकिन हमारी सखियाँ बड़ी समझदार हैं, इसलिए उनकी तैयारियाँ बहुत पुख्ता होती हैं। रसोई घर में स्वाद के साथ साथ सेहत की बयार फैली हुई है। और सखियों, मानसून के मौसम को हर वर्ग अपने अपने तरह से देखता है। जैसे बच्चों के लिए भरपूर मस्ती भरी लगती हैं ये बूंदें, तो वयस्कों के लिए रोमांचित करती हैं ये बूंदें। काम पर जाने वालों के लिए कुछ उलझन भरी लगती हैं ये बूंदें, तो हम बहनों के लिए मिले जुले भावों से भरी होती हैं ये बूंदें। शायरों और कवियों के लिए इन बूंदों पर और इस मौसम पर खूब लिखा जाता है। तो सखियों, हर मौसम को अपनी तरह से हम देखते हैं, पर यदि हम कुछ ख़ास तरीके से देखें तो ये मौसम पूरी कायनात को, पूरी सृष्टि को, साथ ही साथ हम सभी को जीवन देता है, यदि हम कुछ हटकर कार्य कर लें तो। सखियों, हमारी प्रकृति, हमारे पर्यावरण का संरक्षण करना है वो खास कार्य, क्योंकि पर्यावरण पर मंडरा रहे खतरे से हम सब वाकिफ हैं। इसके बावजूद भी दिन ब दिन स्थितियां गंभीर होती जा रही हैं। यदि हम अपनी पृथ्वी, अपनी प्रकृति को सजाने संवारने का काम नहीं कर सकते, तो इसके दोहन या नष्ट करने का हमें बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी के अनुसार गर्म होती धरती, बिगड़ती जलवायु के कारण प्राकृतिक आपदाएं हो रही हैं। तापमान बढ़ रहा है दिनों दिन, जिससे जमीन और जल स्रोत सूख रहे हैं और कुदरत का चक्र गड़बड़ा रहा है। कहीं अतिवृष्टि हो रही है तो कहीं पानी ही नहीं गिर रहा। तो इन खतरों को टालने का उपाय है सखियों, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए, वृक्षारोपण किया जाए, ताकि पर्यावरण बचाया जा सके और हमारा पर्यावरण सेहतमंद बना रहे। और हमारी प्रकृति सेहतमंद रहे, इसके लिए ये मौसम सबसे अच्छा होता है। इन दिनों भरपूर वृक्ष लगाए जाएं। हाँ सखियों, इन दिनों आपने भी अपनी बगिया सजाई है ना, अच्छी बात है, पर यदि हम समझदारी से इसे सजाते हैं तो सोने पे सुहागा हो जाए। सखियों, फूल पौधे बगीचे की सुंदरता तो बढ़ाते हैं, लेकिन पर्यावरण को लाभ पहुंचाने में पेड़ों का या पौधों का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो सीधा सा नियम है, जो पेड़ जितना विशाल होगा वह उतनी ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित कर भरपूर ऑक्सीजन देगा, जो हमारे काम आती है, जो हमारी जीवन दायिनी है। तो इस तरह सखियों, मौसम तो बड़ा अच्छा बना हुआ है और हमारी बातें भी अच्छी चल रही हैं, लेकिन इस मौसम को कैसे खास बनाया जा सकता है? चलिए, अभी वक्त हो गया है कार्यक्रम बिंदिया को खास बनाने का, तो आइए सुन लेते हैं एक मधुर सा गीत।

0: सखियो, इस प्यारे से गीत के बाद आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम बिंदिया में। और चलिए कार्यक्रम को एक पायदान आगे बढ़ा लेते हैं। सखियों, वार्ताओं के क्रम में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बेहद ही खास वार्ता, जिसका विषय है तकनीक में खोता बचपन, जिसकी वार्ताकार है सुनीता शर्मा। आइए सुनते हैं ये वार्ता।
1: कभी मिट्टी की महक में बसा था बचपन, कभी बारिश की बूंदों में हंसता था बचपन, कभी कहानियों संग सपने बुनता था बचपन, तो कभी तितलियों के पीछे दौड़ता था बचपन। जी हाँ, बचपन जीवन का सबसे सुंदर और सुकून से भरा समय, जब छोटी छोटी खुशियाँ भी जीवन को उत्सव बना देती हैं। किंतु तकनीक व प्रतिस्पर्धा के युग में बचपन की स्वाभाविक खुशियाँ कहीं खोती जा रही हैं। जब भी हम अपना बचपन याद करते हैं तो मन मधुर स्मृतियों से भर जाता है। कागज की नाव बनाना, दोस्तों के साथ खेलना, पतंग उड़ाना, नदी तालाब में नहाना, पेड़ों पर चढ़ना, दादा दादी से कहानियाँ सुनना, बिना किसी चिंता के हंसते मुस्कुराते दिन, यही वह खुशबू होती है जो जीवन भर हमारे साथ रहती है। बचपन सरलता, जिज्ञासा, संवेदनशीलता और आनंद का अद्भुत संगम होता है। किंतु आज जब हम अपने आसपास बच्चों को देखते हैं तो महसूस होता है कि हमारे बचपन की स्मृतियाँ अनमोल रत्न की तरह हैं, जो जीवन की सबसे मूल्यवान धरोहर थीं, आज की पीढ़ी के लिए दुर्लभ होती जा रही है। तकनीक के अत्यधिक उपयोग ने जीवन शैली में बदलाव ला दिया है, जिससे बच्चों की दुनिया पूरी तरह बदल गई है। सुविधाएं बढ़ने से बचपन की निश्चलता और सहजता कहीं पीछे छूट गई है। बचपन को यदि जीवन का वसंत कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिस तरह वसंत ऋतु में प्रकृति रंग बिरंगे फूलों से सुशोभित हो जाती है, उसी तरह बचपन भी सपनों, कल्पनाओं और उत्साह से भरा होता है। इस अवस्था में छोटी छोटी बातें भी बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर देती हैं। उनके लिए महंगे खिलौनों से अधिक मूल्यवान मित्रों का स्नेहिल साथ, खुले मैदानों में खेलना और निश्चल हंसी का आनंद होता है। आनंद के साथ ही जो व्यवहारिक ज्ञान बच्चा अपने दोस्तों, पड़ोसियों, शिक्षकों, माता पिता व दादा दादी से प्राप्त करता है, वह ज्ञान सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से प्राप्त नहीं हो सकता। संयुक्त परिवारों में बुजुर्गों के सान्निध्य व स्नेह से बच्चों में नैतिकता, सहनशीलता और जीवन मूल्यों के संस्कारों का विकास स्वाभाविक ही बिना प्रयास किए हो जाता है। रात को आंगन में बैठकर चांद को निहारना, तारों को गिनना, लोकगीत व कहानियाँ सुनना, परिवार के साथ मिलकर भोजन करना सामान्य बात हुआ करती थी, जिससे परिवार के सभी सदस्य आपस में जुड़ाव व सुरक्षित महसूस किया करते थे। इन छोटे छोटे क्रियाकलापों में जीवन की खुशियाँ छिपी रहती थी। त्योहारों जैसे दीपावली, होली, रक्षाबंधन बच्चों के लिए केवल उत्सव नहीं हुआ करते थे, अपितु परिवार व समाज को एक सूत्र में पिरोने का आदर्श धागे का काम करते थे। त्योहारों पर जब दूर रहने वाले भाई बहन एकत्रित होते थे तो रिश्तों में एक नयापन व गर्माहट को हर सदस्य महसूस करता था, जो संबंधों को नई ताजगी से भर देता था। आज तकनीक ने बच्चों का बचपन छीन लिया। मोबाइल फोन, इंटरनेट, वीडियो गेम बच्चों के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं। तकनीक ने ज्ञान वृद्धि व मनोरंजन के अनेक अवसर प्रदान किए हैं, लेकिन इसके अति प्रयोग ने बच्चों की स्वाभाविक खुशियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है। आज अधिकांश बच्चे कम उम्र से ही मोबाइल के आदि हो जाते हैं। वे वर्चुअल दुनिया में तो सक्रिय रहते हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया से उनका जुड़ाव कम हो जाता है। पहले बच्चे मैदानों में भिन्न प्रकार के खेलों में संलग्न रहते थे, अब कंप्यूटर व मोबाइल पर खेलों में व्यस्त रहने से न केवल शारीरिक गतिविधियों से दूर हो जाते हैं, अपितु आँखों व स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं के भी शिकार हो जाते हैं। बच्चे जब फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी आदि खेल मैदान में खेलते हैं तो न केवल उनका शारीरिक व मानसिक विकास होता है अपितु मजबूत सामाजिक संबंधों के साथ ही उनमें साहस, धैर्य और प्रतीक्षा करने जैसे गुणों का विकास अनजाने में ही होने लगता है, जो बच्चों के जीवन व भविष्य की दृष्टि से आवश्यक भी होते हैं। आज धैर्य व साहस की कमी के कारण ही हम प्रतिदिन बच्चों के द्वारा किए गए अनुचित कार्यों के बारे में सुनते हैं। आज का समाज अत्यधिक प्रतिस्पर्धी हो चुका है। प्रत्येक माता पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करे। इसी कारण बच्चों पर पढ़ाई, परीक्षा, कोचिंग और विभिन्न गतिविधियों का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। माता पिता की अपेक्षाओं के बोझ के कारण उनके पास खेलने, आराम करने व अपनी रुचियों को विकसित करने का पर्याप्त समय नहीं बचता। इससे बचपन धीरे धीरे उपलब्धियों की दौड़ में खो जाता है। यह स्थिति चिंताजनक होती है, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल बच्चों को सफल व्यक्ति बनाना नहीं है, अपितु एक संवेदनशील, संतुलित व खुशहाल इंसान बनाना भी है। एकल परिवारों के कारण परिवार के सदस्य अपने अपने कार्यों और डिजिटल उपकरणों में व्यस्त रहते हैं, जिससे संवादहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। संवादहीनता के कारण बच्चे भावनात्मक रूप से कमजोर व अकेले हो जाते हैं। जब बच्चे वास्तविक रिश्तों से दूर रहते हैं तो वे भावनाओं को समझने और व्यक्त करने में कठिनाई महसूस करते हैं। परिवार के साथ ही प्रकृति भी शिक्षक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। पक्षियों की चहचहाट, पेड़ों की हरियाली, वर्षा की बूंदों और खुले आकाश की बच्चों के विकास में अहम भूमिका रहती है। लेकिन शहरीकरण और व्यस्त जीवन शैली ने बच्चों को प्रकृति से भी दूर कर दिया। अधिकांश बच्चों ने ना तो खेती की हरियाली को करीब से देखा है और ना ही गांव की सरल जीवन शैली को अनुभव किया होगा। उनका समय तो घर की चार दीवारी में मोबाइल और कंप्यूटर के बीच सीमित हो गया है। प्रकृति से यह दूरी बच्चों की कल्पना शक्ति, रचनात्मकता को प्रभावित करती है। बच्चों को प्रकृति के निकट लाना बच्चों के साथ समाज के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि संवेदनशीलता का गुण समाज के संतुलित विकास के लिए आवश्यक है। संवेदनहीन व्यक्तियों में सहानुभूति व अन्य मानवीय मूल्यों का अभाव हो जाता है। समाज और बच्चों के खुशहाल भविष्य के लिए आवश्यक है कि आने वाली पीढ़ियां मानसिक रूप से स्वस्थ, संवेदनशील और खुशहाल हों। इसके लिए हमें खोते हुए बचपन को पुनः वापस लाना होगा। कुछ छोटे प्रयासों से हम बच्चों के बचपन को पुनः सहेज सकते हैं। बच्चों को खुलकर खेलने का अवसर दिया जाए, जिसमें परंपरागत सामूहिक खेलों की अधिकता हो। परिवार में संवाद और साथ बिताए जाने वाले समय को बढ़ाया जाए। मोबाइल के उपयोग पर संतुलित नियंत्रण रखा जाए। इसके साथ ही बच्चों को पुस्तकों, कहानियों और रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ा जाए। प्रकृति के सानिध्य में अधिक से अधिक समय बिताने का प्रयास किया जाए, ताकि बच्चे जीवन का आनंद लेकर अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर सकें। बचपन कोई वस्तु नहीं है जिसे खरीदा जा सके। यह तो प्रेम, अपनत्व, खेल, प्रकृति, संस्कार और संवेदनाओं का मिला जुला रूप है। यदि ये तत्व जीवन से दूर हो जाएं तो जीवन का वास्तविक सौंदर्य ही समाप्त हो जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि

0: कि हम आधुनिकता और तकनीक के लाभों को स्वीकार करते हुए बच्चों को उनकी मासूम दुनिया से वंचित ना करें, उन्हें ऐसा वातावरण दें जहां वे सपने देख सकें, खेल सकें, गिरकर फिर उठ सकें और जीवन की संपूर्णता के असीम आनंद को महसूस कर सकें। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का स्वर्णिम काल बचपन ही होता है। यदि व्यक्ति से पूछा जाए, पुनः अवसर मिले तो वह अपने बचपन को पुनः एक बार जीना चाहेगा, क्योंकि जीवन काल का यही वह समय है जिसे की छाया में निश्चिंत होकर जीवन व्यतीत करता है, जो फिर जीवन के किसी भी काल में प्राप्त नहीं होता। बचपन की खुशबू न केवल बच्चों को अपितु वयस्क और वृद्ध व्यक्तियों के साथ समाज और राष्ट्र को भी सुगंधित करती है। जब बचपन सुरक्षित, प्रसन्न और संवेदनशील होगा, तभी एक बेहतर और मानवीय समाज का निर्माण संभव होगा। आइए समय रहते उस खुशबू को सहेज लें, उन मासूम पलों को फिर से संजो लें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी कह सके, हमने बचपन को केवल जिया नहीं बल्कि उसको मन में बसाया है। यही बचपन की सच्ची पहचान है। धन्यवाद
1: सखियों। अभी बेहद ही खास वार्ता अभी हमने सुनी, जिसका विषय था तकनीक में खोता बचपन, और जिसकी वार्ताकार थी सुनीता शर्मा। और चलिए सखियों, कार्यक्रम में एक कदम और आगे बढ़ते हैं ज्योति पुंज के साथ। कहते हैं जो स्वयं संघर्ष की राह चुनते हैं, वही दूसरों के लिए प्रेरणा का प्रकाश बनते हैं। आज ज्योति पुंज में बात एक ऐसी महान महिला की करते हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया था। हम बात कर रहे हैं सखियों स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और संविधान सभा की सदस्य दुर्गाबाई देशमुख जी के बारे में। दुर्गाबाई देशमुख जी का जन्म 15 जुलाई सन 1909 में आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में हुआ था। बचपन से ही उनमें देशभक्ति और समाज सेवा की भावना थी, उस समय जब लड़कियों की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता था। तब उन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ समाज में जागरूकता फैलाने का काम भी शुरू कर दिया था। आपने बहुत कम उम्र से ही स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार, स्वदेशी अपनाने और महिलाओं को संगठित करने जैसे अनेक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस तरह सखियों कई बार वे जेल भी गईं, लेकिन उन्होंने कभी अपने कदम पीछे नहीं हटाए। दुर्गाबाई देशमुख जी का मानना था कि किसी भी समाज की वास्तविक उन्नति तभी संभव है जब उसकी महिलाएं शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक हों। और इसी सोच के साथ उन्होंने महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए अनेक संस्थाओं की स्थापना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी आपका आंदोलन जारी रहा। वे भारत की संविधान सभा की सदस्य बनी और देश के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देश के केंद्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड की पहली अध्यक्ष भी रहीं। सखियों, उनके नेतृत्व में महिलाओं, बच्चों, ग्रामीण परिवारों और कमजोर वर्गों के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गईं। तो इस तरह सखियों, उनका जीवन हमें सिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति, शिक्षा और सेवा का भाव किसी भी व्यक्ति को समाज में परिवर्तन का माध्यम बना सकता है। उन्होंने अपने कार्यों से ये सिद्ध किया कि सच्चा नेतृत्व वही है जो दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। आपको सामाजिक योगदान के लिए अनेक राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया था। दुर्गाबाई जी का संपूर्ण जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। आगामी 15 जुलाई को उनके जन्म दिवस पर हम उन्हें अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं। तो सखियों, आज ज्योति पुंज यहीं तक, और कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं इस गीत के साथ।

0: आखिरी सवाल सब हमारे जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके मन में भी आ रहा होगा, एक शब्द होता है ना बदतमीज
1: जी,
0: बच्चे को हम जब ये कहते हैं कि बदतमीज है वो बच्चा, सोशल नहीं है, ये क्या ऐसे ही बच्चे होते हैं जो आगे जाकर
1: वो पर्सनालिटी या उसके संस्कार वैसे रहे। कई बार तो कुछ लोग बनाते भी ऐसा है कि उनके फैमिली में वैसा है, ठीक है। दूसरा है कि दूसरों को देख के भी सीख सकता है बच्चा, या फिर उसमें कुछ कंडक्ट की प्रॉब्लम है, एंटी सोशल पर्सनालिटी के लक्षण है ना। तो इसमें क्या है कि ऐसे बच्चों के साथ बैठना है, क्योंकि वो आप यदि समय नहीं दे रहे हो, पेरेंट्स हैं या फिर जो भी उनके क्लोज रिलेटिव्स हैं, तो बच्चा क्या एडवेंचर की तलाश में गलत संगत में जाता है, तो गलत एक्सपेरिमेंट करता है, तो उससे फिर वो उसी दिशा में बढ़ जाता है। तो उसमें संयम रहना उसको सिखाना चाहिए, घर में ही हर चीज की वैल्यू सिखानी है, संयम सिखाना, थोड़ा पेशेंस, कोई इम्पल्स आती है तो कैसे उसमें, तो ये चीजें काउंसलिंग से काफी हद तक कंट्रोल होती हैं, है ना।
0: अब सर कई बच्चे हैं ना, बहुत तेज गुस्सा आता है उनको, बहुत तेज गुस्सा आएगा और आता छड़े के, पर जब गुस्सा आएगा तो मतलब कहते हैं ना कि वो सब भूल जाते हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचा लेंगे, किसी को भी हाथ में मार देंगे या हाथ में जो है वो तोड़ देंगे, बाद में डर लगता है कि मेरे को डांट पड़ेगी, पर उस समय वो कंट्रोल नहीं कर पाते, ये क्या इसको
1: रिलेट इसका ही एक लक्षण है समझ लीजिए। Okay. ये भी इंपल्स कंट्रोल का सिम्टम है।
0: अगर ऐसे किसी बच्चे को हो रहा है तो हम सावधान हो जाएं।
1: हाँ, कि उस इंपल्सिविटी है उसके अंदर।
0: मित्रों ये बहुत छोटे छोटे सवाल हैं जो हम सर से पूछते हैं और आप हमें भेज देते हैं, और हम उसके बारे में सर से बात करते हैं और बड़े बेबाकी से सर उसके उत्तर भी दे देते हैं। आपके मन में भी ऐसे कोई सवाल है या ऐसा कुछ लगता है कि पूछा जा सकता है सवाल, तो हमारे एक व्हाट्सएप नंबर हम आपको हर कार्यक्रम में देते हैं, उस पर आप भेज सकते हैं, फ़ोन पर सीधा संपर्क भी कर सकते हैं और छोटी मोटी काउंसलिंग भी ले सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के सुविख्यात न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। नंबर नोट कीजिए 9406925768। नंबर फिर से सुन लीजिए 9406925768। अब मिलेंगे हम अगले सोमवार ठीक इसी समय, तब तक के लिए स्वीकार कीजिए मनोज सक्सेना और डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत का नमस्कार।

ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी, अनुप्रसारण किया जाएगा हमारे भोपाल केंद्र से।

0: हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजे हैं। कुछ ही पलों में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है गुना जिले की चिट्ठी। आलेख रोहित गोस्वामी का है, वाचन स्वर है अभिषेक कटियार का। जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात शिक्षा की। बजरंगगढ़ के पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में सत्र 2027-28 के लिए कक्षा 6 में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले की कक्षा 5 में पढ़ रहे पात्र विद्यार्थी 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा 28 नवंबर को आयोजित की जाएगी। शिक्षा के बाद अब बात करते हैं जनकल्याण की। मुख्यमंत्री जनकल्याण 2.0 योजना के तहत मुख्य

0: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिनों राज्य के 16,754 श्रमिक परिवारों को 365 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की। गुना जिले के 239 श्रमिक परिवारों के खातों में भी 5,36,00,000 रुपए सीधे भेजे गए। बमौरी के भौरा में करीब 280 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया गया। इस परियोजना से करीब 225 गांवों के 2,00,000 से अधिक लोगों को बेहतर और निर्बाध बिजली मिलेगी। गुना जिले के मौसम का हाल भी लगातार बदल रहा है। पिछले कुछ दिनों से बादल छाए हुए हैं और कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई है। 1 जून से 9 जुलाई तक जिले में औसतन 270 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। चांचौड़ा, कुंभराज और मकसूदनगढ़ में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती करने की सलाह दी गई है। इसी बीच समाज को मुख्य धारा से जोड़ने की पहल भी हुई। कुंभराज के बिरियाई गांव में रात्रि चौपाल और रोजगार सम्मेलन का आयोजन बीते दिनों किया गया। ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं और उनके समाधान के निर्देश दिए गए। 11 युवाओं को रोजगार के नियुक्ति पत्र भी इस मौके पर सौंपे गए। अब बात करते हैं महिला एवं बाल विकास विभाग की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रिक्त पदों से जुड़ी आपत्तियों के निराकरण के लिए 13 से 15 जुलाई और 21 से 24 जुलाई तक विभिन्न बैठकों का आयोजन जिले में किया जाएगा। संबंधित आवेदिकाओं को अलग से सूचना भेजी जाएगी और सभी को तय समय पर उपस्थित रहने को कहा गया है। खेती किसानी की बात करें तो ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 10 अगस्त तक की जाएगी। जिले में इसके लिए 4 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। पंजीकृत किसान स्लॉट बुकिंग के अनुसार अपनी उपज बेच सकते हैं। बरसात के मौसम को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सर्पदंश से बचाव की सलाह जारी की है। अधिकारियों ने कहा कि सांप काटने पर झाड़ फूंक या घरेलू इलाज न करें। ऐसे मामलों में तुरंत नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचें। समय पर इलाज मिलने से जान बचाई जा सकती है। शहर की यातायात व्यवस्था की अगर बात की जाए तो सड़क दुर्घटनाएं रोकने और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए भारी माल वाहनों के प्रवेश पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया गया है। अब रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक ही ऐसे वाहन शहर में प्रवेश कर सकेंगे। दिन के समय नियमों का सख्ती से पालन कराया जाएगा। विद्यार्थियों के लिए एक और अच्छी खबर है। प्रदेश के पर्यटन बोर्ड की पर्यटन क्विज 2026 प्रतियोगिता के लिए स्कूल 25 जुलाई तक ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं। जिला स्तरीय प्रतियोगिता 7 अगस्त को होगी। विजेता टीम राज्य स्तर पर जिले का प्रतिनिधित्व करेगी और सफल टीमों को निःशुल्क पर्यटन भ्रमण का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के दौरान जिले में 1,67,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की दवा बीते दिनों पिलाई गई, जिसके लिए 1,513 पोलियो बूथ बनाए गए थे। स्वास्थ्य टीमों ने घर घर जाकर भी लोगों को जागरूक किया। वहीं दूसरी तरफ स्वनिधि महोत्सव में पथ विक्रेताओं को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया गया। इसी दौरान सिंघाड़ी रोड पर आधुनिक फल एवं सब्जी मंडी के निर्माण का भूमि पूजन भी किया गया। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। बीना गुना रुठियाई मेमू एक्सप्रेस सेवा शुरू हो गई है। इस नई ट्रेन से विद्यार्थियों, कर्मचारियों, व्यापारियों और रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी। जिले में युवा संगम कार्यक्रम में बीते दिनों 269 युवाओं ने पंजीयन कराया, जिनमें से 191 युवाओं को निजी कंपनियों ने रोजगार के ऑफर लेटर प्रदान किए। इसके साथ ही कई हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए ऋण और आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई। और अंत में एक जरूरी अपील। जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर भ्रामक, आपत्तिजनक और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री साझा करने पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि किसी भी खबर, फोटो या वीडियो को बिना जांचे आगे न बढ़ाएं। गुना जिले की चिट्ठी में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले की समसामयिक गतिविधियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। आज आपने गुना जिले की चिट्ठी सुनी। ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है फोन करें, लोकगीत सुने कार्यक्रम का। आइए सुनते हैं। आइए सुनिए। पेश है

0: आइए श्रोताओं, आप सुनते हैं, फोन करें, लोकगीत सुने।
1: भैया आप और के मन पसंद को कार्यक्रम साप्ताहिक कार्यक्रम जो एक बार फिर से हमारे लेके आ गए हैं, जो उनको नाम है फोन करें लोकगीत सुने।
2: और भैया रिमझिम रिमझिम बारिश के बीच में स्वीकार करो हम दोइयों की राम राम।
1: और बिल्कुल देरी नहीं करने जैसे घर भैया,
2: बिल्कुल लेते हैं जो पहलो फोन।
1: बिल्कुल।
2: हेलो
3: हेलो
2: भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको, अपना नाम बता दो।
3: आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम बोल रहे हैं जमुना कुशवाहा, ग्राम सरकाखेड़ा, जिला टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से।
2: सरकाखेड़ा टीकमगढ़
3: जी।
2: जमुना भैया हमें कछु अपने गांव के बारे में बताओ, और वर्षा ऋतु को कैसो का चल रहा है सो जा भी बता दो हमें।
3: सर वर्षा ऋतु बहुत बढ़िया चल रही, कल से पानी बरस रहा, वर्षा सोयाबीन जमे आए।
2: हाँ हाँ।
3: और गाँव बड़ा था हमारा, घोड़ा बड़ा गाँव के पास में है, ककरवाहा रोड पे।
2: अच्छा अच्छा, तो भैया कितनी जनसंख्या हुई है आपके गाँव में?
3: गांव में जनसंख्या 500 वोटिंग है सर।
2: हाँ हाँ भैया, हमने एक चीज देखी है कि पहले जब युवा होते आदमी, लड़कपन होते तो ऐसा लगता है कि बड़े शहर की तरफ चलें, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़त जागरूक है तो मानसिक शांति और सहजता सरलता जीवन में जिस सारी चीजें अपने गांव में छोटे शहरों में बड़ी नोनी मिलत है, क्या कहो है आपको?
3: जो कहो है सर के जैसे जो उमंग होता है ना बाहर देखवे की, सिटी शहर जावे की।
2: हाँ हाँ।
3: फिर कुछ दिन में अपने गांव में ही सुकून मिला था, माँ बाप के पास, अपनी खेती बाड़ी मेड़ पे घूमबो, खेती किसानी
2: के, अपने रिश्तेदारों के साथ। हाँ। सुख दुख में एक दूसरे को साथ मिल जाओ थे भैया। तो
3: बिल्कुल।
2: अब सबसे बड़ी चीज है भैया जिंदगी में शांति।
3: हाँ।
2: तो भैया बहुत ही अच्छी बात है। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका।
3: हाँ पूछे सर जी, अगर बन जाए तो।
2: बिल्कुल, अटका बहुत ही मजेदार है
3: जी।
2: एक रूख झलरा, ऊ के तरे बिलरा, ऊ के तरे सुरकू, ऊ के तरे हप्पू।
3: समझ में नहीं आई सर, एक बार और बताओ आप।
2: एक बार का हम भैया आपको और बता दे रहे हैं। एक रूख झलरा, ऊ के तरे बिलरा, ऊ के तरे सुरकू और ऊ के तरे हप्पू।
3: दिमाग नहीं पहुंच रहा, वहां तक नहीं बन रहा हम।
2: कोई बात नहीं भैया, अब हमें बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे।
3: लोकगीत तो सुनना हमें विजय सिंह ठाकुर की जमनार।
2: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे विजय सिंह की गाई भाई जय जमनार।

0: हेलो
1: हेलो, जय श्री राम सर।
0: जय श्री राम भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम को नाम है, फोन करें
1: लोग। फोन करें लोग बीच में।
0: बिल्कुल
1: सर। अरविंद बोल रहे सर, मझगवा थाने से, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, मध्य प्रदेश।
0: अरविंद मझगवा थाना,
1: मझगवा सानी।
0: मझगवा सानी
1: जी सर।
0: विकास खंड को का नाम बताओ आपने?
1: बेगमगंज,
0: जिला रायसेन,
1: मध्य प्रदेश।
0: चलो भैया, बहुत स्वागत है आपको। और अरविंद भाई
1: जी सर,
0: बताओ कहाँ चल रहे होते?
1: पानी गिर रहा हो सर, अभी तो बारिश।
0: अच्छा, कब से शुरू हुआ भैया जो पानी?
1: पानी तो दोपहर से गिर रहा हो सर।
0: नहीं, और एक पहले भी गिरो है पानी?
1: हाँ गिरो है सर, बोनी हो गई हमारे थे।
0: अच्छा देखो, सबके थे जो वर्षा होते भैया
1: जी,
0: ओ को हिसाब किताब जो है खेती से मिला थे आदमी के, खेती को जो पानी फायदेमंद है के ज्यादा है। लेकिन आपके इते की वर्षा के दो महत्व है, एक और को महत्व है, कछु बता सका था आप? हम काय की तरफ इशारो कर रहे
1: सर, हमें समझ नहीं आई।
0: देखो भैया, रायसेन जिले में जब बस्तारो होते तो सागर जिले के लोग भगवान से विनती करते हैं कि रायसेन में अच्छी बारिश हो बे रायसेन जिले में।
1: जी
0: कैसे भैया, उते की बरसात से हमारे ते जो इते राजघाट बांध है ना,
1: जी सर, आगे ही समझ में,
0: बेबस नदी पे है ना
1: जी,
0: एको भराव होते भैया
1: जी सर।
0: तो ऐसा होते खेती के अलावा दूसरो महत्व जो है कि राजघाट से लाखों आदमियों की प्यास बुझत है
1: जी सर।
0: तो एक जो भी
1: हाँ
0: सैमरी जलाशय सुनो है भैया
1: जी, 1500 एकड़ में सर अपने खेत से लगवा हुआ, खेती किसानी कराते हैं सर हम भी।
0: तो खेती किसानी में उनको फायदा भी मिला था भैया?
1: हाँ सर, खेत से लगो है पानी, अपने सिंचाई बिचाई सब वही से चलाते।
0: चलो चलो, बहुत अच्छी बात है भैया। बोनी वोनी कर दी आपने?
1: बोनी हो गई सर, सोयाबीन हो गया, 15 दिन को होगा।
0: 15 दिन को सोयाबीन हो गया। खरपतवारों के लाने कछु सोची है आपने?
1: जी सर, किसान वाणी सुना थे सर, सुन खेंगे राय ले।
0: चलो ठीक है भैया। और सोयाबीन के अलावा और कछु फसल सोई लगाई भैया का?
1: धान भाई है सर, मैं लगाई तो नहीं है भाई, है धान है, अरहर है।
0: हाँ बा हम पूछ में बारे है, तो ये सब भैया कि अगर बांध आपके खेत के बगल से गाँव है तो होते धान शायद आप लगाते हो है ना?
1: जी सर, हम तो बहुत हैंगे भी ऐसी लगात नहीं है।
0: अच्छा वैसी रोपाई नहीं करते?
1: ज्यादा लगाते सर अपने।
0: हाँ तो रोपाई नहीं करा था आप, सीधी बोत हो?
1: बुआई कराते सर।
0: चलो ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छी आपकी खेती बाड़ी होवे। अब अरविंद भाई अपन आते हैं आज के अटका पे।
1: जी सर,
0: अटका हमेशा अपने जो श्रोता भैया बिन्ना हरे कहन लगत है कि कठन हो गो कर्रो हो गो।
1: जी सर,
0: आज हम कह रहे हैं कि हाँ तना कर्रो है, लेकिन दिमाग लगे हो तो बन जाए आपको।
1: जी सर, कर है प्रयास।
0: हाँ तो जो है कि एक रूख झलरा
1: जी,
0: ओ के तरह बिलरा
1: जी,
0: ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: प्रश्न बोलिए।
0: एक रूख झलरा
1: जी,
0: ओ के तरह बिलरा
1: जी,
0: ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: चूलो तो नहीं है?
0: नहीं चूलो नहीं है भैया।
1: का से संबंधित है, थोड़ा संकेत दे सका सर?
0: जो संबंधित है, जैसे आप अबे बातचीत कर रहे हो भैया और हम अबे बातचीत कर रहे हैं, तो ए में से ज्यादातर चीजें काम कर रही है।
1: टावर?
0: नहीं टावर नहीं है, मानव शरीर से जुड़ी भाई चीजें हैं।
1: तो बाल

0: तो नहीं है सर सर के।
1: चलो बाल और बताओ बे, तो मुझको वो है भैया
0: सर, बाल उसका कान आंखें।
1: चलो बहुत हद तक पहुंच गए, थोड़ा सो अब आप फोन रखवे के बाद और विचार करियो, आपको समझ में आ जाए।
0: जी सर, और वो तो बना तो ही नहीं है सर।
1: चलो चलो कोई बात नहीं, जो एक ही लाने आए के बनन लगे आदमियों को जानकारी होवे है ना।
0: जी सर।
1: चलो अरविंद भाई
0: फरमाइश। तो नहीं है
1: सर। हाँ चलो, आपने लगभग टूटो फूटो पूरा उत्तर दे दो है, और अब बता दो फरमाइश।
0: चंद्रभूषा पाठक की आवाज में सुना रही कोई देवी जी।
1: लो भैया आपकी फरमाइश पूरी करी जा रही है अरविंद भाई, आपको हम सुनवा रहे हैं चंद्रभूषण पाठक और इनके संगी साथियों को गाओ जो लोकगीत।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ
0: भैया, फोन करें। लोकगीत सुने में खूबे खूब स्वागत कर रहे हैं आपको। अपनो प्यारो सो नाव बता दो।
1: हम बोला सर जी प्रसाद लोटी ग्राम नया खेरा तहसील घोड़ा जिला छतर पर से।
0: अच्छा चलो भैया, बहुत ही अच्छी बात है। अपनो पूरा पतो एकदम से मौका आपने सुना दो है। तो सर जी भैया, करत का हो आप?
1: किसानी कहते हैं साहब।
0: तो अबे का चल रहा हो किसानी में?
1: अरे साहब सोयाबीन धान मूंगफली की किसानी हो रही।
0: तो बरसात से कोई शिकायत तो नहीं है?
1: नहीं बरसात से कोई किसान नहीं। अच्छा पानी बरसा अच्छी हिसाब से बोनी हो गई।
0: हाँ चलो भैया, अच्छी बात है कि हमें शिकवा शिकायत ना करके अपनी मेहनत पे ध्यान देने हैं। और कृषि प्रधान हमारा देश है, तो आप लोगों की इज्जत सम्मान पूरा देश करत है। और आप लोगों की तरफ देखत है भैया कि आप कैसे अच्छो उपजाओ गेहूं चावल और बाकी सारी फसलें मनो उगे संगे। एक जिम्मेदारी भी भैया आपके पास आ जात है कि जो जैविक कृषि को है एको इस्तेमाल अपन को ज्यादा करना, जैविक कृषि करने हैं। काहे केमिकल वाली खादों से, केमिकल वाली दवाइयों से खुद को बचने हैं। काहे के भैया अपन जब दवाई डालते हैं खेतों में तो वो अपने नाक में से होत भाई, मुंह में से होत भाई, फेफड़ों में चले जाते हैं।
1: खाद बनाया था जो जैविक खाद बना के,
0: हाँ भैया
1: उसको छिड़काव करे जी।
0: बहुत ही अच्छी बात कही भैया, अपन को जैविक कृषि की तरफ चलने हैं जिसे कई बीमारियों से अपन बच सकते हैं भैया।
1: जी जी,
0: तो बहुत ही अच्छी बात है। जो वालों संदेश भैया आप अपने संगी साथियों में भी फैलाओ कि भैया अपन को जैविक खाद बनाने हैं। और जैविक दवाइयां नीम की पत्तियों से भैया और नीम की निबोरी से कितनी दवाइयां बन जाते हैं,
1: गोड़ से, गोमूत्र
0: से, गोमूत्र से खूब बन जाते हैं। हाँ गोबर से सबसे बना था भैया। और इसमें मेहनत लगा था, मनो स्वाद अलग मिला था अपन को।
1: जमीन खराब नहीं हुई।
0: हाँ तो अब भैया हम पूछ रहे हैं आपसे एक 900 अटका। अटका कह रहा है कि एक रूख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
1: समझ में नहीं आया,
0: एक बार फिर से सुन लो भैया। एक रूख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
1: हम पे नहीं बनने साहब।
0: मनोज सुनवे में तो मजा आ गया आपको
1: जी।
0: तो भैया जो अपने शरीर से जुड़ी कोई बात है?
1: शरीर से जुड़ी भाई है।
0: हाँ चलो भैया, आपकी खुशी हमारे लाने भैया सबसे बड़ा सम्मान और सबसे बड़ा पुरस्कार होता है कि हमारे श्रोता खूब खुश हो जाए। क्या क्या जीवन में परेशानियां तो सभी के लगी भाई हैं। मनो थोड़ो सा अगर टाइम मिल जाए कि अपन हंस बोल लें, चेहरा पे मुस्कुराहट आ जाए तो तनाव रहित हो जाती है भैया। तो अब भैया अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा देवे?
1: उर्मिला पांडे को लोकगीत सुना दे कौन भी।
0: चलो भैया हम आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं और सुन लो अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: हेलो।
1: हेलो, फोन करें लोकगीत सुने।
0: बिल्कुल भैया, फोन करें लोकगीत सुने आकाशवाणी केंद्र सागर।
1: गुड्डू चौबे बोले, बमहरी ढूंढा जिला सागर से।
0: गुड्डू चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है। एक पहले कभी लगो तो आपको फोन।
1: 3 महीना हो गए अब तो, तुम तो देख ले बिल्कुल।
0: बिल्कुल भैया, देख लेते हैं। और कहाँ चल रहा हो वे?
1: अब बुआनी हो गए साहू जी, तो अब तो देखा ही देख चल रहे ढोर बछेरू देख जाओ थे, निगरानी कराते रहते हैं खेतों की।
0: अच्छा, ढोर बछेरों पैसा भैया, एक चीज ध्यान आई गुड्डू भैया?
1: हाँ हाँ
0: के बसकारे की हरियाई देख के अपने जो जानवर हैं एकदम से टूट पड़त है हरियाई पे।
1: हाँ हाँ, तो इंतजाम तो करे हैं अपने, तार माल लगाए हैं, बेरगवाई बेरगवाई लगा देते हैं।
0: हाँ भैया, ना फिर उनको दस्त दस्त लग जाते, पोंकन लगाते हैं तो फिर दिक्कत हो।
1: नहीं, लावासी फेरत है जो गाँव वाँव के अपने। हाँ, खुद के तो अपन बांध रहे हैं,
0: बांध के उनको भोजन कराओ चाहिए, माने उनको चराव चाहिए, है ना।
1: हाँ हाँ,
0: अबे खोलो छोड़ दे तो ज्यादा हरियाई खा जाते भी।
1: हाँ, नुकसान भी कर जाते उनको।
0: एक बात तो जा हो गई भैया, दूसरो बोनी काय की कर दी, जमनाम ना होगा।
1: हाँ, सोयाबीन भाव साहू जी, अपन ने सोयाबीन और मक्का लगाई है।
0: सोयाबीन मक्का और कछु और दा राहर
1: गोर के रूप में घर को खर्च को हो जाए। चार मार को बारह मारा बना देखो, ऐसी ज्यादा में नहीं करे ज्यादा।
0: भैया बरों को नाम ले दो आपने, है ना।
1: कछु जगह छोड़े हैं तो साग भाजी लगा ले हैं अपने घर को हो जाए।
0: अच्छा गुड्डू भैया, एक चीज और बताओ, बरा पे से ध्यान आई
1: के
0: एक तो होते हैं बरा, एक हो अपन कुचियां भी केत।
1: हाँ, कुचियां ही खेत है गाँव में ज्यादा, कुचियां ही।
0: और कहूँ कहूँ भैया, दरिया का हाथ है, दरिया और में का फर्क रहे बरा में, कछु बते हो?
1: अब दरिया कुछ ज्यादा तो जाइए का यार, दार के बनाते छकरा लगी से होगा दरिया।
0: हाँ,
1: और दार साफ करके धूली दार के होगा सुबह होगा बरा।
0: अच्छा अच्छा, चलो भैया ठीक है,
1: हमारे हिसाब से।
0: हाँ, और हमने आकार को भी फर्क देखो भैया, जहाँ जहाँ दरिया खाए वे बहुत बड़े रहे थे।
1: हाँ हाँ,
0: और कुचिया छोटी
1: तो स्वाद ही लग रहा था वो गांव की, वो कुचिया को
0: बिल्कुल
1: भूलीदार को नहीं, तो स्वाद आ गया वो बना था बड़ा दही बड़ा, तो वो
0: बिल्कुल बिल्कुल अच्छी देसी बीज की उर्दा हो भैया तो आनंद आ जात।
1: अरे माई में डाल के खा दो, मजा आ जाता तो घर को हो, माई मठानी को
0: ताजो मठा। चलो गुड्डू भैया, कितने दिन की हो गई आपकी सोयाबीन की फसल?
1: अब कछु होगा 10 दिन को, कछु 8-8 दिन को, जैसी थोड़ी थोड़ी पानी आने गिरा तो ऐसी बोनी करी है।
0: जैसो जैसो बतर में लतका हुई है उसी बोनी करी हुई है आपने?
1: हो हो, तो कछु कछु गांव के खराब हो गए हैं, कछु कहूंगो नहीं।
0: हाँ, तो भैया जो अंतर जितने दिन को अंतर रहे थे, जो अखीर तक चलत हुई है ना, देख रेख में भी दवाइयों में भी।
1: हाँ साहू जी, जाके ऐसे इन दिनों की हर जेठी हाउस है, एक टाइम को भी जेठ हो जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, जैसे जुड़वा बच्चा होता है भैया, तो एक मिनट को भी फर्क है तो वो जेठो और लोहेरो का हाउस।
1: हाँ, तो यहाँ तो हर जा खाऊ दे आसार की बानी में, हर जा जेठी हो जाते पहले बकाए तो बहुत जाते हो। तो हर जा डर के मनाती तो वह हर जा जो पहले भाई जाती तो वह हर जा जेठी हो जाती।
0: चलो भैया, आज बहुत अच्छी आपसे जानकारी मिली हमें और

0: अब आउ थे अपन आज के अटका पे।
1: हाँ पूछो साहू जी, मैंने तो बता है।
0: बिल्कुल भैया, कह लगत एक रूख झलरा, ओ के तरह बेलरा, और ओ के तरह सुरकू, और ओ के तरह हप्पू। हाँ सर भैया,
1: नाक तो नहीं।
0: चलो और सोचो तनक।
1: जी भाई
0: फिर से सुनो, आप आपने सही दो है एक जवाब। एक रूख झलरा, ओ के तरह बेलरा, ओ के तरह सुरकू, और ओ के तरह हप्पू।
1: तो नाक या जी भाई।
0: चलो चलो, बहुत हद तक आपने बता दो है, सुना चलो आपको और अच्छे से मालूम चल है। अच्छा। और आप जो हंसे ना, आपकी जो खुशी है, अब अबे अपने जयशेखर भैया एक श्रोता से बात कर रहे थे कि जब खुशी महत्वपूर्ण रहे थे, है ना?
1: नहीं, हाल फूल सी हो जाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल, अटका की एक जानकारी हो थे जितनी महत्वपूर्ण बात है उतनी उससे ज्यादा महत्वपूर्ण जा बात है कि हमारे श्रोता भैया बिन नहरे खुश हो जाते हैं ना।
1: अरे साहू जी, हमारे सियाने सियाने सुना थे एक गंजवारी बाबा है 80 साल के।
0: हाँ जी,
1: वे बाजो रखे हैं, अबे अभी रेड गोई रखे हैं वे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: और सेलदार सेल आई तो भाई आके मिले थे सागर जाओ जाओ।
0: चलो भैया,
1: हम पूरा कार्यक्रम सुना थे नहीं, जो हम फोन करे में आए तो कहें गुड्डू महाराज तुम्हारा फोन आओ तो कहीं का हमने सुनो तो। हाँ, किसान माड़ी में भी समस्या भी कछ उनकी हो तो हमसे पूछवाली थे।
0: हाँ, हाँ, एक दो बार आपने उनके नाम से पूछी है, बिल्कुल सही बात। हाँ, है भैया, जो आकाशवाणी को सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे बुजुर्ग बार और नियमित श्रोता हमारों के संग जुड़े हैं। और अब गुड्डू भैया आज की फरमाइश बता दो आप।
1: राम गोपाल नायक को लोग भी सुनवा दो।
0: राम गोपाल नायक को कौन सो
1: वो सुनवा दो, काय हमसे करिया कहती मैया हमें सखियां सताती।
0: चलो ठीक है भैया, तो आपकी फरमाइश गुड्डू भाई पूरी करी जा रही है, आपको हम सुनवा रहे हैं आपकी फरमाइश पे राम गोपाल नायक को गाओ जो कृष्ण भजन।

0: हेलो सर, नमस्ते।
1: नमस्ते भैया, फोन करें लोग की सुने में खूब ही खूब स्वागत कर रहे हैं आपको।
0: ग्राम बमाना सर, राकेश राजा।
1: राकेश भैया, बरसा रानी का क्या रही है?
0: बरसा ही रही सर।
1: बरस रही है
0: जी सर।
1: तो भैया ठीक ठाक चल रहा हो काम धाम के? नहीं,
0: बढ़िया सर, ठीक है ठाक चल रहा, बरसा अच्छी हो रही दम से।
1: हाँ भैया, देखो सब ऋतुओं को अपन को लाभ लेना चाहिए, और अपन अगर अपनी प्रकृति को बचा के रखें, पर्यावरण को बचा के रखें, तो जो पहले है तो कुछ समय पहले के भैया 4 महीना जड़ कार्य के, 4 महीना बस कार्य के और 4 महीना गर्मी के, तो ये 4 महीना कितने अच्छे लगते। अब तो भैया ऐसा होगा कि 4 महीना गर्मी के और उसके आगे 4 महीना भी गर्मी के और उसके आगे भी 3 महीना गर्मी के, 1 महीना ठंड को।
0: अब तो पता ही नहीं पता सर क्या गर्मी है, चल ले के ठंड है चल ले।
1: हाँ भैया, तो अपन की एक ही जिम्मेदारी बन रही है कि अपन पेड़ बचाएं भैया, और पेड़ लगाएं बरसात के मौसम आ गया। हाँ हाँ, और भैया संगे संगे एक और जरूरी बात रहे थे, तब भी पर्यावरण अच्छा रहे कि आप हमें अटका को जवाब दे दो।
0: जी सर,
1: क्या कि आप हंसो भैया, हम हंसे तो पर्यावरण भी हंसे।
0: ये सर बनेगा तो बताएंगे।
1: बिल्कुल भैया, अटका कह रहा है कि एक रूख झलरा, ऊके तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
0: संकेत सर कछु
1: बगैर गैसिंग के भी तो आप पेपर हल करके बताओ थोड़ो
0: सर, एक बार फिर से बोल दीजिए।
1: हाँ, एक रुख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू और ऊ के तरह हप्पू।
0: सर बारिश तो नहीं है।
1: चलो भैया कोई बात नहीं, अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे।
0: राजू पटेल सुनवा दीजिए सर।
1: राजू पटेल को कौन सा भैया
0: कौन से सुनवा दिए सर?
1: ठीक है भैया, हम आपको सुनवाऊ थे राजू पटेल और उनके संगी साथियों को गाओ भाओ जो लोकगीत।
2: अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत चित से टरे नटारी, अरे सांवरी सूरत मोहिनी मूरत।

0: हेलो
1: हेलो भैया, जयराम जी लग गओ।
0: जयराम जी भैया कहाँ पहुँच गए आप? कह रहे पहुँच गए है।
1: अरे जो संगवार से बात चल रही थी।
0: चलो ठीक है भैया,
1: से लगा रहे थे सर।
0: अच्छा सो फोन पहुँच गए जा के रहे थे।
1: जाए के भी हम अंदर पहुँच गए
0: जा। बहुत अच्छी कह रहे थे, काय से कछु जगह के फोन ऐसे आते हैं भैया को तो खूब हल्ला गुल्ला होते रहते।
1: हाँ तो हमने पहले इशारा कर रहा हूँ तो।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा करो,
1: हल्ला ना करके हम लग गए अपने।
0: चलो बहुत अच्छा काम करो आपने। और बता दो अपनो नाम और कहाँ से बोल रहे।
1: हाँ हम बोल रहे साहब नरवानी से, राजू राय बोल रहे।
0: राजू राय?
1: हाँ नरवानी से,
0: जो नरवानी मकरोनिया के पास।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मकरोनिया के 2-3 किलोमीटर फोन लाने से बिल्कुल लगी हुई है अपनी बस्ती।
0: अच्छा, और नरवानी कितनो बड़ो गांव है राजू भैया?
1: बड़ो गांव है सब, कम से कम 1,200 वोटर है।
0: 1,200 वोटर है तो 2,500-3,000 की आबादी हुई है ना।
1: हाँ हाँ।
0: चलो भैया, और का का सुविधाएं हैं आपके गांव में? वैसे तो जो शहर से बिल्कुल लग गांव है मनो, फिर भी हाँ। आपके गांव में पंचायत में जो है का का सुविधाएं हैं?
1: अपने तो सभी सुविधा है बिल्कुल।
0: अस्पताल है भैया के?
1: अस्पताल नहीं है,
0: बड़तुमा हाथ हो। चलो ठीक है भैया, और का करत हो आप उते नरवानी में?
1: हम दुकान कर रहे हैं।
0: काय की दुकान? किराने की। भैया आप किराने की दुकान करे हो तो सामान लेबे कहाँ जात हो आप? अच्छा उतई उपलब्ध हो जात कछु सामान मकरोनिया आके ले जात हुई हो? और अगर
1: मकरोनिया ले जाते
0: और अच्छे दाम से चाहे तो सागर भी आ जात हुई हो?
1: सागर चले जाते।
0: चलो भैया बहुत अच्छी बात है। और खेती बाड़ी?
1: खेती बाड़ी है सर अपनी 2 एकड़ है सुते नहीं है धामोनी क्षेत्र में तो बहरवाल के।
0: इतो बड़ो फर्क काय होगा भैया, खेती आपकी धामोनी में है और रेत आप नरवानी में हो?
1: का है इतने की बेच के उते ले ली थी।
0: अच्छा अच्छा, तो फिर उते की को देखत भैया खेती बाड़ी?
1: उते तो यहाँ भगाई मई थे ठीक है।
0: चलो भैया ठीक है, हालांकि एक बात कही जाते है कि खेती आप सेती है ना, अगर अपने हाथ से करो भैया खेती तो उमें तनक वो फायदा दिखाते। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भैया तो फिर आपकी मजबूरी कहा कि आप करवाते हो है ना।
1: हाँ हाँ।
0: चलो राजू भैया तो पाँव को अपने इलाज विलाज भी करवाओ।
1: हाँ।
0: और भैया अब आते हैं अपन आज के अटका पे।
1: हाँ।
0: तो आज अटका लेके आए हैं कि एक रूख झलरा ओ के तरह बिलरा और ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: जो तो सर नहीं बन रहा
0: है। नहीं बन रहा भैया?
1: फिर से कज्जू एक मेरे।
0: हाँ बिल्कुल भैया, फिर से कहें दे रहे के एक रूख झलरा ओ के तरह बेलरा और ओ के तरह सुरकू और फिर ओ के तरह हप्पू।
1: डिब्बी तो नहीं चला? डिब्बी जलाती
0: नहीं? डिब्बी नहीं भैया,
1: संकेत बताओ देना।
0: संकेत अपने शरीर से जुड़ी भाई चीजें हैं भैया।
1: आँख खुजे तो सर
0: बगल में खड़े खड़े जे आँख कान मुंह को कह रहे भैया
1: सब बताया।
0: हाँ तो चलो ठीक है भैया, अभी बहुत सही कह रहे हैं, अब सुना चलो आप, बाद में आपको और बिल्कुल एकदम स्पष्ट रूप से उत्तर पता पड़े।
1: हाँ हाँ।
0: और अब बता दो राजू भाई अपनी फरमाइश।
1: हमें बात सुनना है, काय राधा तुमने गजब कर गई।
0: उनकी फरमाइश तो आ गई भैया।
1: आ गई?
0: हाँ।
1: तो एक काम करो तो।
0: बताओ करें ले।
1: अच्छी कोनू ब्याह की गाड़ी।
0: हाँ ब्याह गाड़ी, कोनू कलाकार को नाम बते हो भैया?
1: मालती विश्वकर्मा की गाय सुना दियो गारी।
0: चलो ठीक है भैया, लो आपकी फरमाइश पूरी कर रहे हैं, आपको सुनवा रहे हैं मालती विश्वकर्मा और इनकी सखियों की गाय जब आओ गारी।

0: हेलो।
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते भैया, फोन करे लोकगीत सुने में स्वागत है आपको। अपना नाम बताओ।
1: हमारा नाम तेज सिंह लोधी, सेमरा रामचंद।
0: सेमरा रामचंद भैया, जो सेमरा कहाँ पे है आपको?
1: बंडा से 8 किलोमीटर बराठा रोड पे है।
0: अच्छा भैया, तो हमें लगा था घूमे फिर भी, तो आप दिन भर बंडई में आजाद हुई हो।
1: बंडई में आजाद है मित्रैया जी लक्ष्मण।
0: हाँ, तो चाय भी पियत रहे थो।
1: चाय तो बस है।
0: देखो ये अब आगे है चाय को मौसम, बरसात है, जैसे जैसे गर्मी कम हो रही है। और कई शौकीन भैया हम जैसे तो भैया गर्मी में चाय ज्यादा पियते, और चाय को तो ऐसा है कि चाय जब पी लो। तो भैया करत का हो तेज सिंह भैया आप?
1: सर खेती किसानी करते हैं।
0: और बरसात के हाल चाल कहाँ है भैया, संतुष्ट हो कि नहीं अभी तक?
1: बरसात की ठीक हो रही सर, अच्छी हो रही, जो जैसे पना चाहिए है।
0: हाँ हाँ हाँ, यानी मूसलाधार तो नहीं हो पा रही है, रिमझिम रिमझिम हो रही है।
1: अच्छी रिमझिम बारिश हो रही।
0: हाँ हाँ,
1: मौसम भी ठीक हुआ है।
0: हाँ, थोड़ी सी बस जा है भैया कि उमस खत्म हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है। क्या गर्मी तो अपन झेल लेते हैं, उमस में का पूरे कपड़ा पसीना में भीग जात भैया। तो कछु अपने विचार बताओ भैया हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों के बारे में।
1: हम तो सर सुना थे आपके, पहले से सुन रहा है।
0: हाँ हाँ, कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हो भैया?
1: हमें तो जो हम सुना था लोकगीत है जो ऐसे।
0: हाँ हाँ हाँ, और भैया हम आपसे निवेदन करें कि अगर आप किसान वाणी सुनो, खेती गृहस्थी से जुड़ो भाव कार्यक्रम, वो में आपको लोकगीत भी मिले हैं, मनोरंजन के जितने स्तंभ हैं वो आपको सब मिले हैं, और संगे सूचना ज्ञान जी मुफ्त में मिले भैया वो में अलग से।
1: तो उसे जुड़ दे भी, खेती किसान से जुड़ दे आकाशवाणी।
0: बिल्कुल भैया, और आप गुरुवार को भी फोन लगा सकते हो, और अपनी जो भी समस्या है पशुपालन से जुड़ी, खेती बाड़ी से जुड़ी, आप फोन करो, हमारे के बैठे थे विशेषज्ञ भैया, तुरंत के तुरंत हाथों हाथ लो आपको जवाब मिल जाए। तो हम भैया अब आपसे पूछ रहे हैं अटका।
1: पूछ ले।
0: अटका कह रहे हो कि एक रूख झलरा, ऊ के तरह बिलरा, ऊ के तरह सुरकू, और ऊ के तरह हप्पू।
1: सर मोर तो नहीं है।
0: मोर अकेली?
1: मोर मोर
0: मोर तो नहीं भैया। चलो भैया बताओ लोकगीत कौन सा सुनवा दे आपको?
1: रामचरण यादव को सुनवा दे कौन होगी लोकगीत।
0: चलो भैया सुन लो अपनी फरमाइश पे, रामचरण यादव को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: तो भैया हरो रामचरण यादव और उनके संगी साथियों के गाए यही लोकगीत के संगे अब आज को फोन करे लोकगीत सुने तई पूरो हो रो है
1: किंतु
0: आज हम मनो की अपेक्षा करें थे सो आज किंतु आ गो।
1: हाँ तो भैया किंतु परंतु अपन ने अटका आज को जो लव बहुत ही मजेदार है तो और सच्ची कहें तो जब अपन एक हो सिलेक्ट कर रहे थे तो हंसी रुक नहीं रही थी
0: और अपन ही ने कह रही थी कि आज शायद कोई ना बता।
1: हाँ और वैसे ही भाव भैया तो जो 900 अटका हमें लिख के भेजो तो श्रीमती चंपा देवी साहू ने बरिया टिगड्डा पथरिया जिला दमोह से।
0: चलो तो अपन इनसे केवो चाहत है कि जे अगर ऐसे और भी पारंपरिक इनके पास अटका हुए तो भविष्य में भेजत रहे।
1: हाँ।
0: और अपन शामिल करत रहे।
1: मनो अटका को जवाब तो दे दू।
0: हाँ अटका को जवाब सब जनों ने भैया जवाब जो ने दो आदो अधूरो दो।
1: हाँ हाँ।
0: एक रूख झलरा माने जो होते सिर मूल।
1: हाँ हाँ।
0: जहाँ भैया पेड़ के समान अगर तो वो झालरे लटकी
1: बिल्कुल सही कह रहे
0: ओके तरह बिलरा माने आंखें।
1: हाँ।
0: और फिर ओ के तरह सुरकू माने नाक।
1: क्या बात है
0: सुरकत रहे तो पर।
1: हाँ।
0: और ओ के तरह हप्पू हप हप खावे बारो अपनो मुंह
1: बहुत ही मजेदार भैया।
0: तो एक रूख झलरा ओ के तरह बिलरा ओ के तरह सुरकू और ओ के तरह हप्पू।
1: हाँ।
0: तो भैया बड़ो मजेदार आज को जो अटका है तो और सब जनों ने देवे के प्रयास करे उत्तर को।
1: हाँ।
0: और उत्तर भले न दे पाए लेकिन प्रयास भी करत है तो अच्छो लगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही भैया।
0: और अब भैया हरो चलत चलत आप और बता दें कि आज के एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दो तो अरुण कुमार जायसवाल ने कार्यक्रम में श्रोताओं से बतकाव कर रहे थे हम सतीश साहू
1: और हम भैया जय शेखर।
0: कार्यक्रम की प्रस्तुति हती जय शेखर की और संयोजन दीपक निषाद को। तो भैया हरो अगले कार्यक्रमों में आप औरों से फिर भेंट हुई है यही उम्मीद के संग है। फिलहाल हम दो ही जनों खो देव अनुमति
1: राम राम।
2: अभी आप सुन रहे थे फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम ये आकाशवाणी सागर है। श्रोताओं फोन करें गीत सुने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग बस शुरू होने वाली है। आप हमें फोन लगा सकते हैं 240-845 नंबर है और 0-75-82 STD कोड। ये आकाशवाणी सागर है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT द्वारा प्रायोजित है ये कार्यक्रम उमंग।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को नमस्कार, मैं हूं विमलेश
0: और मैं हूं अजीत। नमस्कार और जय जोहर। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुविचार, जिसे हमें भेजा है पोटियां कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: बारिश सिर्फ पानी की बूंदें नहीं होती, ये प्रकृति का धरती के प्रति प्रेम है। जिस प्रकार प्रकृति सबसे प्रेम करती है, वैसा ही प्रेम हमें प्रकृति के प्रति भी रखना चाहिए।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है एन आर प्रसाद और अखिला प्रसाद जी का, राजाजी नगर बेंगलोर से लिखा है। लिखते हैं,
2: सपना वो नहीं है जो हम सोते हुए देखते हैं, सपना वो है जो हमें सोने नहीं देता।
0: आप आगे लिखते हैं, प्रिय अजीत जी और विमलेश जी, आज उमंग कार्यक्रम सुना, सिलिका पर आपका विषय उत्कृष्ट था। प्रस्तुति का तरीका वाकई सराहनीय है, चरण दर चरण समझाने का तरीका, सिलिका क्या है या सिलिकॉन से कैसे भिन्न है और इसका सामान्यतः उपयोग कहाँ होता है। साथ ही साथ हमारे

0: दैनिक जीवन में इसका व्यापक उपयोग वाकई अद्भुत है। विषय और प्रस्तुति दोनों ही शानदार थे।
1: सिलिकॉन घाटी में रहते हुए भी मुझे सिलिका और सिलिकॉन के सरल अंतर का पता नहीं था। इस उपयोगी जानकारी के लिए धन्यवाद।
0: आगे आप लिखते हैं, सबसे बढ़कर हमेशा की तरह आप दोनों की प्रभावशाली आवाज हर किसी के मन में तुरंत उतर जाती है। यही आपकी प्रस्तुति का असली प्रभाव है।
1: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनआर प्रसाद जी और अखिला जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल श्रीवास संतोष और श्रीवास शिव कुमारी रामदुलारी जी का।
1: जी इसके साथ साथ ही हमें संदेश मिला है बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू जी का। वो लिखते हैं,
0: उमंग कार्यक्रम बहुत ही शिक्षा प्रद, प्रेरणा प्रद और ज्ञान वर्धक होता है। हम तो नियमित श्रोता हैं। आपके द्वारा दी गई जानकारी लाजवाब होती है। हमारे यहाँ बच्चों का सुझाव है कि
1: भारत की नदियों, ऊंची चोटियों और नए नए आविष्कार और वैज्ञानिकों पर जानकारी सुनाएं तो बहुत इनायत होगी। आपकी पूरी उमंग कार्यक्रम टीम परिवार को उत्कृष्ट लगन और मेहनत के लिए हम सल्यूट करते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला है ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई गोंडाने, हीरामण शेंडे जी, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा गोंडाने जी का।
1: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी
0: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का।
1: धन्यवाद आप सबका भाग लेने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की।
0: तो श्रोताओ हमारा पहला प्रश्न था कि मातृवृक्ष किसे कहते हैं और क्यों।
1: श्रोताओ इसका जवाब जान लेते हैं। मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहते हैं जो जंगल में बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें धरती पर दूर दूर तक फैली होती हैं और वे अपनी जड़ों द्वारा अन्य छोटे पेड़ पौधों को पोषण पहुंचाते हैं।
0: जी और हमारा दूसरा प्रश्न था पेड़ों पर रात को कृत्रिम प्रकाश क्यों नहीं करना चाहिए।
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इससे पेड़ों की जैविक घड़ी प्रभावित होती है। पेड़ रात और दिन के चक्र के अनुसार काम करते हैं। तेज रोशनी में उन्हें प्राकृतिक रूप से रात होने का संकेत नहीं मिल पाता है। कुछ पेड़ पौधों में फूल आने, पत्तियां झड़ने और निकलने की प्रक्रिया दिन रात की अवधि पर निर्भर करती है। कृत्रिम प्रकाश इन प्रक्रियाओं को बाधित करता है। साथ ही साथ कृत्रिम प्रकाश से पेड़ों पर रहने वाले पक्षियों और परागण करने वाले कीड़ों की दिनचर्या भी प्रभावित होती है।
0: जी हमारा अगला प्रश्न था क्लोनल और नॉन क्लोनल वृक्षों का एक एक उदाहरण दीजिए।
1: जी इसका जवाब भी जान लेते हैं। बहुत से पेड़ हो सकते हैं ऐसे, लेकिन क्लोनल पेड़ का सबसे सरल उदाहरण है बरगद और नॉन क्लोनल पेड़ का उदाहरण है आम का पेड़।
0: जी अश्रोताओ हमारा अंतिम प्रश्न था, हमने आपसे पूछा था जब आप किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उस समय क्या क्या कर रहा होता है, कोई दो उदाहरण दीजिए।
1: जब हम किसी पेड़ को देखते हैं या उसके नीचे खड़े होते हैं तो वो ठीक उसी समय हमें ठंडक पहुंचा रहा होता है और हमारे लिए हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहा होता है।
0: जी तो श्रोताओ ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है कंगारू के कितने पैर होते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559 पर जो हमारा IBRS नंबर है और हमारे ईमेल यानी audio@cieet.nic.in पर आप हमारे संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं। इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी CIET NCERT को फॉलो करना ना भूलें।
1: और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
0: तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है सरितपुर की कहानी।
1: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में बाढ़ आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है और संदेश दिया गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना हमारी अहम जिम्मेदारी है।
2: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे
3: फसल बह गई।
4: साथियों नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। क्या कभी आपने सोचा है कि प्राकृतिक आपदा कहते किसे हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। प्राकृतिक आपदा कहते हैं उस स्थिति को जो प्रकृति की शक्तियों के कारण धीरे धीरे या फिर अचानक घटित होती है, जैसे बाढ़, भूकंप, सूखा, तूफान और सुनामी वगैरह। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाढ़ की। तो आइए सुनते हैं एक लघु लेकिन जानकारी से भरपूर कहानी, कहानी सरितपुर की। साथियों, बहुत समय पहले की ये बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और बड़ा ही प्यारा सा गांव था जिसका नाम था सरितपुर। ये गांव एक नदी के किनारे बसा हुआ था। नदी का नाम था सरिता। गांव के लोग नदी को अपनी माँ की तरह मानते थे। जब वो नदी के किनारे जाते तो उनका मन प्रसन्नता से भर जाता। वो गाने गुनगुनाने लगते थे। नदी उनके खेतों को पानी देती, बच्चे उसके पानी में खेलते, और तो और वो नदी मछलियों और जलचरों का घर भी तो थी। और इस गांव की चर्चा चारों तरफ थी। नदी भी बहुत खुश थी। समय बीतता गया, गांव की जनसंख्या बढ़ती गई, और उस गांव में खेत और फलों के बहुत से बगीचे तो थे ही, इसलिए लोग बाहर से भी उस गांव में काम की तलाश में आने लगे और धीरे धीरे वहां बसने लगे।
2: लो भाई, पहुंच गए सरितपुर। वाह वाह, कितना सुंदर दृश्य है चारों ओर। भाई, मेरा तो जी चाहता है कि यही बस जाऊं।
3: सचमुच हरे भरे पेड़, चारों ओर पहाड़ और दूर दूर तक फैले हुए खेत।
2: और वो सामने देखो बहती हुई नदी। कितना साफ पानी है।
4: इसी तरह धीरे धीरे गांव की आबादी बढ़ती चली गई। आबादी बढ़ी तो आवास की जरूरतें बढ़ी। लोगों ने नदी के किनारे अपने अपने घर बना लिए। और फिर वही हुआ जो आमतौर पर होता है। नदी के किनारे बहुत सारे हरे भरे पेड़ थे और अब घर बनाने के लिए वहां के पेड़ भी काटे जाने लगे।
2: अरे काट काट काट, मेरा भी क्या देख रहा, काट।
5: अरे मैंने आज 10 पेड़ काट डाले।
4: धीरे धीरे कल कारखाने लगने लगे। अब हुआ ये कि लोग अपना कचरा, कारखानों का कचरा और प्लास्टिक वगैरह भी नदी में ही डालने लगे। कारखानों की जल निकासी के लिए उन्होंने नाले बना लिए और नालों का गंदा पानी और कचरा भी नदी में बहकर आने लगा। किसी को ये ख्याल नहीं आया कि नदी कचरे से भरती चली जा रही है। पेड़ों की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है मृदा या मिट्टी के कटाव को रोकने की। लेकिन अब वहां की मिट्टी ढीली हो गई थी। सरिता यानी नदी अब अपने आप को घुटा हुआ महसूस कर रही थी।
6: सुनो मेरे बच्चों, मुझे गंदा ना करो। इन प्यारे प्यारे पेड़ों को मत काटो। सुन लो मेरी बात, यदि मैं नहीं रहूंगी तो एक दिन तुम भी नहीं रहोगे।
4: तो साथियों, ऐसा नहीं था कि सिर्फ उसी गांव में पेड़ काटे जा रहे थे। आसपास ही नहीं, दूर दूर के सभी स्थानों पर ऐसा ही हो रहा था। लोग पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करते, उनकी लकड़ियां लाभ कमाने के लिए शहरों में भेज देते।
2: अरे काट काट काट, तो और काट, दस से क्या बनेगा भाई, 420 चाहिए।
3: सही कह रहे हो, शहर भी तो भेजने हैं और पैसे कमाने हैं।
4: गर्मियों का मौसम था। लोग कहते, उफ, इस साल तो बहुत गर्मी पड़ रही है।
2: अरे ऐसी गर्मी तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
7: अरे मर गए इस बार गर्मी में, जान लेडीज गर्मी ने।
4: साथियों, पेड़ कटे तो गर्मी बढ़ी, गर्मी बढ़ी

0: तो पर्वतों के ग्लेशियर पिघलने लगे और फिर पहाड़ों से जल का भारी सैलाब नीचे की ओर आने लगा। और अब सुनते हैं नदी का हाल। नदी में जब कचरा नहीं था तो वो अपने तटों के बीच ही बहती थी, लेकिन अब चूंकि कचरे के भर जाने से नदी छिछली हो गई थी तो वो अपने तटों से बाहर बहने लगी। इसी बीच पहाड़ों पर भारी बारिश होने लगी पेड़ कट गए थे, इसलिए मिट्टी भी बहकर आई, नदी का जलस्तर बढ़ गया और फिर पानी गांवों में घुसने लगा। पानी ने खेतों को ढक लिया, बहुत से घर बह गए और चारों तरफ त्राही त्राही मच गई।
1: अरे अरे पशु पक्षी हमारे घर के सारे सामान बह जाएगा,
2: लगता है नदी क्रोधित हो गई है।
1: क्या
3: हमारे खेतों में पानी भर गया, सारे फसल
2: बह गई।
1: गाय भैंसों को ऊपर ले जाना होगा, सारा सामान
2: जल्दी से
1: ऊपर ले जाना होगा।
2: चलो जल्दी ऊपर,
1: अरे हमें भी तो ऊपर चलना होगा उनके साथ। चलो जल्दी चलो
2: चलो चलो,
1: पानी है चारों तरफ, ध्यान से जाना, सांप आप ना आ जाए।
2: ध्यान से संभल कर।
0: वैसे बाढ़ एक प्राकृतिक घटना है जिसके कई भौगोलिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे भूमि के तल का नीचा होना, कई कई दिनों तक लगातार मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। लेकिन इसके मानव जनित कारण भी होते हैं, जी हाँ, जो प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ते हैं, जैसे प्रकृति के संसाधनों का अंधाधुंध दोहन, जलवायु परिवर्तन के कारण पृथ्वी के तापमान का बढ़ना, हिमनदों या ग्लेशियरों का ज्यादा पिघलना और इसकी वजह से समुद्रों का जलस्तर बढ़ना। वैसे बाढ़ आने के पीछे हम मनुष्यों की भूमिका भी कोई कम नहीं है। तो ध्यान दीजिए, पेड़ों को काटकर, नदियों में कचरा डालकर प्रकृति का संतुलन न बिगाड़ें। अंत में सुनते हैं सरितपुर गांव की नदी की कहानी इस कविता में। और हाँ साथियों, ये कहानी सिर्फ सरितपुर की नहीं है, लगभग दुनिया की अधिकांश नदियों की यही कहानी है।
4: नदी थी प्यारी, सबकी थी वो नदी दुलारी, बच्चों संग वो खेलती थी, कल कल गीत सुनाती थी। लोगों ने नदी को सताया, उसमें उन्होंने कचरा गिराया, उन्होंने काटा पेड़ों को, साथ नदी का नहीं निभाया। फिर तो नदी में उफान है आया, सबका मन बहुत घबराया, लोगों की आशाएं टूटी, बाढ़ बनकर नदी भी रूठी, मचा चहुं ओर हाहाकार, अब तो मानव करो विचार, अब तो मानव करो विचार।
5: अभी आप सुन रहे थे कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार मुनीश शर्मा, कीमती आनंद, पूनम श्रीवास्तव और शशांक शर्मा, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण चेतना शर्मा। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम सरितपुर की कहानी। श्रोताओं, आपको अवश्य ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम, शीर्षक है एक गांव की कहानी।

ये बात बहुत पुरानी है। आज से लगभग 200 वर्ष पहले गढ़वाल की पहाड़ियों में एक गांव बसा था। गांव का नाम था रैणी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, घने जंगल, झरझर बहते झरने और नदी नाले थे।

घाटियों में बहती हुई हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैला देती थी। बहुत ही सुंदर था यह गांव। इस गांव के लोगों का काम था खेतीबाड़ी करना और पशु पालना। उनकी सारी जरूरतें जंगल से ही पूरी होती थी। दिन भर जंगलों और खेतों में काम करने के बाद लोग जब शाम को अपने घर वापस आते तो उनके नृत्य और लोकगीतों की मधुर आवाज सारे पहाड़ों में गूंजने लगती। जंगल ही इनका सब कुछ था। उन्हें जंगल से वैसा ही लगाव था जैसा अपने परिवारजनों से था। जंगल के पेड़ उनके जीवन का अंग थे। उन्हें लगता कि पेड़ अक्सर कहते हैं, मैं पेड़ हूं, मैं पेड़ हूं, सदियों से मैं खड़ा जीवन देने के लिए। मैं ही बसंत और वर्षा लाता, हवा का अमृत मैं ही पिलाता, खुशहाली को मैं ही लाता। मैं ही जीवन हूं धरती का, मुझे नष्ट मत करो। मैं नष्ट हो जाऊंगा तो झरने सूख जाएंगे, धूल उड़ेगी और फिर बनेंगे रेगिस्तान।

0: रैणी गांव के लोगों का जीवन बड़े ही संतोष से बीत रहा था। इसी गांव में गौरा देवी नाम की एक युवती रहती थी। वो बड़ी बहादुर और मेहनती थी। गांव के और लोगों की तरह वो भी दिन भर जंगल में ही रहती। जलाने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फल फूल कंदमूल और शहद इकट्ठा करती।
1: गौरा, अरे ओ गौरा, अरे कहां निकल गई है तू? अकेली जंगल में दूर मत जा।
2: अरे चाची, मैं यहीं तो हूँ। अरे चाची,
1: हाँ,
2: यहाँ आकर तो देखो।
1: हाँ हाँ,
2: कितने सारे छत्ते लगे हैं मधुमक्खियों के।
1: हाँ,
2: सबको यहीं पे बुला लो चाची।
1: हाँ हाँ,
2: सात आठ छत्ते तो होंगे ही।
1: अरे ओ रेवती, अरे सुनो तो, श्यामा।
3: हाँ चाची।
1: किंदौरी।
3: हाँ चाची।
1: और हाय हाय, ये नाम तो मैं हमेशा ही भूल जाती हूँ। हाँ प्रसन्नी, अरे सब इधर आओ, जरा सुनो तो, ये गौरा क्या कह रही है?
3: आ रही हूँ चाची।
1: हाँ चाची।
4: क्या है चाची?
1: अरे क्या हुआ?
4: कोई घबराने वाली बात नहीं है रे।
1: हाँ?
4: वो गौरा कह रही है कि सामने वाले पेड़ों पर मधुमक्खियों के छत्ते लगे हैं।
5: छत्ते? क्या मतलब?
4: हाँ हाँ छत्ते, वो भी दो तीन नहीं, बड़े बड़े सात आठ छत्ते लगे हैं। हाँ
5: सात आठ छत्ते, कमाल है।
3: अरे फिर तो मजा आ गया।
5: यानी अगर सारा शहद निकाल ले तो दो गगरी भर तो हो ही जाएगा।
6: अरे हम कितने दिनों से खोज रहे थे शहद, अब तक कहीं नहीं मिला, और आज मिला है तो
3: छप्पर फाड़ गए।
5: तो आओ पहले शहद ही निकाल लेते हैं।
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं, शहद निकालने के बाद दातुन भी तोड़ लेंगे।
3: अरे आज गुलर भी तो तोड़ने हैं।
5: हाँ ठीक है, चल चलते हैं।

0: तो ऐसा था वहां का दैनिक जीवन। जंगल में चीड़, देवदार, बांस, भैमल, असीन, तून, तिमल और धौड़ के पेड़ थे। पुरुष खेतों में काम करते और स्त्रियां जंगलों में। एक दिन की बात है, हमेशा की तरह गौरा अपनी सहेलियों के साथ जंगल में गई। गौरा और उसकी सहेलियां गूलर के फलों को इकट्ठा करने के लिए जंगल में काफी दूर निकल गईं। घूमते घूमते वो अलकनंदा नदी के किनारे पहुंची।
1: अरे गौरा, ये आवाज कैसी आ रही है?
2: आवाज? आवाज तो आ रही है। अरे लगता है कोई पेड़ काट रहा है। मुझे तो कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं। वो देख गौरा। अरे हाँ, वो साल के बड़े पेड़ के पास।
1: हाँ वही,
2: न जाने कौन लोग हैं।
1: पता नहीं कौन लोग हैं, पता नहीं।
2: अरे धीरे धीरे बोलो, कहीं वो हमारी आवाजें ना सुन ले। चलो और नजदीक चल के देखते हैं।
1: चलो की पैंट, सिर पर टोपी और हाथों में बंदूक भी है।
3: हाय राम,
1: ये गांव के लोग तो नहीं लगते।
2: अरे मुझे तो ये शहर के लोग लगते हैं, जो पेड़ काटने आए हैं।
1: अरे अरे देखो तो, उन्होंने बहुत सारे पेड़ों को काटकर अलग से इकट्ठा भी कर रखा है।
2: वहां में देखो, हाँ इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग यहाँ चोरी से आकर अक्सर पेड़ काटते हैं। ऐसा है कि हम इन्हें जरूर रोकेंगे।
1: मगर कैसे? भला इतने सारे हथियारबंद लोगों को कैसे रोका जा सकता है? और वो हमें जान से भी तो मार सकते हैं।
2: अरे भले ही हमें जान की बाजी लगानी पड़े, इन्हें हर कीमत पर रोकना ही है। मगर इस समय इनके सामने जाना खतरे से खाली नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, गांव चलकर और लोगों को भी बुला लाते हैं।
1: ये ठीक रहेगा।
2: सुनो सुनो, मगर जिस रास्ते से हम आए हैं वो तो बहुत लंबा पड़ेगा। सामने वाले पहाड़ को पार करके चलते हैं, वो रास्ता छोटा लगेगा।
0: तो बस फिर क्या था, गौरा देवी अपनी सभी सहेलियों के साथ फौरन अपने गांव की ओर चल पड़ी। कटीली झाड़ियों में उनके कपड़े फट गए, खरोंचे लगी, प्यास के मारे उनका बुरा हाल हो गया, पथरीली जमीन से पांव लहूलुहान हो गए। मगर बिना रुके वो दौड़ती रही, दौड़ती रही। उनके सामने एक ही लक्ष्य था, अपने पेड़ों को बचाना। थकी हारी जब वो गांव में पहुंची तो दोपहर हो चुकी थी। पुरुष काम करने खेतों में गए हुए थे, इसलिए एक भी पुरुष उस समय गांव में नहीं मिला।
1: हाय राम, यहाँ तो कोई भी नहीं है, अब क्या करें गौरा?
2: अरे गांव में मर्द नहीं है तो क्या हुआ, औरतें और बच्चे तो है ना, हमें उन्हीं को लेकर चलना होगा।
1: हाँ, ठीक है, ठीक है। मगर ये औरतें और बच्चे।
2: अरे यार मगर मत कर, क्या पेड़ हमारे भाई नहीं है? हम सब बहनें मिलकर अपने पेड़ भाइयों को बचाएंगी।
1: बचाएंगी,
2: नहीं तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। अरे कोई है? अरे बाहर निकलो, चाची।
4: हाँ क्या बात है?
2: बुआ जल्दी बाहर आओ, शहर के लोग हमारा जंगल काट रहे हैं।
1: क्या जंगल?
2: जल्दी आओ, हमारे जंगल काटने नहीं देंगे।
0: और फिर गौरा देवी चल पड़ी जंगल को बचाने। उसके साथ 21 स्त्रियां और 7 बच्चे थे। सभी के सभी निहत्थे थे। उन्हें एक तरकीब सूझी। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि जगह जगह पत्थरों के ढेर लगाकर उन्होंने रास्तों को लगभग बंद कर दिया, ताकि शहर के लोग यदि उन कटे पेड़ों को ले जाना भी चाहें तो ये संभव ना हो सके। अब सारी स्त्रियां आगे बढ़ी और पहुंची उस जगह पर जहां पेड़ काटे जा रहे थे।
1: हाँ,
2: सुनो, सुनो, सुनो,
1: सुनो,
2: ब्रेक
3: रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। जिन वृक्षों के कारण हम सांस लेते हैं, अन्न लेते हैं, दवा लेते हैं, आज जब उन्हें काटा जा रहा है, तो आओ अपने प्राणों की आहुति देकर इनकी रक्षा।

0: इधर जंगल में ये हो रहा था और उधर आसपास के गांवों में ये खबर आग की तरह फैल गई। गांवों से लोग हथियार लेकर वहां आने लगे। जब पेड़ काटने वालों ने देखा कि अब उनकी दाल नहीं गल सकती तो फिर क्या था, उन्होंने वहां से भागने में ही अपनी भलाई समझी और सर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए।
1: चिब्बू भाग ले यहां से,
2: भाग ले, बाद में काटने।
0: सभी ने गौरा देवी और स्त्रियों के साहस की भूरी भूरी प्रशंसा की।
3: वाह भैया, गौरा ने तो बहुत कमाल का काम कर दिया।
4: ऐसी चिपकी पेड़ से किसने छोड़ा ही पेड़ को? अरे क्या बात है भाई, गौरा कमाल कर जीतती रहे, मिट्टी जीतती रहे।
0: दोस्तों, इसी रैणी गांव से शुरुआत हुई चिपको आंदोलन की, जो आज सारे संसार में प्रसिद्ध हो गया है।
5: एक गांव की कहानी अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम आपसे आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को
5: कुसुमलता,
6: जगबंधु,
5: चेतना
6: और मंजू जी के साथ आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।
7: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
8: अभी श्रोताओं ने सुना NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये आकाशवाणी सागर है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

एक हमारे दोस्त थे, लंदन में रहे, ऐसे बहुत पैसे आ गए उनके पास, जैसे फेंक गए ना अभी, तो वो पंजाब जब वापस गए 15-20 साल के बाद, वहाँ उन्होंने बंगला बनाया और उसकी जो हाउस वार्मिंग सेरेमनी थी उन्होंने बुलाया सब दोस्तों को, बोले देखिए हमारा ड्राइंग रूम है, ये बच्चों का रूम है, ये किचन है, ये वो है, सब करके बड़ा अच्छा बंगला था। फिर पीछे लॉन में ले गए तो वहाँ 3 स्विमिंग पूल बना रखे हैं, तो एक में गर्म पानी, तो वो समझ आ गई बात सर्दियों में नहाने के लिए, एक में ठंडा पानी तो वो गर्मी में नहाने के लिए, तो एक खाली पड़ा हुआ है। तो उनको पूछा भी ये खाली क्यों पड़ा है स्विमिंग पूल, बोले बात यह कि कभी कभी नहाने को दिल नहीं करता है। कई वैसे पंजाबी में कई ऐसे जोक हैं जो जिनका कुछ मतलब नहीं है लेकिन हंसी आती है, जैसे मैं जगजीत सिंह हूँ, ये सुरेंद्र सिंह है, अभी हंसने वाली बात नहीं है। सुरेंद्र सिंह जी अपने घोड़े पे आ रहे हैं और जगजीत सिंह जी पूछते हैं उनको, सुरेंद्र सिंह जी थोड़ा घोड़ा कितने है, तो सुरेंद्र सिंह कहता भी घोड़े पे तो मैं बैठा हूँ, तुमको दिखता नहीं, कहता फिर भी पूछने से की हट जाएगा।

0: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ों में अभी आपने सुनी ये गज़ल, राणा अकबर बदी का ये रचना थी।
1: फिर मेरे दिल पे किसी दर्द ने करवट ली है।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दिन के 12 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। पश्चिम बंगाल में दो नए अपराध रोधी कानून आज से लागू हो गए हैं। इस वर्ष जून में राज्य विधानसभा ने पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित किए थे। राज्यपाल R.N. रवि की स्वीकृति के बाद ये विधेयक अब कानून बन गए हैं। नया कानून असामाजिक गतिविधियों, दंगों, पुलिसकर्मियों पर हमलों और संगठित अपराध के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई को सक्षम बनाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ये एक्सप्रेसवे स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे है। इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा समय घटकर 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। बिहार में आज से हेलीकॉप्टर और हवाई पर्यटन सेवाएं शुरू की जा रही हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना से इस योजना का उद्घाटन करेंगे। इस योजना के पहले चरण में पश्चिम चंपारण जिले का वाल्मीकि नगर, कैमूर जिले का मां मुंडेश्वरी और नालंदा जिले का राजगीर शामिल हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरणों में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माई भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। कोलंबिया के बुकारामंगा में 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिकी ओलंपियाड में 5 भारतीय विद्यार्थियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं। इन युवा भौतिकविदों ने असाधारण प्रदर्शन करते हुए देश को गौरवान्वित किया है। भारत ने इस प्रतियोगिता में संयुक्त रूप से पहला स्थान प्राप्त किया है। सरकार

सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। ये इंटर्नशिप कथित तौर पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय तथा कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बताई गई थी। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से 17 जुलाई तक स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। शोक दिवस के दौरान देश भर में उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका रहेगा जहां नियमित रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है। आज कोई भी आधिकारिक मनोरंजन कार्यक्रम नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। वियतनाम के फुकुओक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। ये दावे अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आया है जिसमें ईरान की हवाई रक्षा प्रणाली, मिसाइल और ड्रोन प्रक्षेपण स्थलों, तटीय रडार ढांचे और सामरिक नौसैनिक संसाधनों को निशाना बनाया गया था। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 145 अंक घटकर 77,425 और निफ्टी 55 अंक लुढ़ककर 24,153 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। आइए सबसे पहले आपको सुनवाते हैं सीमा फिल्म का गीत। मन्नाडी की आवाज में शैलेंद्र की रचना, शंकर जयकिशन का संगीत।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। ब्रेक पर जाने से पहले जो गीत आपने सुना वो था फिल्म अखियों के झरोखों से, हेमलता की आवाज और गीत संगीत था रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं दोस्ती फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी की आवाज में, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना राम तेरी गंगा मैली इस फिल्म का गीत, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मोहम्मद अजीज की आवाज में अमृत फिल्म का गीत, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया ये गीत फिल्म रजिया सुल्तान से। जानिसार अख्तर ने इसके बोल लिखे हैं, खयाम का संगीत।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
2: जी।
1: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं प्रेम पर्वत, इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। बोल हैं जानिसार अख्तर के, धुन बनाई है जयदेव ने।

आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। गीत गाता चल इस फिल्म से आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की आवाजें हैं, गीत संगीत रविंद्र जैन का।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरीला सफर। आज आपके साथ मैं हूँ नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, हम जानते हैं आपको इंतजार होता है इस कार्यक्रम का, ताकि आप भी हमसे जुड़ सकें, शामिल हो सकें इस कार्यक्रम में और अपनी टिप्पणियों के जरिए अपने दिल की बातें साझा कर सकें। तो आइए आज की इबारत की ओर आपको लेके चलते हैं। जैसा कि हमारे इस कार्यक्रम का फॉर्मेट है कि हम एक इबारत पढ़ते हैं और उस इबारत को लेकर उस इबारत में से आपको कुछ शब्द चुनने होते हैं। तो चलिए, जो साथी फेसबुक पर जुड़ चुके हैं वो तो ठीक ही है, वहाँ पर कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन यदि कोई साथी नहीं जुड़ पाए हैं तो आपके लिए एक बार हम ये आज की इबारत पढ़ देते हैं और आपको इस इबारत में से शब्दों को चुनना है और बताना है कि आज कौन से गीत और किन शब्दों के गीत हो सकते हैं। आज की इबारत है, जीवन की ज्योति तब तक उजली रहती है जब तक संवेदनाओं की पुकार सुनाई दे। चंदन की तरह शीतल रहकर किसी के साथ की कीमत को समझना ही सागर जैसी गहरी सोच की निशानी है। झूठ क्षण भर का सहारा दे सकता है, लेकिन मन को सच्ची शांति नहीं देता। दिल हमेशा ही गैरों में अपनापन ढूंढता है। कुछ तस्वीरें सिर्फ यादों में जीवित रह जाती हैं, और फिर रूह की वो जलन, काया की हर तपन इंसान को पहले से और

अधिक मजबूत बना जाती है। तो इस इबारत को आपने सुन ही लिया है, आपको बताना है कि आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। चलिए पहले गीत की ओर हम बढ़ेंगे, उससे पहले हम आपको एक हमारे साथी ने लिखी हुई बात बताते हैं। एक साथी ने लिखा है, पूरी इबारत को एक भाव में देखा जाए तो इसका संदेश है कि जीवन में सच्चाई, संवेदनशीलता, रिश्तों की अहमियत और संघर्षों से मिली मजबूती ही इंसान को परिपक्व बनाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही लिखा है कि यही चीज़ें हैं जो इंसान को और निखरने में और परिपक्व बनने में और मजबूत बनने में सहायक होती हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले गीत की ओर। भाभी की चूड़ियाँ इस फिल्म का ये गीत है, लता मंगेशकर की आवाज़, नरेंद्र शर्मा ने इसे लिखा है, सुधीर फड़के का संगीत।

जी हाँ, तो आप में से कई साथियों ने बिल्कुल ये गीत सही पहचाना था और ये शब्द था ज्योति। एक साथी ने लिखा है कि सच कहूँ तो सुरीला सफ़र इस कार्यक्रम की वजह से हमारी बातचीत भी एक प्यारे सफ़र जैसी बन गई है। हर दिन कोई नया शब्द, कोई पुराना गीत, कोई मीठी याद और कुछ दिल से निकली बातें, यही इसकी सबसे सुंदर बात है। हम सब श्रोता मिलकर इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, एक परिवार की तरह से बैठकर अपनी बातें कहते हैं, उससे ही तो इसकी खूबसूरती है। और साथ में जो गीत बजते हैं वो सबसे प्यारा साथ होता है होस्ट का। जी हाँ, जब हम और आप इस

तरह साथ होते हैं, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है आपकी टिप्पणियां पढ़कर, और लगता है कि हाँ हमारी बात सुनने वाला भी उतने ही रुचि के साथ हमसे बात कर रहा है। एक साथी ने लिखा है, हमारी इबारत पे से इन्होंने लिखा है, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती हैं। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी नहीं टूटता। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देते हैं और संबंधों को गरिमा देते हैं। बड़ी अच्छी बात आपने लिखी है, जब संवेदनाओं की बात हो रही है तो आप भी अपने जीवन से जुड़ी किसी ऐसी याद को साझा कर सकते हैं जब आपने अपनी संवेदनाओं को पूरे हृदय से महसूस किया हो। और तब तक आइए आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत फिल्म खामोशी से। हेमंत कुमार के ने इस गीत को गाया है, गुलजार के बोल हैं और हेमंत कुमार का संगीत।

हाँ तो भाई, किसी ने लिखा था कि पूरा गाना आखिरी तक बजाना विसिल के साथ, विसिल के तक। तो लीजिए, आपने जैसा कहा था पूरा विसिल तक आपको गाना सुनवाया है। एक साथी ने लिखा है, जीवन में कुछ तस्वीरें समय के साथ कभी धुंधली नहीं पड़ती, वे यादें यादों की दीवार पर हमेशा टंगी रहती हैं। कुछ बिगड़ने, कुछ अधूरे सपने और कुछ अनकहे एहसास मन को तपाते हैं, लेकिन यही तपन इंसान को अंदर से मजबूत भी बनाती है। जैसे सोना अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमारे व्यक्तित्व को और अधिक निखार देती हैं। एक साथी ने लिखा है, ये इबारत केवल जीवन का चिंतन नहीं बल्कि मनुष्य के अंतर्मन की उस मौन यात्रा का सजीव चित्रण है, जहां संवेदनाएं ही जीवन का वास्तविक आलोक बनकर मार्ग प्रशस्त करती हैं। संबंधों का सौंदर्य अधिकार में नहीं बल्कि आत्मीयता, विश्वास और निस्वार्थ समर्पण में निहित होता है। जीवन में बिछड़ना, टूटना, छल और विरह जितने भी कठोर अनुभव हों, यदि वे मनुष्य की संवेदनशीलता को जीवित रखें तो वही उसके व्यक्तित्व को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। स्मृतियां समय के साथ धूमिल नहीं होती, वे आत्मा की धरोहर बनकर हमें भीतर से परिपक्व करती रहती हैं। अंततः जीवन की सबसे बड़ी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि अपने भीतर की करुणा, सत्य और प्रेम को अक्षुण्ण बनाए रखने में है। जी हाँ, और जो पिछला गीत था उसका शब्द था पुकार, और आप में से कई श्रोताओं ने इसे सही भी पहचाना। लीजिए, अब आपको अगला गीत सुनवाते हैं, सरस्वती चंद्र फिल्म से मुकेश की आवाज में इंदिवर के बोल, कल्याण जी आनंद जी की धुन।

चंदन शब्द था इस गीत से और हमारे एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं सदैव स्वभाव पर हावी होती हैं, कितने भी मन को कड़ा करें, बच्चे जब दूर कार्य क्षेत्र पर जाते हैं सब्र का बांध टूट ही जाता है। जी हाँ, इस बात को हर वो व्यक्ति बहुत अच्छे से समझ सकता है जो किसी काम के चलते या फिर किसी मजबूरी के चलते अपने परिवार से दूर जा रहा है, और जब व्यक्ति दूर जा रहा होता है तो जाने वाले को लगता है उसका गम बड़ा है, और जो घर पे अकेला रह जाता है उसे लगता है उसका दुख बड़ा है। लेकिन सच मानिए, दोनों अपनी अपनी स्थिति में अपनी अपनी जगह पर बड़ा दुख झेल रहे होते हैं जब वो एक दूसरे से बिछड़ रहे होते हैं। एक साथी ने लिखा है, आज कुछ खास किस्म के गाने बज रहे हैं, अच्छा लग रहा है, संबंधों की पड़ताल करते ये गीत अमर हैं, इन्हें सुनते बड़ा सुकून मिलता है। आपको ये कार्यक्रम पसंद आ रहा है, गीत अच्छे लग रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं आगे और आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म मेरा साया से, लता मंगेशकर की आवाज, राजा मेहदी अली खान के बोल, मदन मोहन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, सचमुच ही मनुष्य का वक्त गुजर जाता है, कुछ यादें रह जाती हैं, कुछ लम्हे याद रह जाते हैं, कुछ सुकून रह जाते हैं, कुछ संवेदनशीलता होती है जो कि उम्र भर जीने की राह सिखाती है। कभी कभी उन यादों के सहारे भी रोना पड़ता है जो बीत गए हैं। उन पुरानी यादों की गलियारों से रूबरू कराती है विविध भारती परिवार। सुरीला सफर सचमुच विविध भारती का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां विविध भारती परिवार सुख दुख की बातें और जीने की राह सिखाती है। विविध भारती को कोटि-कोटि धन्यवाद, ऐसा इन्होंने लिखा है। एक साथी लिखते हैं, दूसरों के दुख को समझना, महसूस करना, किसी के प्रति सहानुभूति रखना और करुणा रखना, यही संवेदनशीलता व्यक्ति की पहचान है। संवेदना समाज में प्रेम, विश्वास और भाईचारे को बढ़ाती है। यही एक स्वस्थ समाज की नींव है। जीवन में कभी कभी अपने भी गैर लगते हैं, लेकिन कभी ऐसा वक्त भी आता है जब गैर भी अपने लगने लगते हैं। यही सच्चाई है। ये भी एक साथी ने लिखा है और जरूर आपको ऐसा कोई अनुभव आया होगा जिससे आप ये बात कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही है कि जब भी हम किसी अनजान शहर, अनजान जगह पर होते हैं तो कभी कभी कोई इस तरह मदद कर जाता है, इस तरह साथ दे जाता है कि हमें लगता है जैसे ये हमारे लिए भाई समान है, बहन समान है जिसने हमारी इतनी मदद कर दी। तभी तो हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति हमें ईश्वर रूप में मिल गया। ये हम तभी तो कहते हैं जब कोई अनजान व्यक्ति यूं ही हमारी मदद कर जाता है, वो भी बिना किसी अपने मुनाफा के, बिना किसी लालच के। तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे और अभी जो गीत आपने सुना उसका शब्द था साथ। यही साथ तो है जो हमें लोगों से मिलता है जिसके जरिए ये समाज जिंदा रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले गीत की ओर और आपको सुनवाते हैं ये गीत अनोखी रात फिल्म से मुकेश की आवाज में, इंदिवर के बोल, रोशन का संगीत।

तो साथियों, मुझे लगता है ये गीत भी आप ही की लिस्ट में से होगा। बहुत सारे लोगों ने इस गीत को भी सही पहचान लिया था। हमारे एक साथी ने लिखा है कि सुरीला सफ़र कार्यक्रम वास्तव में सुरीला महसूस हो रहा है। आज की इबारत में शामिल शब्दों पर आधारित गाने लाजवाब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ये लिखते हैं, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम को पसंद करने के लिए। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल बौद्धिक ज्ञान का प्रकाश पर्याप्त नहीं है। सार्थकता तब है जब हम दूसरों के सुख दुख को अपनी अनुभूति से समझें, और ये संवेदना हृदय का स्पंदन है जो हमें मानवता से जोड़ती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण है कि बाहरी प्रकाश यानी कि ज्ञान भी आंतरिक संवेदना रूपी दीपक से ही प्रकाशित होता है। वहीं चंदन की तरह शीतल रहकर संबंधों के मूल को समझना सहज बोध, भावनात्मक परिपक्वता और गांभीर्य का प्रतीक है, क्योंकि चंदन की प्रवृत्ति बिना भेदभाव के सुगंध देने की है। सागर अपनी विशालता और गहराई में सब कुछ समाहित कर लेता है, जो सागर की विशेषता है, जिसे हम प्रज्ञा यानी गहरी बुद्धि या स्थिरता के रूप में जाना करते हैं, जो बिना विचलित हुए रिश्तों की गहराई और उसके महत्व को आंकती है। काफी बड़ी बात इन्होंने लिखी है। बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, और चलिए अब आपको सुनवाते हैं तीसरी कसम फिल्म का ये गीत, मुकेश की आवाज में शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन की धुन। आपको बताना है इस गीत का कौन सा वो शब्द है जिससे इस गीत को लिया गया है।

जी हाँ, तो इस गीत से जो शब्द था वो था झूठ, और आप सभी ने सही पहचाना है। एक टिप्पणी अभी मुझे दिखी, एक श्रोता ने लिखा है कि मजाल है कोई भी गीत श्रोताओं की लिस्ट में से बच जाए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं आपने कोई दूसरा चैनल ट्यून तो नहीं कर लिया है। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आप विविध भारती ही सुन रहे हैं या कोई दूसरा चैनल आपने गलती से लगा लिया हो, क्योंकि अक्सर जो गीत हमें यहाँ पर, यानी जो कमेंट्स हमें नज़र आ रहे हैं, उनमें से कई लोगों ने सही गीत पहचाना है और वो गीत बज भी रहे हैं। तो एक बार आप देख लीजिए। एक साथी लिखते हैं, इस गीत के लिए दिल से शुक्रिया, पर हमारे घर में आज गेस्ट आए हैं, हम लिख नहीं पा रहे हैं, पर जैसे ही ये गीत बजा खुद को रोक नहीं पाए और चाय भी गिर गई। देखिए, ऐसा मत कीजिए वरना आपकी चाय गिरने का सारा दोष विविध भारती पर आ जाएगा। आपने तो लिख ही दिया है सारे आम। एक साथी ने लिखा है, जीवन में केवल, अच्छा ये कमेंट तो हमने पढ़ दिया था, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा कमेंट है, आत्मा का संगीत तब तक गूंजता रहता है जब तक हृदय में दूसरों के प्रति करुणा जीवित हो। हिमालय जैसी अटूट स्थिरता और नदी जैसी निश्चल आत्मीयता से किसी के मौन को पढ़ना ही परिपक्व व्यक्तित्व की पहचान है। दिखावे और छल से कुछ पल की वाहवाही तो मिल सकती है, मगर अंतरात्मा को कभी संतोष नहीं मिलता। इंसान अक्सर अजनबियों की भीड़ में उस एक आत्मीय स्पर्श की तलाश करता है। कुछ लम्हे वक्त के पन्नों पर धुंधले पड़ जाते हैं, लेकिन उन यादों की तपिश और संघर्षों की हर एक चोट मनुष्य को भीतर से और अधिक निखार कर फौलाद बना देती है। जी हाँ, ऐसा लग रहा है, इस टिप्पणी को पढ़कर सच मानिए ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी ही इबारत को दूसरे तरीके से लिखा गया हो, इतना मेल खाती ये टिप्पणी है। और चलिए अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। अनुरोध फिल्म का गीत है, मन्ना डे और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

देखिए कितनी अच्छी बात कहता है ये गीत। इसका अर्थ कितना अच्छा है कि यदि आप बेसहारा हैं और किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आप दूसरे का सहारा बन सकते हैं। जो तकलीफें आपने सही हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए आप दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक साथी ने इसी तारतम्य में लिखा है कि महामारी के समय में मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा था। उस वक्त मेरे अपने सगे मेरे साथ नहीं आए, लेकिन एक पड़ोसी मेरे साथ आया और मुझे हॉस्पिटल में दाखिल कराया। इसलिए कहता हूँ, कभी अपने ही गैर होते हैं और गैर अपनी जान जोखिम में डालकर मददगार साबित होते हैं। ऐसे शख्स उम्र भर अपने रहते हैं। बिल्कुल, आपने जो अनुभव किया, ईश्वर करे ऐसी नौबत किसी पर ना आए, लेकिन यदि ऐसी स्थिति में आपका उस व्यक्ति ने साथ दिया है तो सच में लगता है मानो भगवान हमारे सामने आ गए हो, साक्षात भगवान ने ही अपने देवदूत को भेजा हो हमारे लिए। और अभी जो गीत आपने सुना था उसका शब्द था सहारा। आइए आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं ये गीत चित्रलेखा फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, साहिर लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

एक साथी लिखते हैं, संवेदनाएं शब्दों में नहीं हृदय की निस्वार्थ धड़कनों से जन्म लेती है। जहां संवेदनाएं जीवित रहती हैं, वहां प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, विश्वास कभी टूटता नहीं। जहां मानवीय एहसास जीवित रहता है, वहां रिश्ते आत्मीय बनते हैं। जहां शब्द कम पड़ जाते हैं, वहां हृदय स्वयं बोलने लगता है। यही एहसास जीवन को अर्थ देता है, संबंधों को गरिमा देता है। एक साथी ने लिखा है, जीवन का गणित कोई समीकरण नहीं है कि जब चाहा सुलझा लिया। संवेदना का तत्व जीवन की को ज्योति देता है। जीवन तब तक अधूरा है जब तक इसमें अशांति बनी रहती है, और शांति के लिए ही इंसान तमाम प्रयास आजीवन करता रहता है। जीवन एक प्रयोगशाला है, यहाँ चंदन सी शीतलता है और अग्नि सी दाह भी। जीवन का पूरा सच केवल एक है, इसका पूरा संसार बहुत रहस्यमय है। परिस्थिति कोई भी हो, हमें बस जीते जाना है। और लीजिए, इसी के साथ सुनवाते हैं मौसम फिल्म का गीत, भूपेंद्र की आवाज में, गुलजार के बोल, मदन मोहन का संगीत। और इससे पहले जो गीत आपने सुना, उसका शब्द था मन। और पहचानिए कि इस अगले गीत का शब्द कौन सा है।

0: फुर्सत के।
1: किसी ने लिखा दिल शब्द है, किसी ने लिखा ढूंढता शब्द है। वाकई इस गीत में दोनों ही शब्द शामिल है, लेकिन हाँ, जिस शब्द को लेकर हमने इस गीत को चुना था वो शब्द है ढूंढता। तो आपने बिल्कुल सही कहा, कई साथियों ने लिखा है कि ये गाना बहुत ही शांति भरा और सुकून भरा लगता है, अच्छा लगता है, पसंद करने के लिए धन्यवाद। और अब आइए आपको सुनवाते हैं ये सुदास की आवाज़ में सावन को आने दो फिल्म का गीत। फोक जामी ने इस गीत को लिखा है, राज कमल का संगीत।

0: लगा।
1: तस्वीर शब्द आप सभी ने सही पहचाना है। एक साथी ने लिखा है कि हमें दुनिया से अलग गाओ, यही विविध भारती का प्लेटफॉर्म जहां हम श्रोता रोज मिलते हैं। कितना प्यारा गांव है ये। जी हाँ, ये गांव ही तो है।

हाँ, हम सब मिलते हैं, बातें करते हैं, अपनी दिल की बातें एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। ये वो मंच है जहाँ हम दिल खोल कर बोल सकते हैं, और यदि कोई बात, यदि कोई नाराज

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, लीजिए सुनिए फिल्म संगीत। आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया नया दौर फिल्म का गीत है। ओपी नैयर ने धुन बनाई है साहिर के बोल।

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला कह के

0: मन्ना दे और साथियों का गाया फिल्म श्री 420 का ये गीत था। इसके साथ ही फिल्म संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में आयोजित एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस कॉन्क्लेव में सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और जीसीसी निवेश पर मंथन होगा। कॉन्क्लेव में देश विदेश की प्रमुख टेक कंपनियां, निवेशक और नीति विशेषज्ञ एक मंच पर जुटे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत नवाचार, तकनीक और प्रतिभा के बल पर दुनिया में नई पहचान बना रहा है। इसी दिशा में मध्य प्रदेश में कृषि, खनिज और वनों की पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर डिफेंस, ड्रोन, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रिन्यूएबल एनर्जी और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में तेजी से अग्रसर है। एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की।
2: इंदौर आईटी पार्क सुपर कॉरिडोर, इंदौर के सुपर कॉरिडोर में 3 लाख वर्ग फुट क्षेत्रफल वाला अत्याधुनिक आईटी पार्क का भी डेवलपमेंट किया जाएगा। मैं बधाई देना चाहता हूं जो जीसीसीएस आईटी डिजिटल सेवा कंपनियों को विश्व स्तरीय प्लग एंड प्ले की अवसंरचना उपलब्ध कराएगा। प्रदेश में सेमीकंडक्टर के खासकर इस क्षेत्र में काम करने के लिए कौशल विकास, अनुसंधान, उद्योग सहयोग एवं क्षमताओं को प्रोत्साहित करेगा। यह सेमीकंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की भी मैं घोषणा कर रहा हूं।
1: दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आज नामांकन का अंतिम दिन है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। वहीं अब से कुछ देर बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी नामांकन दाखिल करने निर्वाचन कार्यालय पहुंचे। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा दतिया पहुंच रहे हैं। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ ही पशुपालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा चलाए जा रहे दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत पशुपालन और डेयरी विभाग के अधिकारी कर्मचारी पशुपालकों के घर पहुंचेंगे और नस्ल सुधार, पशु पोषण, टीकाकरण और सेक्स सॉर्टेड सिमिन के बारे में जानकारी देंगे। नर्मदापुरम से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 18 जुलाई तक चलने वाले 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, वनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा और केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालकों परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि सर्वांगीण विकास प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन सुनिश्चित करता है। इससे राष्ट्र की प्रगति को नई दिशा मिलती है। संस्कृत का एक उदाहरण साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश इस प्रेरणादायक भावना के साथ भारत की क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इनमें कहा गया है कि महिलाओं का कल्याण सुनिश्चित करना, युवा पीढ़ी की रक्षा और पोषण करना, राष्ट्र की एकता, सुरक्षा, समृद्धि और सुशासन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना प्रत्येक जनप्रतिनिधि का निरंतर कर्तव्य है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से से मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया मौसम का सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे प्रदेश में फिर से तेज बारिश का दौर शुरू होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, मैहर, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी

0: बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, पांडुना, बैतूल, खंडवा, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार और अलीराजपुर जिलों में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना में नगर पालिका द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वच्छता व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाकर जल जनित और बैक्टीरिया जनित रोगों की रोकथाम करना है। मंडला जिला जेल में आयोजित विधिक जागरूकता कार्यक्रम में बंदियों की समस्याओं को सुना गया। जबलपुर मंडल के रेल मंडल प्रबंधक कमल कुमार तलरेजा ने जबलपुर पुणे वीकली सुपरफास्ट एक्सप्रेस में कल जबलपुर से इटारसी के बीच औचक निरीक्षण किया। भगवान जगन्नाथ की पारंपरिक रथ यात्रा कल आगरमालवा जिले के कारण में धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ निकाली गई। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार दिल्ली केंद्र से होंगे।
2: नमस्कार। आकाश समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया। तत्काल कार्रवाई के आदेश। वियतनाम में नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय नागरिकों के पार्थिव शरीर आज रात विशेष विमान से भारत पहुंचेंगे। ईरान ने अपने सैन्य ठिकानों पर अमरीकी हमलों के जवाब में जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमरीका के सैन्य ठिकानों पर हमले किए। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन आज भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने आज असम के विदेशी न्यायाधिकरणों द्वारा विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों द्वारा दायर याचिकाओं के एक समूह की सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए। न्यायालय ने कहा कि इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने निर्देश दिया कि न्यायाधिकरणों द्वारा उनके मामलों की दोबारा सुनवाई होने तक याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। याचिकाकर्ताओं ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय और बाद में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधिकरण के आदेशों को चुनौती दी थी। अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए 1971 से पहले के अभिलेखों, मतदाता सूचियों और भूमि अभिलेखों जैसे दस्तावेजों का सहारा लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल SIT से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में CBI जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहन की पीठ ने याचिकाओं की सुनवाई की। इससे पहले 13 जून को SI का गठन किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में किसी गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है। तमिलनाडु सरकार ने उच्च न्यायालय के 27 मई के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें प्रशासन से 28 मई को बकरीद की पूर्व संध्या पर या किसी भी और दिन राज्य में गाय या बछड़े की हत्या न किए जाने को सुनिश्चित करने को कहा गया था। राज्य सरकार ने इस आदेश को तमिलनाडु पशु संरक्षण अधिनियम 1958 के विपरीत बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: भारत के दूसरे सबसे लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर वाला 63 किलोमीटर लंबा 6 लेन का लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे

0: स्वचालित और अत्याधुनिक मशीन निर्देशित निर्माण तकनीक से बना देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। एआई के जरिए गति नियंत्रण की प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत 24/7 कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति के लिए डिजाइन किया गया है और इससे लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 40 मिनट होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र 1 महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6वां नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था।
2: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मध्य प्रदेश प्रौद्योगिकी विकास सम्मेलन का 3रा संस्करण आज भोपाल में हो रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने 178 करोड़ 70 लाख रुपए के कुल निवेश वाली 20 औद्योगिक इकाइयों का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्य प्रदेश को देश के अग्रणी प्रौद्योगिकी और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। डॉ. मोहन यादव ने कहा कि पिछले वर्ष बार्सिलोना की उनकी यात्रा के बाद स्पेन, अमरीका और कनाडा की कंपनियों ने राज्य में निवेश किया है।
3: अपने 2 वर्ष के अंदर जो 6 लाख लगाई है, ये केवल यहाँ का अभियान हमारे लिए नहीं हुआ। अब मध्यप्रदेश में स्पेन, कनाडा, अमेरिका, यूके, जापान, दक्षिण कोरिया ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने FDI के माध्यम से 28,200 करोड़ से ज्यादा का निवेश हमारे प्रदेश के अंदर कर लिया है।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव घटना से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों के मुद्दे का संज्ञान लिया है। राष्ट्रपति ने झारखंड में रामगढ़ जिले के सरकारी अधिवक्ता संजीव कुमार अम्बष्ट की ओर से दायर याचिका के बाद ये संज्ञान लिया। राष्ट्रपति सचिवालय ने श्रम और रोजगार सचिवों को तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने और संबंधित रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। याचिका में झारखंड के प्रभावित श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के साथ साथ वित्तीय सहायता, मुआवजा और पुनर्वास की मांग की गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान नीति के मसौदे पर सुझाव आमंत्रित किए हैं। इसका उद्देश्य देश में स्वास्थ्य संबंधी शोध तंत्र को सुदृढ़ और निर्देशित करने के लिए व्यापक ढांचा प्रदान करना है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान की रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव है। टिप्पणियां और सुझाव 27 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे एक गूगल फॉर्म का खंडन किया है। इसमें डॉक्टरों और अन्य पेशेवरों के लिए इंटर्नशिप देने का झूठा दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने नागरिकों से आग्रह किया है कि वे संदिग्ध लिंक या वेब पेजों पर क्लिक ना करें और अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा ना करें। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने कहा है कि जल प्रबंधन में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक हैं। नई दिल्ली में आज ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित जल प्रबंधन और जल सुरक्षा योजना पर राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में श्री भारद्वाज ने कहा कि सार्थक परिवर्तन तभी संभव है जब सब मिलकर एक साझा लक्ष्य के लिए कार्य करें। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्र

0: व्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत अभियान के अगले चरण की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत प्रतियोगिताएं 3 चरण में आयोजित की जाएंगी। पंजीकरण आज से माय भारत पोर्टल पर शुरू हो रहा है। 24 से 27 जुलाई तक जिला स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। युवा अपनी रचनाएं हिंदी, अंग्रेजी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में प्रस्तुत कर सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना में आयोजित एक समारोह में बिहार हेलीकॉप्टर पर्यटन और हवाई पर्यटन सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सेवा के लिए एक ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है।
1: लोगों को बिहार दर्शन कराना है, ये सिर्फ शोकेस में नहीं रखना है, ये पूरी तरह ऐसी व्यवस्था कीजिए कि पर डे हम बिहार दर्शन करा सके। बिहार की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म का रोल हो तब समझिए गया कि टूरिज्म का रास्ता बदला। हम आम लोगों को सैर कराने का काम कर रहे हैं।
0: श्री चौधरी ने कहा कि साप्ताहिक हवाई पर्यटन सेवा को भविष्य में दैनिक सेवा में विस्तारित किया जाएगा। योजना के पहले चरण में पटना, वाल्मीकि नगर, मां मुंडेश्वरी और राजगीर को शामिल किया गया है। राज्य सरकार प्रति टिकट 15,422 रुपए तक की सब्सिडी प्रदान करेगी। हेलीकॉप्टर पर्यटन सेवा 18 जुलाई से शुरू होगी और प्रत्येक शनिवार और रविवार को संचालित होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की जिम्मेदारी ली है। ईरान ने इसे हाल में उसके सैन्य ठिकानों पर अमेरिका द्वारा किए गए हमलों का जवाब बताया है। एक रिपोर्ट।
2: ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार इस कार्रवाई में जॉर्डन के प्रिंस हसन हवाई अड्डे, बहरीन के शेख ईसा हवाई अड्डे और कुवैत में अली अल सलीम और अहमद अल जाबेर हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया। IRGC ने दावा किया है कि इससे ईंधन भंडार, गोला बारूद भंडारण प्रतिष्ठानों, वायु रक्षा प्रणालियों और रडार ढांचे को नुकसान पहुंचा है। ईरान ने हुर्मुज जलडमरू मध्य में आगे किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई करने पर अमरीका को चेतावनी दी है। ये दावे अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के प्रमुख अभियान के बाद आए हैं, जिसमें ईरान में कई जगहों पर आक्रामक हमले किए गए थे। इन हमलों में कई सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार में बाधा डालने की ईरान की क्षमता को कमजोर किया जा सके। अमरीका ने कहा है कि ये हमले हुर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा और आवाजाही में स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किए गए थे। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वियतनाम के फू क्वोक द्वीप के पास नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात करीब 9:30 बजे उतरेगा। न्यूजीलैंड के अभिनेता सैम नील का 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे जुरासिक पार्क और द पियानो जैसी फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। भारत ने कतर के पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। उनका कल निधन हो गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि वे एक दूरदर्शी नेता थे। महिला क्रिकेट में लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड की टीम आज चौथे दिन अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। भारत ने इंग्लैंड को 457 रन का लक्ष्य दिया है। भारत ने 269 रन की बढ़त बनाते हुए दूसरी पारी 7 विकेट पर 341 रन पर घोषित कर दी। विकेटकीपर और बल्लेबाज यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स में टेस्ट शतक बनाने वाली पहली महिला क्रिकेटर बन गई हैं। इंग्लैंड पहली पारी में 170 रन पर ही सिमट गई थी। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन तक अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों, सिक्किम और उत्तराखंड में भी मूसलाधार बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में 16 जुलाई

0: बारिश का अनुमान है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सामान्य रूप से कारोबार कर रहे हैं। सेंसेक्स 20 अंक बढ़कर 77,589 पर और निफ्टी 7 अंक गिरकर 24,200 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा किसी व्यक्ति की नागरिकता का निर्धारण और उसे विदेशी घोषित करने के लिए निष्पक्ष और वैध प्रक्रिया का पालन होना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 27 अपीलकर्ताओं को विदेशी घोषित करने के फैसले को रद्द किया। सर्वोच्च न्यायालय ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल से मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तमिलनाडु में अमोनिया गैस रिसाव से प्रभावित झारखंड के श्रमिकों से जुड़े मामले का संज्ञान लिया, तत्काल कार्रवाई के आदेश। और महिला क्रिकेट में लॉर्ड्स में टेस्ट मैच के चौथे दिन भारत के साथ इंग्लैंड दूसरी पारी में 6 विकेट पर 130 रन से आगे खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। तस्वीर फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं आशा भोसले की आवाज में। डी एन मधोक ने इस गीत को रचा है। सी रामचंद्र का संगीत।

शोर फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाजें थी मन्ना डे, महेंद्र कपूर और श्याम चित्तर की। राजकवि इंद्रजीत सिंह और तुलसी ने इसे लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ये अगला गीत। फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ें हसरत जयपुरी के बोल।

0: सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी, आपको भी हमारा नमस्कार।
1: सुनने वाले सभी सखियों, श्रोताओं और सखा भाइयों को दीपा माहेश्वरी का नमस्कार और ममता जी आपको भी नमस्कार।
0: जी देखिए दीपा, कई बार क्या होता है कि कुछ परेशानियां आती हैं या कोई विपरीत परिस्थिति आती है, बस मन अधीर हो जाता है, बेचैन हो जाता है और कई बार दो राह पे हम खड़े होते हैं तो निर्णय की क्षमता लेने में बड़ी असुविधा होती है, समझ में नहीं आता कि हम इस तरफ जाएं कि उस तरफ जाएं, क्या करें। कई बार सड़कों पर भी ऐसा होता है कि हम खड़े होते हैं कि रास्ता राइट को जाएगा कि लेफ्ट को जाएगा। हालांकि अभी गूगल नाम के मास्टर ने बहुत आसानी कर दी है कि आपको मैप के जरिए आप सही रास्ते पर चले जाते हैं, बस कि नेट चल रहा हो आपका। तो ये जो मन जो अधीर हो जाता है, इस मन को साधने के लिए, शांत करने के लिए बहुत सारे नुस्खे अपनाने पड़ते हैं।
1: बिल्कुल, और इसी बारे में बात भी करेंगे हम ममता जी आज की, क्या किया जाए जब मन बहुत बेचैन है, कहीं कुछ समझ नहीं आ रहा, तो निर्णय लेना चाहिए या नहीं, या कभी गलत हो गया है आपके साथ तो हमारे सभी सुनने वाले बताएं कि क्या हुआ था, कभी कुछ गलत उनके साथ हुआ है या कहीं उन्होंने मन को शांत करके फिर बताई है बात, या कुछ ऐसा निर्णय को थोड़ा सा टाला है और बाद में उसको लिया है, ऐसा कुछ अनुभव उनके साथ अगर रहा है तो हमारे साथ अवश्य,
0: मतलब किन परिस्थितियों में वो अधीर हो जाते हैं और किस तरह से वो निर्णय ले पाते हैं अपने जो भी कार्य हैं, तो हमारे श्रोता बताएं विविध भारती के फेसबुक पेज पर आकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो विविध भारती के फेसबुक पेज पर पहुंच जाएंगे। और सिर्फ इसी के बारे में उन्हें नहीं टाइप करना है बल्कि बारिश और लकड़ी के फर्नीचर, ये हमारा अगला मुद्दा है, अगला विषय है जिस पर उनकी टिप्पणियों का हमें इंतज़ार रहेगा कि बारिश में लकड़ी के जो फर्नीचर होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, कई बार दरवाजे तक बड़े टाइट हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल, और कहीं पे दीमक लग जाती है, कहीं फूल जाते हैं या कहीं टेढ़े हो जाते हैं, तो इस तरह की कई सारी चीज़ों को हम देखते हैं, तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए क्या नहीं, हम तो यहाँ विचार विमर्श करेंगे ही, चर्चा होगी, आपको भी क्या लगता है आप वो भी बताइएगा।
0: मैं नहीं, हमारे श्रोता जी। और इसके अलावा जब सुबह सुबह उठते हैं तो मन में सवाल सबसे पहले ये उठता है कि आज नाश्ते में क्या खाया जाए, नाश्ते में क्या बनाया जाए जी। तो इस मुश्किल की आसानी के लिए पराठे, कई तरह के पराठे बनाए जाते हैं, कभी गोभी के पराठे, कभी आलू के पराठे, कभी पनीर के पराठे, और आप भी बनाती होंगी कई तरह के पराठे, दो चार पराठों के नाम बताइए।

0: या भी?
1: जी मूली के पराठे होते हैं, फूल गोभी के पराठे होते हैं,
0: पत्ता गोभी,
1: तो पत्ता गोभी की भी थी,
0: लौकी का पराठा भी बनता है,
1: लौकी का भी होता है,
0: प्याज का पराठा
1: जी, और अगर जरूरत पड़ जाए तो अचार का मसाला लगा के वैसा भी,
0: और सत्तू का पराठा बहुत टेस्टी होता है। तो आज हम श्रोताओं से जानना चाहेंगे पंजाब के भरवा पराठे कैसे होते हैं, अगर उन्हें जानकारी है, अगर वो नहीं लिख पाएंगे तो हम उन्हें बताएंगे पंजाब के भरवा पराठे के बारे में कि कैसे बनते हैं। और कथा सुधा जो हमारी सीरीज चल रही है, आज इसका दूसरा भाग सुनवाएंगे दो बहने का। तो फिलहाल एक गाना सुन ले हम।
1: चलिए।

0: ममता जी, पिछले सोमवार को हमने सुना कहानी, प्रेमचंद की लिखी कहानी दो बहनें। इसका हमने पहला जो कड़ी उसकी सुनी थी, आज हम सुनेंगे उसकी दूसरी कड़ी और ये अंतिम कड़ी होगी। तो चलिए, हमारे सारे श्रोता भी बहुत आतुरता से इसका इंतजार कर रहे हैं।
1: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी दो बहने। पिछली कड़ी में आपने सुना,
2: दो बहने दो साल बाद एक तीसरे अजीज के घर मिली और खूब रो धोकर खामोश हुई। तो बड़ी बहन रूप कुमारी ने देखा कि छोटी बहन राम दुलारी सर से पांव तक गहनों से लदी हुई है। कुछ उसका रंग खिल गया, मिजाज में कुछ तमकनत आ गई और बातचीत करने में कुछ ज्यादा मुश्ताक हो गई है।
3: इस दो साल में कैसे हुन बरस गया, कौन जाने। जेवर किसी से मांग

0: कर लाई हो, कपड़े भी दो चार दिन के लिए मांग लिए हो। उसे ये स्वांग मुबारक रहे, मैं जैसी हूं वैसी ही अच्छी हूं।
1: राम दुलारी ने जैसे रहम की आंखों से देख कर कहा,
2: जीजा जी की कुछ तरक्की बरक्की हुई कि नहीं बहन, या अभी तक वही 75 पर कलम घिस रहे हैं?
1: रूप कुमारी के बदन में आग सी लग गई, उफ़ दिमाग, गोया उसका शौहर लाट ही तो है। अकड़ कर बोली,
0: हाँ तरक्की क्यों नहीं हुई, अब 100 के ग्रेड में है।
1: रूप कुमारी खामोश हो गई। अब यह हकीकत उसकी सारी तलखियों के साथ तस्लीम करनी पड़ेगी कि राम दुलारी उससे ज्यादा खुशनसीब है। उसे बहाने से राम दुलारी के घर जाकर असलियत की छानबीन करनी पड़ेगी।
3: रूप कुमारी क्या राम दुलारी की असलियत जान सकेगी? छानबीन कैसे करेगी, असलियत क्या है, जानने के लिए सुनिए अत्यंत रोचक कहानी दो बहने की दूसरी कड़ी।
0: मगर क्या सचमुच इस ख्याल से मुझे तस्कीन होगी? यहाँ कौन ईमानदार है? वही जिसे बेईमानी का मौका नहीं है और न ही इतनी हिम्मत है कि वो मौका पैदा कर ले। मेरे शौहर 75 रुपए माहवार पाते हैं, मगर क्या 10-20 रुपए ऊपर से मिल जाएं तो वो खुश होकर न लेंगे? उनकी ईमानदारी और उसूल परवरी उस वक्त तक है जब तक मौका नहीं मिलता। जिस दिन मौका मिला, सारे उसूल परवरी धरी रह जाएगी, और तब तक मुझ में इतनी अखलाकी कुवत है कि मैं अपने शौहर को नाजायज आमदनी से रोक दूं। रोकना तो दरकिनार, मैं खुश होऊंगी, शायद मैं अपने शौहर की पीठ ठोकूं। अभी उनके दफ्तर से वापसी के वक्त मन मारे बैठी रहती हूं, तब दरवाजे पर खड़ी होकर उनका इंतजार करूंगी, और जू ही वो घर आएंगे उनकी जेबों की तलाशी न लूंगी।
1: आंगन में गाना बजाना हो रहा था। राम दुलारी उमंग के साथ गा रही थी और रूप कुमारी वहीं बरामदे में उदास बैठी थी। न जाने क्यों उसके सर में दर्द होने लगा। कोई गाए कोई नाचे, उसे कोई सरोकार नहीं। वो बदनसीब है, रोने के लिए पैदा की गई है। 9 बजे रात के मेहमान रुखसत होने लगे। रूप कुमारी भी उठी, यक्का मंगवाने जा रही थी कि राम दुलारी ने कहा,
2: इक्का मंगवा कर क्या करोगी बहन, मुझे लेने के लिए अभी कार आती होगी, 2-4 दिन मेरे यहाँ रह लेना फिर चली जाना, मैं जीजा जी को कहला भेजूंगी।
1: रूप कुमारी का आखिरी हरवा भी बेकार हो गया। राम दुलारी के घर जाकर दरियाफ्त हाल की ख्वाहिश यकायक फना हो गई। अब वो अपने घर जाएगी और मुंह ढाप कर पड़ रहेगी। इन फटे हालों क्यों किसी के घर जाए? बोली,
0: अभी तो मुझे फुर्सत नहीं है, फिर कभी आऊंगी। हाँ अभी नहीं।
2: बहन क्या रात भर भी नहीं ठहरोगी?
0: नहीं, वो मेरे सर में जोर का दर्द हो रहा है, फिर कभी।
2: अच्छा तो बताओ फिर कब आओगी, मैं कार भेज दूंगी। कार
0: अब खुद कहला दूंगी। हाँ
2: अरे बहन तुम्हें याद न रहेगा, साल भर तो हो गया, भूल कर भी याद नहीं किया। मैं इसी इंतजार में थी कि दीदी बुलाए तो चलूं। एक शहर में रहते हैं फिर भी इतनी दूरी कि साल भर गुजर जाए और मुलाकात ही न हो।
0: घर के फिक्रों से फुर्सत ही नहीं मिलती। कई बार इरादा किया कि तुझे बुला भेजूं, मगर मौका ही न मिला।
1: इतने में राम दुलारी के शौहर मिस्टर गुरुसेवक ने आकर बड़ी साली को सलाम किया। बिल्कुल अंग्रेजी वजह थी, कलाई पर सोने की घड़ी, आंखों पर सुनहरी ऐनक, बिल्कुल अप टू डेट, जैसे कोई ताजा दादर स्वयं हो। चेहरे से जहानत मतानत और शराफत बरस रही थी। वो इतना खुशरू और जामा जेब है, रूप कुमारी को इस बात का गुमान भी ना था। दुआ देकर बोली,
0: कैसे हो गुरु सेवक, आज यहां ना आती तो तुमसे मुलाकात क्यों होती भला?
1: गुरु सेवक हंसकर बोला,
4: बजा फरमाती हैं भाई, उल्टी शिकायत, कभी आपने बुलाया और मैं ना गया, ऐसा हुआ है?
0: शिकायत तो सही है, वैसे मैं ना जानती थी कि तुम अपने को मेहमान समझते हो, कभी भी आओ, वो भी तुम्हारा ही घर है।
4: अब मान गया दीदी, बेशक मेरी गलती है, इंशाअल्लाह उसकी तलाफी करूंगा, मगर आज हमारे घर रहिए।
0: नहीं देखो, राम दुलारी भी कह रही है, लेकिन आज फुर्सत बिल्कुल नहीं है, फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे ना, अभी चलती हूँ।
2: मैं तो कितना कहकर हार गई, मानती ही नहीं दीदी।
1: दोनों बहनें कार की पिछली सीट पर बैठ गईं। गुरु सेवक ड्राइव करता हुआ चला, जरा देर में उसका मकान आ गया। राम दुलारी ने फिर रूप कुमारी से चलने के लिए इसरार किया, मगर वो न मानी।
0: नहीं नहीं, आज आज बिल्कुल फुर्सत नहीं है, फिर आऊंगी, लड़के घर पर घबरा रहे होंगे, फिर आऊंगी।
1: आखिर राम दुलारी उससे गले मिलकर अंदर चली गई। गुरुसेवक ने कार बढ़ाई, रूप कुमारी ने उड़ती हुई निगाह से राम दुलारी का मकान देखा और ठोस हकीकत सलाख की तरह उसके जिगर में चुभ गई। कुछ दूर चलकर गुरुसेवक बोला,
4: दीदी मैंने अपने लिए कैसा अच्छा रास्ता निकाल लिया है, 2-4 साल काम चल गया तो आदमी बन जाऊंगा।
0: हाँ, राम दुलारी ने मुझसे कहा, भगवान करे जहां रहो खुश रहो, देखो जरा हाथ पैर संभाल कर रहना भाई।
4: अब देखिए, मैं मालिक की आंख बचाकर एक पैसा लेना भी गुनाह समझता हूँ। अब दौलत का मजा तो जब है कि ईमान सलामत रहे, आप ही बताइए, ईमान खो के पैसे मिले तो क्या।
0: सही कह रहा,
4: ऐसी दौलत पे तो मैं लानत भेजता हूं, और आंखें किसकी बचाऊं, सब स्या सफेद तो मेरे हाथ में है, मालिक तो कोई है नहीं, हाँ उसकी बेवा है, उसने सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ रखा है, मैंने उसका कारोबार संभालना लिया होता तो सब कुछ चौपट हो जाता दीदी। मेरे सामने तो मालिक सिर्फ 3 महीने जिंदा रहे।
0: अच्छा,
4: मगर बड़ा मर्दुम शनास आदमी था, मुझे 100 रुपए पर रखा और एक ही महीने में 250 कर दिया।
0: अच्छा,
4: आप लोगों की दुआ से मैंने पहले ही महीने में 12,000 का काम किया।
0: अच्छा एक बात ये बताओ, काम क्या करना पड़ता है?
4: वही मशीनों की एजेंसी, तरह तरह की मशीनें मंगाना और बेचना।
0: अच्छा,
1: रूप कुमारी का मनहूस घर आ गया। दरवाजे पर एक लालटेन टिमटिमा रही थी, उसके शोहर बाबू उमानाथ दरवाजे पर टहल रहे थे। रूप कुमारी उतरी, मगर उसने गुरुसेवक से आने के लिए इसरार न किया, बेदिली से कहा जरूर, मगर जोर न दिया, और उमानाथ तो मुखातिब ही ना हुए।
0: मेरा घर, ये घर अब कब्रिस्तान सा लग रहा है, जैसे फूटा हुआ नसीब हो, न कहीं फर्श, न फर्नीचर, न गमले, ये 2-4 टूटी कुर्सियां और ये लंगड़ी मेज, 4-5 पुरानी खाटे, बस यही है मेरे घर के बिसात। आज सुबह तक तो इस घर में मैं बहुत खुश थी, लेकिन आप इस घर से मतलब दिलचस्पी न रही।
1: लड़के अम्मा अम्मा करके दौड़े, मगर उसने दोनों को झिड़क दिया, सर में दर्द है, वो किसी से न बोलेगी, अभी तक खाना नहीं पकाया, पकाता कौन, लड़कों ने तो दूध पी लिया है, मगर उमानाथ ने कुछ नहीं खाया। इस इंतजार में थे कि रूप कुमारी आए, मगर रूप कुमारी के सर में दर्द है, मजबूरन बाजार से पूरियां लानी पड़ेंगी। रूप कुमारी ने मलामत आमेज अंदाज से कहा,
0: तुम अब तक मेरा इंतजार क्यों करते रहे, मैंने खाना पकाने का ठेका तो नहीं लिया है, और जो रात भर वही रह जाती, आखिर एक महराजिन क्यों नहीं रख लेते, या जिंदगी भर मुझे को पीसते रहोगे।
1: उमानाथ ने उसकी तरफ मजलूम और सवाले हैरत की निगाह डाली, इस व्यवहार का कोई सबब उसको समझ ना आया। रूप कुमारी से इन्होंने हमेशा बेउज्र इताअत पाई थी, बेउजर ही नहीं खुश दिलाना भी। उन्होंने कई बार उससे

0: अजेंद्र जोशी, गुरु सेवक जयंत पात्रिकर, सूत्रधार जी श्याम, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। आज आपने इस कहानी की दूसरी कड़ी सुनी। मुंशी प्रेमचंद की ये कहानी दो बहनें आगे कहाँ पहुँचती है, जानने के लिए जरूर सुने कथा सुधा में तीसरी कड़ी अगले हफ्ते।
1: साथियों, आप सुन रहे थे दो बहनें कहानी का भाग दो। इसकी अगली कड़ी आप सुनिएगा अगले सोमवार। और अब सुन रहे हम एक गीत।
2: सुनते हैं ये गाना।

0: कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए।
1: आनंद फिल्म का ये गाना था। और दीपा जी घड़ी की ओर देखिए, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम श्रोताओं की टिप्पणियां सुनवाएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली, और कहा जाता है कि मन के हारे हार है मन के जीते जीत। मतलब मन में अगर कुछ ठान ले तो बहुत मुश्किल काम आसान लगता है। क्या कहेंगे दीपा जी आप?
1: ये बात सही है कि जब मन को अगर आपने ठान लिया तो बात आसान होगी, लेकिन जब ये मन अधीर हो जाता है ममता जी, अधीर मन में निर्णय लेना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, और उसकी वजह से जो परिणाम आते हैं वो भी हो सकता है कि गलत हो सकते हैं, है ना।
0: अब जी, हमारे जी, बहुत सारे श्रोता देखते हैं कि क्या कह रहे हैं, इनका क्या कहना है। हमारे एक श्रोता की टिप्पणी है, लिखा है कि अधीर मन अक्सर जल्दबाजी में निर्णय लेता है और छोटी छोटी बातों पर विचलित हो जाता है। इसके विपरीत क्षमता और धैर्य मनुष्य को परिस्थितियों को समझने, दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने और सही निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। जबकि मन में धैर्य और क्षमा का भाव होता है तब संबंध मधुर बनते हैं और जीवन में शांति बनी रहती है। बहुत कुछ इन्होंने कह डाला है और भी कुछ लिखा है, तो आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है, जरा देखिए आप।
1: ये कहते हैं कि अधीर मन निर्णय की गति को बढ़ा सकता है लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो घटा सकता है, और वहीं शांत और संतुलित मन अधिक विवेकपूर्ण और टिकाऊ निर्णय लेने में मदद करता है।
0: और अब अगले श्रोता ये कह रहे हैं कि अधीर मन मतलब जल्दबाजी या व्याकुलता, इसमें निर्णय क्षमता एक दूसरे से विपरीत काम करते हैं। जब मन अशांत होता है तब सटीक या सही निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, इसके चलते अधूरे तथ्यों पर प्रतिक्रिया दे देते हैं जिसके कारण बाद में पछतावे की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए जो भी निर्णय लेना हो उसे शांत चित्त से लें।
1: बिल्कुल सही कहा इन्होंने। और एक और संदेश ये कहता है ममता जी कि मनुष्य का मन जितना चंचल है उतना ही अधीर भी। हर एक बात का उत्तर वो तुरंत चाहता है और हर समस्या का समाधान बिना प्रतीक्षा के खोजता है, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर सही दिशा नहीं दिखाता और कई बार जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर पछताना भी पड़ता है, नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इसलिए जब भी मन अधीर हो तो स्वयं को थोड़ा सा हमें समय देना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखें, धैर्य रखें, उसके बाद ही निर्णय हमें आगे लेना चाहिए जीवन।
0: और थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए कि हम ऐसा नहीं कि अभी तुरंत निर्णय ले लें, वक्त पे छोड़ देना चाहिए, ये भी जरूरी होता है। हमारी एक सखी हैं जिन्होंने लिखा है कि इंसान का मन तालाब के जल की तरह होता है। मन में उत्पन्न हो रहे विचार पानी में फेंके गए कंकड़ की तरह हैं, खासकर उस परिस्थिति में जब हम हर वक्त अधीरता में रहे। अधीरता यानी कि बेचैनी। अधीरता में किया गया निर्णय मन की शांत सतह पर लहरों की तरह आता जाता है और हम बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बेचैनी पर थोड़ा सा अंकुश लगा लें तब हम स्पष्ट रूप से शांत पानी के नीचे तक देख सकते हैं। जब मन बहुत अधिक बेचैन हो तो उसे कुछ समय के लिए तन्हा छोड़ देना ही बुद्धिमत्ता है। वैसे भी जब आपको कुछ ना सूझे तो आप अकेले शांत चित्त होकर बैठ जाएं, वो कहते हैं कि खाली बर्तन की तरह मन को खाली कर दें।
1: बिल्कुल,
0: तो देखिए
1: जी,
0: आप
1: थोड़ा सा हम अगर
0: सोच सकते हैं सही तरीके से,
1: सही, और थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए। मान लीजिए बहुत ही ज्यादा व्याकुलता अपने अंदर घिर आई है, थोड़ा सा प्राणायाम कर लीजिए, थोड़ा सा अपनी सांसों को देखिए, गहरी सांस लीजिए, तो सच में कुछ वक्त के बाद हमें लगता है कि हम मन भी शांत हो गया है और शायद हम कुछ अच्छे से सही और सकारात्मक भी सोच सकते हैं। एक संदेश ये कहता है ममता जी कि एक चंचल और अधीर मन कभी भी तार्किक और सही निर्णय नहीं ले सकता। जीवन या कार्यस्थल, यहाँ पर तरक्की के लिए मन की स्थिरता को बढ़ाना और जल्दबाजी की आदत को छोड़ना ही

0: एकमात्र मार्ग है। और एक और संदेश ये कहता है कि अधीर मन के निर्णय लेने की क्षमता बिल्कुल जीरो रहती है। कुछ धैर्यवान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति धैर्य से थोड़ा शांत होकर सही निर्णय ले सकते हैं। फिर कुछ लोग जो सही में हमदर्द होते हैं, उनसे अपने मन की अधीरता को आप साझा कर सकते हैं और वहां से भी शायद आपको सही निर्णय मिल सकता है।
1: अब ये तो अधीर मन से कैसे निर्णय लेते हैं ये बताया, लेकिन कभी किसी श्रोता ने अपना अनुभव नहीं साझा किया है कि कब ऐसी परिस्थिति आई जब आपको निर्णय लेना पड़ा, निर्णय आपका सही था या गलत था। एक गाना सुन लेते हैं, शायद तब तक हमारे श्रोता लिख भेजे और हम उनकी टिप्पणी उन तक पहुंचा सके। फिलहाल ये गाना

0: ममता जी, फिर भी अगर ऐसा है कि मन तो अधीर ही रहता है और एंजाइटी बनी रहती है, तो बहुत जरूरी है कि अपने आप पर हम काम करें। जैसे कि हम शारीरिक गतिविधियां कर सकते हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी जिसमें कि हमें लगे कि तनाव कम हो, कि कहीं पे सैर के लिए निकल जाना, या कहीं कोई ऐसा ग्रुप क्लास कर लेना जहाँ पे कि आपको अच्छा लगे, मिल के लोगों के साथ व्यायाम करना, या कोई मनोवैज्ञानिक सहायता ले लें। अगर आप बार बार ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातें हमें बहुत परेशान कर जाती हैं, हम एक थोड़ी सी अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रा सा हलचल हुआ या कुछ उठा पटक हुई तो हम एकदम परेशान हो जाते हैं और हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या किया जाए, हम क्या करें।
1: अब देखिए ना, हमारे एक श्रोता ने लिखा है, इनकी टिप्पणी अभी आई है, मुझे ऐसा लग रहा है मन की इच्छाओं का कोई अंत नहीं है, जिसे जितना अधिक प्राप्त होता है ये उतने ही अधिक की कामना करने लग जाता है। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं तो सीमित हैं, लेकिन मानसिक रूप से हर क्षण जन्म ले रही इच्छाओं के कारण मनुष्य कभी संतुष्ट नहीं रह पाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि तन की भूख सहज है, और जैसे कि तीन पाव की सेर, मन की भूख अनंत है, निगले मेरु समेरु। और एक श्रोता ने लिखा है कि एक गुजराती मुहावरा है, मन होए तो मालवे जवाए, मतलब मन इच्छा करे तो हम कहीं भी जा सकते हैं, अधीर मन से तो हम बीच रास्ते में ही अटक या लटक सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा कि अधीर मन से हम बीच रास्ते में अटक जाते हैं, और यही प्रतिकूलता को का सामना करने के लिए हमें अपने आप को एक समर्थ बनाना पड़ता है। कोई शौक हम अपना सकते हैं, पसंदीदा गीत सुनिए, कोई ऐसी क्लास कीजिए, कहीं पर जाइए जहाँ से आपका मन हमें कुछ प्रसन्नता पाए, अच्छा लगे उसे। तो जब आप घर वापस लौटें, तो आप जब खुद एक अंदर से सकारात्मक वाइब्रेशन लिए हुए होंगे, तो घर में भी वही चीज़ों को आगे फैलाएंगे। तो मन को शांत रखने के लिए अपनी आदतों को बदलना ज़रूरी है, कुछ व्यायाम करना ज़रूरी है, आत्मविश्वासी थोड़ा बनना ज़रूरी है, और आगे भविष्य के लिए एक स्पष्टता के साथ फिर हम निर्णय भी ले सकते हैं।
1: एक श्रोता ने लिखा है कि अधीर मन शांत दिमाग से निर्णय लेने का किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि बात 2023 की है। छोटे बेटे ने MBBS का एग्ज़ाम नीट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए, और काउंसलिंग सेकंड राउंड में मेडिकल कॉलेज अजमेर में सीट फुल हो गई थी, और अन्य गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल रहा था। घर के अन्य सदस्य भी राजी थे, बेटे के जो टीचर्स थे वो भी राजी थे, सिर्फ मैंने शांति से निर्णय लिया और थर्ड काउंसलिंग राउंड तक इंतज़ार किया, और बेटे को अपने शहर में ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अजमेर में एडमिशन मिल गया। मतलब इनका कहने का तात्पर्य ये है कि थोड़ा इंतज़ार करो, इंतज़ार के बाद भी कई बार आपके निर्णय जो सही निर्णय होता है वो सही हो जाता है।
0: बिल्कुल। और एक और हमारे साथी ने एक घटना साझा की है, वो ये कहते हैं कि एक बार ऑफिस में मेरी अपने सीनियर के साथ किसी बात को लेके बहस होने वाली थी, उन्होंने मुझे तुरंत बात करने के लिए बुलाया, लेकिन उस समय मुझे लगा कि मेरा मन शांत नहीं है, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करने के बजाय थोड़ा समय लिया। शाम को जब हमने बात की, तब तक मेरा मन बिल्कुल शांत हो चुका था। हमने आराम से बातचीत की और बात भी अच्छे से सुलझ गई। तो उन्हें ये कहते हैं कि अगर मैं उस समय गुस्से या आवेश में बात कर लेती तो शायद बात और बिगड़ जाती।
1: तो मतलब क्षणिक और आवेश में लिया गया निर्णय कई बार आपको पछतावा का कारण भी बन जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अब ये बारिश का मौसम तो है ही है, हालांकि मुंबई में भी बारिश रुकी हुई है, लेकिन देश के बहुत सारे हिस्सों में बारिश हो रही है, और बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर बारिश हो ही नहीं रहे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं बड़ी तत्परता से। लेकिन बारिश आती है तो कुछ सुहावना मौसम कहते हैं, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो बुराइयाँ भी लेकर आती हैं, कुछ परेशानियाँ भी लेकर आती हैं।
0: जैसे कि
1: बारिश का मौसम सुहाना लगे, फर्नीचर है और लकड़ी के फर्नीचर है ख़ास तौर से, उसमें कई बार दीमक लग जाता है, आपने शुरुआत में कहा था, और कई बार दरवाजे कड़े हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं, जो चर्र की आवाज़ करते हैं, चर्र चूँ, और अगर आप गहरी नींद रात को सो रहे हो और कोई उठे और दरवाज़ा खूब ज़ोर से आवाज़ करे तो आपकी नींद भी बाधित होती है।
0: हाँ,
1: तो इसलिए इनकी देखरेख करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लीजिए लकड़ी की अलमारी ठीक से बंद ना हो रही हो, दराज अटकने लगे, चिपकने लगे, और हमारे सोफे में से अलग सी गंध आने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि बाहर की नमी का असर हमारे फर्नीचर पर होने लगा है, और किसी को बुलाकर किसी मिस्त्री को बुलाकर आपको उसे ठीक करवाना चाहिए,
0: ठीक भी कराना चाहिए। और कई बार ममता जी हम परेशान हो जाते हैं कि ये फर्नीचर क्यों इस तरह फूलने लग जाते हैं, तो छोटी छोटी सी बातें कुछ ऐसे कारण है, जैसे कि हवा में नमी बढ़ जाती है, लकड़ी उसे जल्दी सूख लेती है और इसलिए फर्नीचर फूलने लग जाते हैं या मुड़ जाते हैं। नमी में दरार, नमी की वजह से दरार और जॉइंट्स भी ढीले हो जाते हैं फर्नीचर के, और लंबे समय तक नमी रहने से लकड़ी में फंगस और दीमक लगने का रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार हमने ये भी देखा है ममता जी कि पॉलिश भी उतरने लग जाती है, लकड़ी की चमक थोड़ी फीकी सी पड़ जाती है, और अगर कमरे में वेंटिलेशन मतलब हवादार कमरा नहीं है तो वहाँ पे आप देखेंगे कि नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है अपने जो भी फर्नीचर हैं उस कमरे के।
1: और हमारी एक सखी है जिन्होंने कुछ नुस्खे भी बताए हैं कि इनकी हिफाजत के लिए फर्नीचर को हमेशा नमी और बारिश की बौछारों से दूर रखें, उन पर पॉलिश या वैक्स की कोट कराएं और नियमित रूप से सूखे कपड़े से पोंछती रहें। इन दिनों में फर्नीचर को कभी भी गीले कपड़े से ना पोंछें। सफाई के लिए हमेशा सूखे और मुलायम कपड़े का उपयोग करें ताकि नमी अंदर ना जाए, और अलमारी और दराजों में सीलन और फंगस से बचने के लिए एक जेल का नाम लिखा है उस जेल के पैकेट का उपयोग करें, या नेफ्थलिन की गोलियां या कपूर की गोलियां वहां पर रख सकती हैं। जबकि होता क्या है कि आपकी जो सहायिका है काम करने वाली आती है, एक कपड़ा गीला

0: करती है और पूरे घर में वो पोछ देती है, सारे अलमारी जितने टेबल हैं कुर्सियां हैं, तो वो नमी तो आएगी उसमें।
1: बिल्कुल सही कहा, और इन सब चीज़ों का भी ध्यान तो रखना ही है। साथ में जब बारिश बहुत ज़्यादा होने लगेगी तो मानसून के समय दीवारें, खासतौर पे बाहरी दीवारों में नमी बहुत जल्दी सोख लेती है, तो अगर आपकी अलमारी या बिस्तर दीवार से सटा हुआ है तो वो नमी सोख लेगा, तो उसे बस 2-3 इंच थोड़ा सा इन दिनों में जब बरसाती मौसम रहेगा तो उसे थोड़ा सा आगे खींच लीजिए, और इस छोटे से गैप के पीछे हवा का जब प्रवाह बन जाएगा तो लकड़ी में पानी जाने से रुक जाता है, और तेज बारिश के बाद एक बार फिर इसकी जांच आपको बीच बीच में करते रहना बहुत जरूरी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि लकड़ी एक प्राकृतिक सामग्री है जो मौसम के बदलावों, पानी और धूल के प्रति बेहद संवेदनशील होती है। इसकी चमक और मजबूती को बरकरार रखने के लिए आपको कुछ बुनियादी नियमों का पालन करना चाहिए। यहाँ लकड़ी के फर्नीचर की देखभाल के लिए सबसे महत्वपूर्ण सावधानियाँ और उपाय दिए गए हैं, और बहुत सारे उपाय इन्होंने लिखे हैं। गहरी सफाई के लिए कपड़े को गुनगुने पानी और माइल्ड सोप के घोल में भिगोकर अच्छी तरह से निचोड़ लें। साफ करने के तुरंत बाद सतह को सूखे कपड़े से पोंछना न भूलें। और इन्होंने लिखा है कि केमिकल से बचें और ब्लीच या अमोनिया युक्त रसायनों का सीधे लकड़ी पर उपयोग करने से उसकी फिनिशिंग पूरी तरह से खराब हो सकती है। धूप और तापमान से सुरक्षा, सीधी धूप से दूरी रखें, और भी कुछ सावधानियाँ इन्होंने बताई हैं जिससे आप अपने फर्नीचर को सुरक्षित रख सकते हैं।
1: बिल्कुल, और अब हम क्या कर सकते हैं?
0: गाना सुनवा सकते हैं। तो ये रहा गाना।

0: प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म का ये गाना सखियां और सखा सुन रहे थे, और हम बात गाने से पहले लकड़ी के फर्नीचर की कर रहे थे कि किस तरह से हिफाजत करें, लकड़ी के फर्नीचर जल्दी से खराब हो जाते हैं बारिश के मौसम में,
1: और तो जब बहुत शौकीन होते हैं कोई फर्नीचर इकट्ठा करने के, और बड़े कीमती और नक्काशीदार फर्नीचर अगर किसी ने रखा हुआ है घर में और ऐसे में कहीं पे कहीं कोई सीलन से दिख जाती है या कोई फफूंद दिख जाती है, तो वाकई में लगता है कि चैन हमारे मन को नहीं मिल रहा है ना।
0: बिल्कुल सही कह रही। और जो फंगस दिखाई देता है खास तौर से सोफा है, कुर्सियां हैं, डाइनिंग टेबल है, तो उसमें उसको जरूरी हो जाता है धूप दिखाना। लेकिन आप बताइए कि मुंबई जैसे शहर में जब बारिश होती है तो लगातार बारिश होती है ना, कई कई दिन तक, यहाँ तक कि 10-10 दिन तक धूप नहीं आती, धूप कहाँ से लाएंगे आप?
1: बिल्कुल लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ सूखे कपड़े से ही अपने फर्नीचर को साफ कीजिए। अगर आपके घर में जो हाउस हेल्प जो आती है, मदद करती है जो दीदी, उन्हें भी बिल्कुल आप सख्त उस वक्त तो हिदायत दे देनी चाहिए कि गीले कपड़े से बिल्कुल पोंछना नहीं है, सूखे और मुलायम कपड़े से अपने फर्नीचर को पोंछा जाए, क्योंकि धूप का पता नहीं है कब आएगी, खास तौर पे मुंबई जैसे शहर की अगर आप बात करते हैं तो। और
0: फर्नीचर के लिए सही कवर भी जरूरी होता है कि जैसे कॉटन या कोई ऐसा फैब्रिक जिसमें कि हवा आसानी से आ जा सके, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और समय समय पर कवर हटाकर हवा भी लगाते रहना चाहिए। और अलमारी या ड्रॉर को समय समय पर कुछ देर के लिए खुला छोड़ देना चाहिए, इससे नमी अंदर नहीं जमा होगी। कपड़ों और सामान को पूरी तरह सुखा कर ही अंदर रखना चाहिए। एक तरीका और है कि आप जब अलमारी और दराज खोलें तो तेज फैन चला दें, तो वो जो हवा होती है कृत्रिम हवा ही सही हवा लगेगी, तो जो नमी है वो बिल्कुल कम हो जाती है।
1: और बहुत ही ज्यादा अगर आपको लगता है कि घर में नमी सोख गई है तो हम डीह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ में कपूर की टिकिया आप अलमारी में रख लीजिए, या नीम की सूखी पत्तियां भी, कहीं कहीं लोग कहते हैं कि उसको रखने से भी जो अंदर अलमारी के अंदर खास तौर पे कोई सीलन आ गई है या नमी है वहां पे इकट्ठी हो गई है तो वो सब बाहर निकल जाती है या सोख लेता है वो। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम ध्यान रख कर सकते हैं। और देखिए ना, फर्नीचर कोई बार बार हमारे घरों में बनते नहीं है ममता जी, तो जो भी है जितने भी हमारे पास ये ज़रूरी सामान और कीमती चीज़ें, इनका हम ऐसी छोटी छोटी बातें अपना करके इनका हम ध्यान रख सकते हैं।
0: और दीपा जी, जब फर्नीचर की बात कर रही हैं, जो कुर्सियां होती हैं, टेबल होती हैं, डाइनिंग टेबल भी होता है ना घर पर, डाइनिंग टेबल पर बैठकर क्या करते हैं हम?
1: खाना खाते हैं।
0: तो आज किस खाने की बातें करने वाले?
1: आज हम चलेंगे पंजाब की तरफ, जहाँ पे कि भरवा पराठे के लिए ये प्रदेश प्रसिद्ध है। यहाँ पे अलग अलग तरह के, बहुत तरह के भरवा पराठे बनते हैं। हमारे सखियों ने लिख भी भेजा है कि ये किस तरह बनाया जाए, तो हम रेसिपी बताएं या एक गीत सुने पहले?
0: नहीं, पहले रेसिपी बताएंगे, क्योंकि एक हमारी सखी ने लिख भेजा है कि पेड़ा लस्सी पंजाब का एक प्रसिद्ध और समृद्ध प्रादेशिक पारंपरिक पेय है, जो मुख्य रूप से अमृतसर शहर में बेहद लोकप्रिय है। ये सामान्य लस्सी का एक बेहद शाही और पारंपरिक पंजाबी पेड़े मावा खोए की बनी मिठाई को एक साथ मथ कर तैयार किया जाता है। क्या बात है भाई, ये तो अलग तरह की रेसिपी पता चली है
1: जी। ये अलग तरह की रेसिपी है, लेकिन हमने अपने श्रोताओं से मांगी थी, सखियों से मांगी थी भरवा पराठों की रेसिपी। तो भरवा पराठे में जैसे हम शुरुआत में बात कर रहे थे, बहुत तरह के पराठे होते हैं, आलू का पराठा, गोभी का पराठा, पनीर का पराठा, मूली का पराठा। तो दो पराठों के बारे में पहले बता देते हैं हम। आलू का पराठा जैसे सभी जानते हैं लोकप्रिय है, सभी का पसंदीदा नाश्ता होता है। उबले हुए, मैश किए हुए आलू में प्याज, हरी धनिया, अजवाइन, मिर्च या आपके घर में जो पसंद आता है वो सब डाल के, मसाले डाल के ये मिश्रण तैयार करना है। और गेहूं के आटे तो जैसे घरों में लगता है वैसा ही लगेगा। इस मसाले को आटे के अंदर भर के लोई बना के हम जैसे साधारण पराठे बनते हैं उस तरह से इसे बनाना है। और इसी तरह से गोभी का पराठा भी बना सकते हैं आप। कद्दूकस की हुई ताज़ी गोभी ले लीजिए, उसमें मसाले, अदरक, लहसुन, ये सबको डालकर एक हल्का सा इसके भून लीजिए ताकि वो कच्चापन उसमें ना लगे और पराठा भी गीला ना हो, अंदर का जितना भी उसका मॉइस्चर है वो सूख लेता है बघार करने से। और इस तरह से एक और पराठा भी बना सकते हैं, पनीर का पराठा। तो कद्दूकस किए हुए पनीर, फिर लाल मिर्च, गरम मसाला, कसूरी मेथी, या इसके अलावा आप कोई भी मसाले इसमें डाल सकते हैं। प्रोटीन से भरपूर होता है ये वाला पराठा, जो कि पंजाब में बहुत प्रसिद्ध है।
0: और मटर का पराठा

0: पराठा भी बहुत प्रसिद्ध है
1: जी,
0: जो मटर, हरी मटर को अच्छी तरह से पहले तो छिलका निकाल के उसको धोकर और बॉईल कर लें, उबाल लें, और उबालने के बाद उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसको मैश कर लें या फिर मिक्सी में उसको क्रश कर लें, क्रश करके आटे में मिला लें। दूसरा तरीका ये होता है कि उसको मैश करके थोड़ा सा कढ़ाई में भून लें ताकि उसकी जो पानी होता है निकल जाए, और उसमें जो भी लहसुन अदरक प्याज हरा धनिया हरी मिर्ची डालकर आटे में, आटे की लोई बना के उसमें भर लें, वो भरवा पराठा जैसा कि हमने कहा ही है, तो तवे पर सेक लें। पराठा बनाने का तरीका तकरीबन एक ही होता है, पर स्वाद बिल्कुल अलग हो जाता है। तो हमारी जो सखियाँ और सखा सुन रहे हैं, हमें लगता है कि बनाएंगे, आजमाएंगे और बताएंगे हमें, और फिर किसी दिन किसी और प्रदेश के व्यंजन की हम बात करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं गाने की, सुनवा रहे हैं ये गाना।

0: मासूम फिल्म का गाना था, आरती मुखर्जी की आवाज़, गुलजार के बोल थे, राहुल देवबर्मन का संगीत था। और अब घड़ी की ओर देख रहे हैं दीपा जी, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: नमस्कार। इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: आपका बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार.
1: थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. ये मेरी खुद किस्मती है कि मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ और इतने लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है. थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी.
0: क्या बात है डॉक्टर साहब. और विविध भारती के स्टूडियो में आप आए हैं तो हमें ये पता चला है कि आप गानों के बड़े शौकीन हैं, संगीत से भी प्यार करते हैं. तो एक सवाल हमारा ये है कि विविध भारती के स्टूडियो में आपको आकर एहसास कैसा हो रहा है?
1: पुरानी यादें ताज़ा हो रही है
0: जी.
1: उस जमाने में विविध भारती ही एक ऐसी चैनल थी जिसके द्वारा हम अच्छे अच्छे गाने सुनते थे. इवन इन मेडिकल प्रोफेशन जब हम थक जाते हैं, स्ट्रेसफुल रहते हैं, यही रेडियो की आवाज़,
0: क्या बात,
1: यही आप लोगों की आवाज़ और यही अच्छे गाने हमें कुछ एक रिलैक्सेशन देते हैं और अगली चैलेंजेस के लिए वापस तैयार कर देते हैं. सो विविध भारती एक ऐसी संस्था है. इतने सालों से हम विविध भारती के बिना कभी नहीं नहीं सकते हैं और आज भी ये देख के बहुत खुशी होती है कि इतने कॉम्पिटिटिव जमाने में विविध भारती ने भी इतना ही प्रोग्रेस किया है कि अभी भी वो इतनी ही पॉपुलर संस्था है. और कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है.
0: क्या बात है डॉक्टर साहब. हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं. तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण. तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है. तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
1: राइट. हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
0: जी.
1: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
0: जी.
1: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
0: जी.
1: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहाँ बनी रहती है
0: जी.
1: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है. सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं. सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं. लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है. सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
0: जी. तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा. तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक, इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है.
1: राइट. सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है ये गलत बात है और ये मिथ है. आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं. दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
0: जी.
1: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
0: जी, जी.
1: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं. लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
0: हाँ.
1: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है.
0: बिल्कुल.
1: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
0: जी.
1: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है. सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
0: जी.
1: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा, ये गलत बात है। और

0: अननेसेसरी उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया, ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है।
1: जी,
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं।
1: जी,
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है, उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी जी,
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है,
1: जी,
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है।
1: जी जी,
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं।
1: जी,
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी जी,
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही, ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं।
1: जी,
0: जैसे डायबिटीज,
1: यस,
0: जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी जी जी,
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं।
1: जी,
0: और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी जी, तो टेस्ट किस तरह के होते हैं, मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को।
1: जी जी,
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सीवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है।
1: जी,
0: बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है। यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है।
1: जी,
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी,
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण हैं, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी,
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है। सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है।
1: ओके,
0: बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं।
1: जी जी,
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट, कल ऑपरेशन कर दीजिए। सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं। इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना है।
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी। और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती है कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं। तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है।
1: क्या बात है।
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है। सो ऊपर वाले को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
1: दो आंखें बारह हाथ,
0: दो आंखें बारह हाथ।
1: क्या बात है, सुनते हैं। बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है, सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं
0: जी,
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले जो हमको काम दिया है

0: वो कैसे अच्छी तरह से करें वो हमारी इच्छा रहती है। सो बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है।
1: जी जी।
0: लेकिन हम भगवान नहीं है, हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
1: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
0: राइट। सो प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना
1: जी,
0: या
1: जी।
0: तो ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। सो पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस। आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है, प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवा से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है, जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और फाई रिडक्टेस इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
1: जी।
0: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी।
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है जिसे हम यूरोडायनामिक्स कहते हैं।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की, यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
1: जी जी।
0: सो कुछ केसेस में हमें स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
1: जी।
0: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
1: जी।
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बड़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रिज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सकें और पेशेंट को राहत दे सकें, ये कोशिश रहती है।
1: जी।
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं।
1: जी, जी।
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीजन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं।
1: जी, जी।
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
1: जी।
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे नई नई टेक्निक काफी उसका प्रचार हो रहा है।
1: जी, जी।
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है, और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल ये जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए, क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि अरे हमें दो तीन दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट्स क्वाइट ऑल राइट। जो स्टैंडर्ड ऑपरेशन है जिसे हम TORP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही काफी

0: भी प्रोस्टेट रही तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है
1: जी,
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था वो अब नहीं रहा है, पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही दो दिन के लिए एक दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें।
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की आवाज।
0: किशोर कुमार की आवाज, क्या गाना है
1: जी। सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सब को भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहाँ तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट

0: बढ़ता है। सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है वो किसी को पता नहीं है।
1: जी जी।
0: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है
1: जी।
0: क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है
1: जी।
0: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है
1: जी। लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो वैसे भी नुकसान
0: जरूर,
1: है तो
0: जरूर।
1: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
0: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है
1: जी।
0: स्मोकिंग इज डेफिनेटली वन फैक्टर, कुछ चीजें जेनेटिक्स है, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं
1: जी। जी, यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है?
0: सो जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना
1: जी।
0: ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए
1: जी, जी।
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। सो ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है। जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है
1: जी।
0: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है
1: जी। और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं इसके?
0: सो प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहाँ इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस जैसे हम कहते हैं
1: जी हाँ।
0: कभी कभी वहाँ पस जमा होता है जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। सो ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है
1: जी जी।
0: सो इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ये बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है
1: जी। तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है
1: जी।
0: एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है
1: जी।
0: आप बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी में और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते, ये एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या हो जाती है। सो

0: यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूनिट जाने की इच्छा होने लगती है. सो साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है तो दोनों चीज होती है. साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है.
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े That's हुए right. हैं. तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए. कौन सा गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो.
1: ब्लैक पेंसिल काफी का गाना.
0: जी जी, रोमांटिक गाना है जी, लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है.
1: जी जी. डॉक्टर साहब, आप आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे. तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं, अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है. लेकिन एक जमाना था गाते थे
1: जी.
0: और यस, म्यूजिक इज सच अ सूथिंग थिंग कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है.
1: जी जी.
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी किडनी ट्रांसप्लांट में, हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है.
1: जी.
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरेपी भी देते हैं. सो म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस.
1: जी जी.
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है.
1: जी. तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में सोचेंगे नहीं,
1: बंद हो जाएगा. जी बिल्कुल. तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का.

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है, तो ये क्या वजह हो सकती है और क्या कुछ सावधानी रखें कि इस स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट, सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना ज़रूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है और ज़्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं
0: जी।
1: दूसरी बात लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे, रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज़्यादा यूरिन जमा हो के वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज़्यादा यूरिन रात को बनाती है और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं, जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है। सो काफ़ी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है वैसा नहीं है, एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफ़ी बाकी भी ऐसे कॉजेज है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं। कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं, सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
0: जी, जी।
1: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होकर आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है
0: जी, जी।
1: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं, इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
0: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
1: सो यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं
0: जी।
1: जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफ़ी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है, और जब ज़्यादा यूरिन जमा होने लगता है तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है
0: जी।
1: जब एक समय में खाली नहीं होती है तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है, ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफ़ी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल
0: जी।
1: कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए
0: जी।
1: सो और फोर्थ इन्फेक्शन विच इज़ वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफ़ी अलग अलग कारण हैं लेकिन ये कॉमन कारण है
0: जी।
1: और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है और लेडीज में ये काफ़ी इंसिडेंस काफ़ी ज़्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो जैसे मैंने बताया कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस कि काफ़ी लोग मानते हैं कि बहुत पानी पीना चाहिए, सच बात है पानी पीना ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी।
1: तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफिन या कॉफ़ी और टी से होता है उसका प्रमाण कम करना ज़रूरी हो जाता है
0: जी।
1: और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकें। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
0: जी, तो डॉक्टर साहब आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए, क्या वजह हो सकती है, महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए।
1: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है
0: जी,
1: बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है
0: जी।
1: दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण है, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है। द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: देयर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है। सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफ स्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस कम हो जाए वो पहले कोशिश करनी है
0: जी।
1: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है, और थर्ड फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं
0: जी।
1: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है
0: जी। जी,
1: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण

0: चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज़्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं, क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं।
0: ओके।
1: और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है, सो ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में
0: जी।
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयाँ ऐसे यूज़ करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी जी, और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है, तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना ज़रूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है
0: जी।
1: क्योंकि कभी कभी कहाँ से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है
0: जी।
1: सो ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं
0: जी। इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी हैं कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: सो ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि ये सही नहीं है
0: जी।
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है
0: जी।
1: हर पेशेंट वेदर इज मैन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है
0: जी।
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है
0: जी।
1: सो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है
0: जी। बिल्कुल,
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ ऑल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्थी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो।
0: बिल्कुल,
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनी बडी हेल्थी सेक्सुअल लाइफ इज इम्पॉर्टेंट। सो ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं
0: जी। बिल्कुल, हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है, और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पर ऐसी स्थितियाँ बहुत सारी आती हैं, तो आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जाँच जरूर करवाएं,
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है
0: जी।
1: कुछ चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन इससे शर्म के मारे में कि ये बात हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए
0: जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज, कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं, कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता है, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके।
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों

0: से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं
1: जी।
0: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं
1: okay.
0: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक न हो जाए
1: जी।
0: सो ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है
2: जी। दोस्तों सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

नमो ऐप और मायगव पोर्टल के जरिए सुझाव दिए जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 में प्रदेश में सेमी कंडक्टर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना और इंदौर के सुपर कॉरिडोर और भोपाल में अत्याधुनिक आईटी पार्क विकसित किए जाने की घोषणा की। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए आज से दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान का तीसरा चरण शुरू हो गया है। इस अभियान में भोपाल के 480 गांवों और 15 वार्डो में 6,330 पशुपालकों से संपर्क किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल एसआईटी से जांच संबंधी स्थिति रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है और मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में 16 जुलाई से नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है, जिससे तेज बारिश की संभावना है। आज 22 जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन सहित कई जिलों में धूप खिली रही। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। अब युवा श्रोता सुने अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी, प्रस्तुति आकाशवाणी भोपाल की है।
1: दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम युववाणी में और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त प्रियंका लाला। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जल संरक्षण और युवा दायित्व विषय पर और साथ ही चर्चा करेंगे डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म के बारे में। और दोस्तों, साथ ही हमारे युवा साथियों के लिए होगी रोजगार सूचना भी। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस गीत के साथ।

दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन हमारे घर के नल में पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? न खाना बन पाएगा, न नहाना होगा और न ही रोजमर्रा के दूसरे काम होंगे। दोस्तों, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि पानी हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, पृथ्वी का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से सिर्फ 97% पानी खारा है। पीने योग्य मीठा पानी बहुत ही कम है, इसलिए हमें आवश्यकता है जल संरक्षण की। दोस्तों, अक्सर लोग सोचते हैं कि जल संरक्षण सिर्फ सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन जल संरक्षण की जिम्मेदारी हम सबकी है और इसकी शुरुआत हम अपने घर से कर सकते हैं। दोस्तों, आगे भी हमारी चर्चा जारी रहेगी, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, किसी भी समाज में बदलाव की शुरुआत अक्सर युवाओं से होती है। आज का युवा नई सोच रखता है, नई तकनीक अपनाता है और लोगों तक अपनी बात आसानी से पहुंचा सकता है। अगर युवा चाहें तो अपने घर, कॉलेज और आसपास के लोगों को पानी बचाने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं, जैसे वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में लोगों को जानकारी देकर और पानी के महत्व के बारे में लोगों को बताकर। इससे लोगों को जल संरक्षण के लिए प्रेरणा भी मिलेगी। अगर हर युवा यह तय कर ले कि वह अपने घर में पानी की बर्बादी नहीं होने देगा तो लाखों परिवारों की आदतें बदल सकती हैं। अगर हर छात्र अपने कॉलेज में जल संरक्षण का संदेश फैलाए तो पूरा परिसर जागरूक हो सकता है, यानी एक जागरूक युवा हजारों लोगों को प्रेरित कर सकता है। दोस्तों, याद रखें कि अगर हम आज पानी बचाएंगे तभी हमारा कल सुरक्षित रहेगा।

दोस्तों, आइए अब चर्चा करते हैं एक महत्वपूर्ण विषय पर जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म की। दोस्तों, डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म आपको आप सभी को सुनने में नया लग रहा होगा, लेकिन इसका मतलब बहुत आसान है। डिजिटल डिटॉक्स यानी कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और लगातार आने वाले नोटिफिकेशन से दूरी बनाना। और डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म यानी ऐसी यात्रा जहां कुछ समय के लिए मोबाइल, लैपटॉप, सोशल मीडिया और इंटरनेट से दूरी बनाकर प्रकृति, परिवार और स्वयं के साथ समय बिताया जाए। मतलब कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन दुनिया से थोड़ा ब्रेक लेके असली दुनिया और प्रकृति से दोबारा जुड़ने का मौका। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि हम घूमने कहीं भी जाते हैं, हमारा आधा समय अच्छी फोटो लेने और उसे पोस्ट करने में ही निकल जाता है। कई बार हम खूबसूरत जगहों का आनंद लेने के बजाय सिर्फ कैमरे की स्क्रीन ही देखते रह जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप किसी पहाड़ी गांव, जंगल, नदी किनारे या शांत प्राकृतिक जगह पर घूमने गए हैं। सुबह पक्षियों की आवाज से आपकी नींद खुलती है, मोबाइल की घंटी नहीं प्रकृति की मधुर ध्वनि सुनाई देती है। आप योग करते हैं, टहलते हैं, स्थानीय लोगों से मिलते हैं, उनका खान पान और संस्कृति जानते हैं, शाम को डूबते सूरज को देखते हैं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन से नहीं अपनी आंखों से। यानी ये एक ऐसा सफर है जो जहां नो नेटवर्क जोन ही आपका सबसे बड़ा कंफर्ट जोन बन जाता है। और दोस्तों, यही है डिजिटल डिटॉक्स का असली अनुभव। दोस्तों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि क्या इसके लिए कोई महंगे रिसॉर्ट में जाना ही जरूरी है, तो बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों, आप अपने शहर के पास किसी पार्क, झील, जंगल, गांव या पहाड़ी क्षेत्र में एक दिन का डिजिटल डिटॉक्स कर सकते हैं। हमारे मध्य प्रदेश में ही देख लीजिए, पचमढ़ी के घने जंगल, सतपुड़ा के शांत नज़ारे या अमरकंटक की वादियों में जब भी आप जाते हैं और फोन को स्विच ऑफ करके अपने बैग में डाल देते हैं, तो वो जो सुकून मिलता है, बस यही है डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म। दोस्तों, हमारी चर्चा आगे भी जारी रहेगी, पर उससे पहले आइए सुनते हैं ये की।

दोस्तों आइए अब जानते हैं डिजिटल डिटॉक्स टूरिज्म के महत्व के बारे में। दोस्तों आज के युवाओं पर पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं, करियर का दबाव पहले से ही कहीं ज्यादा है। ऐसे में अगर हम कुछ समय डिजिटल दुनिया से दूर रहें तो हमारा मन शांत रहता है, हमारे ध्यान लगाने की क्षमता भी बढ़ती है, हमारी रचनात्मक सोच विकसित होती है, समय का सही उपयोग होता है और सबसे जरूरी बात, हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ वास्तविक समय बिता सकते हैं। और यही कारण है कि आज कई लोग अपनी छुट्टियों में डिजिटल डिटॉक्स को प्राथमिकता दे रहे हैं। दोस्तों तकनीक हमारी सबसे बड़ी ताकत है, हमें उससे दूर नहीं जाना है बल्कि उसका संतुलित उपयोग करना है। याद रखिए, छुट्टियां सिर्फ नई जगह देखने के लिए नहीं होती बल्कि खुद को फिर से खोजने का एक अवसर भी होती है।

दोस्तों, कार्यक्रम में अब समय हो गया है रोजगार सूचना का। रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने टेक्नीशियन ग्रेड 1 और टेक्नीशियन ग्रेड 3 के कुल 6,557 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। ITI, डिप्लोमा या संबंधित तकनीकी योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी 29 जुलाई 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। चयन कंप्यूटर आधारित परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार विस्तृत अधिसूचना एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए rrbapply.gov.in तथा rrbcdg.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी को आज का युववाणी कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा और इन विषयों पर कुछ नई जानकारी भी जरूर मिली होगी। इसी के साथ मुझे आपकी रेडियो साथी प्रियंका लाला को दीजिए इजाजत।

अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कार्यक्रम युववाणी। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5:30 हुए हैं श्रोताओं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ गैर फिल्मी गीत और संगीत। पहला गैर फिल्मी गीत सुनिए, कलाकार प्रकाश पनेरकर की आवाज में, शब्द रचना शायर दानिश अलीगढ़ी की है।

0: पुलिस।
1: मिस सीमा
0: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए वरना घर आ जाएंगे।
0: क्यों, लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
0: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 बन जाओगे।
0: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
0: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
2: हेलो मम्मा।
3: RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए चित्रा सिंह की आवाज में गैर फिल्मी गीत। शब्द रचना सुदर्शन फाकिर की है, संगीत है जगजीत सिंह का, एल्बम का नाम है समवन समवेयर।

श्रोताओं, कार्यक्रम संगीत सरिता के अंतर्गत अब आपको सुनवा रहे हैं सविता साथी की आवाज में गैर फिल्मी गीत। शब्द रचना कृष्णा राघव की है, संगीत निर्देशन मोमिन खान का है, एल्बम का नाम है चलो यूं ही सही।

श्रोताओं, अभी जो गैर फिल्मी गीत आप सुन रहे थे वो था एल्बम चलो यूं ही सही से, सविता साठी की आवाज में। कृष्णा राघव ने इस गीत को लिखा था, संगीत निर्देशन मोमिन खान का था। और इसी गैर फिल्मी गीत के साथ कार्यक्रम संगीत सरिता को अभिनकर

हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 6 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों का अनुप्रसारण।

समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि नागरिकता निर्धारण या किसी व्यक्ति को विदेशी घोषित करने की प्रक्रिया निष्पक्ष होनी चाहिए और इसके लिए उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। न्यायालय ने असम के विदेशी न्यायाधिकरणों से विदेशी घोषित किए गए 27 लोगों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए ये बात कही। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने 27 मामलों में गुवाहाटी उच्च न्यायालय और विदेशी न्यायाधिकरणों के आदेशों को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने अयोध्या राम मंदिर में दान के कथित गबन मामले में उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष जांच दल से जांच संबंधी रिपोर्ट सौंपने को कहा है। न्यायालय ने इस मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को इस मामले में 3 सदस्यीय विशेष जांच दल का गठन किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति

0: रोबोटिक मशीनों की सहायता से निर्मित देश का पहला एक्सप्रेसवे भी है। इस एक्सप्रेसवे से लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा का समय घटकर केवल 35 से 45 मिनट रह जाएगा। दोनों शहरों के बीच कार से यात्रा करने पर 275 रुपए टोल टैक्स लगेगा। एक्सप्रेसवे पर दोपहिया वाहनों की अनुमति नहीं है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेजी से विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन को आज रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी और सैनिक स्कूलों के बारे में जानकारी दी। एनसीसी के राष्ट्र निर्माण में योगदान की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत कैडेट विनियम कार्यक्रम को राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने की एक उत्कृष्ट पहल बताया। उन्होंने नशा मुक्त भारत अभियान और स्वच्छ भारत अभियान सहित एनसीसी की सामुदायिक सेवा पहलों की भी प्रशंसा की। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हुर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। हुर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान द्वारा किए गए हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन की लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर ही सिमट गई। भारत ने अपनी दूसरी पारी में 7 विकेट पर 341 रन बनाकर समाप्त घोषित कर दी थी। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विवेक भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम तराने नए पुराने। अगला गीत सुनिए कुमार सानू की आवाज में। गीत को लिखा है समीर ने, संगीत है नदीम श्रावण का, फिल्म का नाम है तुमसे अच्छा कौन है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कार्यक्रम में अगली आवाजें हैं हरिहरन और कविता कृष्णमूर्ति की। गीत के बोल लिखे हैं महबूब ने, संगीत है ए आर रहमान का और फिल्म का नाम है बॉम्बे।

0: सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल
1: जाने
0: सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर सदाबहार नगमे।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम।

आइए सुनते हैं अगला गीत, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में। गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और फिल्म का नाम है अपनापन।

0: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अभी आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है FM बैंड 102.6 MHz पर। शाम के 6:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार गीत। कार्यक्रम के अंतर्गत पहला गीत सुनिए। फिल्म का नाम है प्यासा। हेमंत कुमार की आवाज़ है, साहिर लुधियानवी की शब्द रचना है, ST बर्मन का संगीत है।
1: कैसे लोग थे जिनके प्यार को प्यार मिला।
2: भाई बहुत खूब गोई बाबू, बड़ा सफर नवाज है घर आपका। नौकर चाकर भी शायरी करते हैं।
3: मियां, शायरी सिर्फ दौलतमंदों की जागीर नहीं। तुम कुछ कह रहे थे बरखुरदार, चुप क्यों हो गए? कहो कहो।

श्रोताओं, कार्यक्रम में आप सुनिए गीता दत्त की आवाज में गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, एस डी बर्मन द्वारा संगीतबद्ध, फिल्म का नाम कागज के फूल।

0: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। अभी तक होटल के कमरों पर जीएसटी की 4 दरें लगती हैं। 1,000 रुपए से कम कीमत वाले होटल रूम पर 0 जीएसटी है, जबकि 1,000 से 2,499 रुपए तक के होटल के कमरे पर 12% जीएसटी लगता था। 2,500 से लेकर 7,499 रुपए तक के होटल कमरे पर 18% टैक्स लगता है। इससे ज्यादा कीमत का होटल रूम है तो उस पर 28% जीएसटी लगता है। लेकिन अब होटल के कमरों पर सिर्फ 2 ही रेट लगाए जाएंगे। 7,500 से कम कीमत वाला कमरा है तो 5% और ज्यादा है तो 12% जीएसटी देना होगा।
1: श्रोताओं, समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में एक और फिल्मी गीत हम शामिल कर रहे हैं। आंधी फिल्म से ये गीत हमने लिया है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। शब्द रचना गुलजार की है, संगीत है एस टी बर्मन का।

सुन रहे थे कार्यक्रम सदाबहार गीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। शाम के 6:45 हो चुके हैं। अब सुनिए कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत बुंदेली लोकगीत और लोक संगीत। कार्यक्रम में पहला लोकगीत आपको सुनवा रहे हैं, लोकगीत कलाकार हैं केशव दास सुलेरे।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: सागर की साप्ताहिक गतिविधियों पर केंद्रित रेडियो पत्रिका गागर में सागर सुनिएगा प्रति रविवार सुबह 7:20 से, जिसमें आप जानेंगे सागर की समसामयिक हलचल के बारे में और मिलेंगे कुछ उभरती और कुछ अनसुनी प्रतिभाओं से, और माटी की महक बिखेरते हुए होगा सिलसिला कुछ मनोरंजन का। तो सुनना ना भूलिएगा हमारी रेडियो पत्रिका गागर में सागर प्रति रविवार सुबह 7:20 से।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम लोकरंग के अंतर्गत अब आपको सुनवा रहे हैं प्रभु सिंह अनुज की आवाज में मल्हार गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकरंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, बस कुछ ही पलों में सुनिएगा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
2: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है। और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है। और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
1: श्री नितिन गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
3: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा। ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति

0: राष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन के स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड दौरे पर हैं। भारत और जापान ने मुक्त, खुले और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक विचार विमर्श किया। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। होर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। इस दौरान पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है, एफएम बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 7:05 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। आपको जानकारी देंगे आज की प्रसारण सभा के शेष कार्यक्रमों की और साथ ही कल की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। शुरुआत करते हैं आज की सभा के शेष कार्यक्रमों की जानकारी के साथ। अब से कुछ ही देर के बाद 7:10 से आप सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण। 7:20 से कार्यक्रम लोकरंग, 7:30 से भोपाल केंद्र से ग्राम सभा, रात 8 बजे से कार्यक्रम चित्रपट संगीत, 8:20 से कार्यक्रम संगीत सरिता, रात 8:45 से आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुने का समाचार संध्या का अनुप्रसारण, रात 9 बजे से समय होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत के प्रसारण का। आज रात 9:30 से आप सुन सकेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे। रात 11 बजे से सुनिएगा दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार और 11:05 से अंग्रेजी में समाचार का अनुप्रसारण। आज की प्रसारण सभा का समापन रात 11:10 पर किया जाएगा।

आकाशवाणी के सागर केंद्र से कार्यक्रम विवरण आप सुन रहे हैं और कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत अब आपको जानकारी दे रहे हैं कल यानी मंगलवार दिनांक 14 जुलाई सन 2026 की प्रसारण सभा के कार्यक्रमों की। हमेशा की तरह प्रसारण सभा का आरंभ हम करेंगे प्रातः 5:53 पर। सुबह 6 बजे से हिंदी में समाचार का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से आप सुन सकेंगे। कल

0: 6:05 से भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना का प्रसारण किया जाएगा। 6:25 से कार्यक्रम विवरण आप सुन सकेंगे। कल सुबह 6:30 से सुनिएगा श्री रामचरित मानस का संगीतमय पाठ ए हरिहरण के गायक स्वर में। सुबह 6:40 से कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। 6:55 से दिल्ली केंद्र से संस्कृत में समाचार का अनुप्रसारण। सुबह 7:00 से कार्यक्रम सुबह सुबह और 7:05 से कृषि संकेत। कल सुबह 7:10 से भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे। 7:20 से समय होगा कार्यक्रम मन चाहे गीत का। 7:45 से सुनिएगा कार्यक्रम संगीत सरिता। 8:00 से दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण हम करेंगे। 8:15 से कार्यक्रम लोक संगीत का समय होगा। कल सुबह 8:30 से आप सुन सकेंगे पॉडकास्ट विद आकाशवाणी सागर। विषय होगा स्कूली शिक्षा में नवाचार और भविष्य की संभावनाएं। गेस्ट धनेंद्र शर्मा, भेंटकर्ता दीपक निषाद। कल सुबह 9:00 से सुनिएगा मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। 10:00 से भोपाल केंद्र से जिले की चिट्ठी। 10:05 से शास्त्रीय संगीत पर आधारित कार्यक्रम राग रागिनी। 10:30 से कार्यक्रम आपकी पसंद और 11:00 से NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 11:30 से मुंबई केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम जारी रहेंगे। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा भोपाल केंद्र से प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
2: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू।
4: व्हाट? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो। स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
2: तू समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
4: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
5: कूल रहो।
6: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव बोले, प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा। दतिया उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में बीजेपी से आशुतोष तिवारी और कांग्रेस से घनश्याम सिंह ने भरा पर्चा। प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 15 जुलाई से शुरू होगा नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान। और मॉनसून की रफ्तार धीमी, 22 जिलों में आज हल्की बारिश के आसार। 16 जुलाई से नया सिस्टम होगा सक्रिय। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज भोपाल में एमपीटेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 3.0 का शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश टेक्नोलॉजी और हाईटेक निवेश का हब बन रहा है। देश विदेश की अग्रणी कंपनियों, निवेशकों, नीति निर्माताओं और शिक्षण संस्थानों की भागीदारी ने संकेत भी दिया कि आने वाले वर्षों में प्रदेश की विकास यात्रा तकनीक और नवाचार के सहारे नई ऊंचाइयों को छू सकती है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 178.70 करोड़ के निवेश से स्थापित 20 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण किया, जिनसे 1,229 नए रोजगार सृजित होंगे।
7: टेक ग्रोथ 3 कॉन्क्लेव के आज तीसरे शुभारंभ के अवसर पर मुझे इस बात की प्रसन्नता कि इस कॉन्क्लेव में 51 प्रकार की अलग अलग गतिविधियां संपन्न होगी। इन गतिविधियों के माध्यम से लगभग 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश और लगभग 35,000 रोजगार के अवसरों का एक मौका रहेगा। यह आयोजन मध्यप्रदेश को GCC सेमीकंडक्टर एवं डेटा सेंटर हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
6: इस दौरान लीड इंडिया फॉर गूगल प्ले और MPSDDC के बीच महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन का आदान

0: प्रदान भी हुआ। वहीं स्पेन के बार्सिलोना स्थित सबमर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पैट्रिक स्मिट सहित विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों को मध्य प्रदेश में इकाइयां स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अलॉटमेंट प्रदान किए गए। दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन के अंतिम दिन बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने नामांकन दाखिल किया। आशुतोष तिवारी का पर्चा भरवाने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और पूर्व गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भी आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, सपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज यादव मौजूद रहे। कांग्रेस के तत्कालीन विधायक राजेन्द्र भारती को भ्रष्टाचार के मामले में सजा सुनाए जाने के बाद उनकी विधायकी शून्य घोषित कर दी गई थी, जिसके बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। 30 जुलाई को दतिया सीट पर वोट डाले जाएंगे, जबकि 3 अगस्त को मतों की गणना की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। लोग टोल फ्री नंबर 1800117800 पर अपने सुझाव भेज सकते हैं। नमो ऐप और माईगोव पोर्टल के जरिए भी सुझाव दिए जा सकते हैं। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर SMS लिंक से सीधे प्रधानमंत्री को सुझाव भेजे जा सकते हैं। सुझाव भेजने की अंतिम तिथि 24 जुलाई है। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश की समुद्री रक्षा को मजबूत करने के लिए मात्र एक महीने में 4 नई पीढ़ी के स्वदेशी नौसैनिक प्लेटफॉर्म भारतीय नौसेना में शामिल किए गए हैं। इनमें शामिल नवीनतम जहाज INS महेंद्रगिरी है, जो स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया 6ठा नीलगिरी श्रेणी का स्टील्थ फ्रिगेट है। हमारे संवाददाता ने बताया कि INS महेंद्रगिरी को इस महीने की 11 तारीख को नौसेना में शामिल किया गया था। पेश है एक रिपोर्ट।
1: पिछले महीने के 21 तारीख को स्वदेश में डिजाइन और निर्मित 3 प्लेटफॉर्म INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये युद्धपोत प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए गए हैं और इन्हें वायु, सतह तथा पनडुब्बी रोधी अभियानों सहित बहुआयामी सैन्य अभियानों के लिए तैयार किया गया है। प्रोजेक्ट 17A भारतीय नौसेना का उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट कार्यक्रम है, जिसके तहत अगली पीढ़ी के 7 गाइडेड मिसाइल युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। उन्नत स्टेल्थ विशेषताओं और उच्च स्तर की स्वचालन प्रणाली से लैस ये युद्धपोत नौसैनिक युद्ध के साथ सभी आयामों में समुद्री अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। उच्च स्वदेशी कंटेंट के साथ निर्मित ये प्लेटफॉर्म आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को दर्शाते हैं और देश के रक्षा विनिर्माण तंत्र को मजबूत करते हैं। ये सामूहिक रूप से समुद्री सुरक्षा को सुदृढ़ करते हैं, ब्लू इकोनॉमी को समर्थन देते हैं और देश को एक अग्रणी समुद्री शक्ति के रूप में और मजबूत बनाते हैं। पल्लवी परमार के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
2: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों से बचाने और समाज में नशा मुक्ति के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों में नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान संचालित किया जाएगा। यह अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक चलेगा। जनसंपर्क अधिकारी राजेश ताहिमा ने आज बताया कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा सभी उच्च शिक्षण संस्थानों को अभियान के अंतर्गत समयबद्ध रूप से जागरूकता गतिविधियां आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में दुग्ध समृद्धि अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हुआ। शहडोल से हमारे संवाददाता ने बताया कि 18 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान में शहडोल जिले के 7,912 पशुपालकों से संपर्क कर उन्हें जागरूक किया जाएगा। दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए नस्ल सुधार, पशु पोषण और स्वास्थ्य की जानकारी दी जाएगी। उधर नर्मदापुरम जिले में 6 दिवसीय अभियान के दौरान नर्मदापुरम, बाबई, पिपरिया, बनखेड़ी, सुहागपुर, सिवनी, मालवा, केसला विकासखंड के 11,595 पशुपालक परिवारों तक विभागीय अमला पहुंचेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित अशोकनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प पूरा हो गया है। स्टेशन के नवनिर्मित स्वरूप का 17 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करेंगे। इससे पहले तैयारियों का जायजा लेने भोपाल रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी सोमवार यानी आज अशोकनगर पहुंचे और उन्होंने स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिला पत्रकार संघ ने केंद्रीय मंत्री और गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम संबोधित एक मांग पत्र डीआरएम को सौंपा। ज्ञापन में सबसे प्रमुख मांग अशोकनगर को इंदौर और नई दिल्ली से सीधी रेल सेवा के लिए रेल सेवा के जरिए जोड़ने की रही। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा वर्ष 2025 के राज्य और जिला स्तरीय पुरस्कारों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर अब 31 अगस्त 2026 कर दिया गया है। विभाग को पूर्व में समय सीमा के भीतर बेहद कम संख्या में आवेदन मिले थे, जिसके चलते जमीनी स्तर पर काम करने वाले वास्तविक हकदारों तक पहुंचने के उद्देश्य से आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार कुल 6 अलग अलग श्रेणियों में राज्य और जिला स्तर पर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें विजेताओं को 1,00,000 रुपए तक की सम्मान निधि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया जाता है। प्रदेश में मॉनसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है। प्रदेश के करीब 60% हिस्से में मॉनसूनी बादल छट गए हैं, जिसके चलते अगले 5 दिनों तक कहीं भी भारी या अति भारी बारिश की संभावना नहीं है। 16 जुलाई से एक नया सिस्टम सक्रिय हो सकता है। सीहोर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में पिछले 4 दिनों से मॉनसून की गति धीमी पड़ गई है, जिससे बारिश का दौर थम गया है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज सतना, रीवा, मऊगंज, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर सहित तमाम जिलों में अलीराजपुर में बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल के नाथू बरखेड़ा स्थित अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 28 जुलाई से सेना भर्ती रैली शुरू होगी। मंडला जिले को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से जिला योजना भवन में नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन समिति की बैठक आयोजित की गई। नीमच कलेक्टर हिमांशु चंद्रा ने ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की। राजगढ़ कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा ने समय सीमा की बैठक में अधिकारियों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जनहित से जुड़े मामलों, समय सीमा के प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खंडवा में रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से 16 जुलाई को महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड और 18 जुलाई को खान शामली वार्ड में विशेष रक्तदान शिविर आयोजित किया जाएगा। शिवपुरी में 14 जुलाई से दस्तक अभियान की शुरुआत होगी और 31 अगस्त तक यह अभियान चलेगा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: असली नोट से क्यों खेल रहा है?
1: ब्रो, ये फटा है। सुन, कटे फटे है पुराने नोट को
2: बैंक ब्रांच में एक्सचेंज कर सकते हैं।
1: वाओ, नया नोट मिलेगा?
3: हाँ, जिससे तू हमें पिज़्ज़ा पार्टी देगा।
2: आरबीआई कहता है, स्मार्ट बनो,
4: कूल रहो।

अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार का अनुप्रसारण आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। शाम के 7:20 हुए हैं। अब सुनिए कार्यक्रम लोकरंग। पहला लोकगीत आपको सुना रहे हैं, ये है शिव तमूरा भजन कमोद अहिरवार की आवाज़ में।

0: ये खुशबू मुझे दीवाना बना देती है।
1: वाओ जीजा जी, सो रोमांटिक।
2: ये मेरी नहीं, 287 मेरी चाय की खुशबू है। तन मन जगाए,
0: बात बन जाए,
2: 287 मेरी चाय।
3: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब सुनिए तमूरा भजन बाबा ननूलाल की आवाज में।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंग। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा भोपाल केंद्र से ग्राम सभा का अनुप्रसारण।

क्या हरि के भजन करो तुम दिन और रात, ए हरि के भजन करो तुम दिन

भैयारो अब अपन चर्चा करत हैं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी। सो भैयारो उचित किस्मों को चुनाव करियो और रासायनिक उर्वरकों को उपयोग प्रयोग करत समय खूब सावधानी राखियो। सावधानी में ही सुरक्षा है भैयारो। भैया बहनारो फसल अच्छी होबे इके लाने खाद उर्वरकों को डारबो बहुत जरूरी है। मनो भैयारो ज्यादा खाद नुकसान सोई पहुँचात है, ई बात को ध्यान राखियो। और आज अपन जय चर्चा कर रहे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में कौन कौन सी सावधानी रखने पड़ते हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की जांच करा लियो और उके बिना तो देखो जांच जब हो जाते तो खाद डरबी में नुकसान नहीं होती आए फसलों को। और खाद की मात्रा और समय को ध्यान रखियो। एक बार में पूरा खाद डरबी से पानी के संग बह जाते है सो फसलों को नुकसान होते। और खाद डरबी की तुरंत ही हल्की सिंचाई करियो ताकि धूप में खुलो छोड़बे से यूरिया हवा में न उड़े। तो देखो भैया अब यहाँ अपन चर्चा कर हैं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी के बारे में। उसे पहले सुनाते हैं लोक भजन डॉक्टर अरविंद सोनी की।

तो किसान भैया और अपन चर्चा कर रहे थे रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी। तो देखो रासायनिक खाद डारा समय आप सभी को भी सावधानी रखने हैं। हमारे कृषक भैया हरे भी अपनी भी सुरक्षा रखें, खाद डारा समय हाथों में दस्ताने पहने, मुंह पे गमछा बांधें और बच्चों से पशुओं से खाद देखो दूर रखें, ताकि देखो कोनो प्रकार की परेशानी न आवे, दुर्घटना ना होवे। और भैया हरो नाप तोल के खाद डारियो ताकि फसल हरी भरी रहे। अंधाधुंध खाद डारवे से मिट्टी की सेहत भी खराब हो जाता है और किसान भैयारों को फिर नुकसान होते है। सो भैयारों खाद फसल को खाना है, भोजन है, ये बात को ध्यान रखियो और पैदावार बढ़ाइयो और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में सावधानी रखियो। ठीक है भैयारों, और अब सुनाते हैं लोक भजन स्वर है रजनी अर्जरिया को।

किसान भैया बहन हरो, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना पे अपन चर्चा कर लेते हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की देखो बात कर रहे हैं। इस समय सोलर पैनल पे सूरज की रोशनी खूब ही पड़ रही है। भैया हरो, अपने अपने छतों पे सूरज से बिजली बनाओ और सूर्य घर योजना को खूब लाभ उठाओ। कैसे भैया हरो, छतों पे सोलर पैनल लग जावे से बहुत ही फायदा है। दिन भर पंखा भी चला सकते हैं, लाइट जला सकते हैं और बिजली को बिल तो लगभग खत्म हो जाते हैं। सो मानो और बिजली ज़्यादा बन जावे तो बिजली कंपनी खरीद ले है और उल्टे तुम्हें ही पैसा भी मिल है। सो हम तो जय कहें भैया, आए भी आप सबई की बढ़ है। और भैया हरो, ये योजना में सरकार सब्सिडी भी देते है और लोन भी आसानी से हो जाते है। और भैया हरो, फायदा तो देखो खूब होता ही है। सो हम तो जय कहें, देर ने करो और अपने घरों को रोशन करो। छत पर सोलर पैनल जरूर लगवा लियो और सूर्य घर योजना को खूब भरपूर लाभ उठाइयो। और आप सुनते हैं लोक भजन, स्वर है रेवाराम मेहरा को।

किसान भैया हरो, अब अपन पशुओं के बारे में चर्चा कर लियो। पशुओं को ध्यान रखियो, इस समय दिन में 3-4 बार पानी पिबैयो और आहार व्यवस्था नोनी रखियो और पशुशाला में साफ सफाई रखियो और मच्छरों से बचाव के लाने पशुशाला में नीम की पत्तियों को धुआं करत रहियो ताकि पशु स्वस्थ रहें, निरोग रहें। तो अब सुनाते हैं लोक भजन, स्वर है डॉक्टर नीता खरे को।

0: किसान भाई भैया हरो जायजात कल के कार्यक्रम बता दें। कृषि चर्चा में सुनियो मत्स्य बीज उत्पादन एवं संवर्धन, ग्राम सभा में संजय विरिया सुनियो फल बागीचों में समसामायिक कार्य, विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार बर्डे और ग्राम सभा कार्यक्रम में तय होते संपन्न।
1: आकाशवाणी भोपाल से अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम सभा। थोड़ी देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश।

श्रोताओं, ये गीत अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था जब वी मेट, उस्ताद राशिद खान की आवाज़ में ये गीत था। इरशाद कामिल ने इस गीत को लिखा था और संगीत प्रीतम का था। कार्यक्रम में अब सुनिए फिल्म शेफ से रघु दीक्षित की आवाज़ और संगीत निर्देशन में ये गीत अंकुर तिवारी का लिखा हुआ।

श्रोताओं, कार्यक्रम में शेफ फिल्म से रघु दीक्षित की आवाज में ये गीत अभी आपने सुना। अब आपको सुनवा रहे हैं बजरंगी भाईजान फिल्म से जुबिन नौटियाल की आवाज में गीत। नीलेश मिश्रा ने इस गीत को लिखा है, संगीत प्रीतम का है।

0: जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं बैठक में हेल्थ केयर की चीजों को सस्ता कर देश की बड़ी आबादी को राहत दी है। भारत के शुगर मरीजों के लिए रोजाना की जरूरत बन चुके ग्लूकोमीटर और स्ट्रिप्स पर जीएसटी की दरों को घटा दिया गया है। नजर के चश्मों को भी सस्ता किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि ब्रेस्ट कैंसर सहित अस्थमा के एडवांस इलाज में काम आने वाली कई दवाओं, थर्मामीटर और डायग्नोस्टिक किट्स पर भी टैक्स की दर कम की गई है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में अब आपको सुनवा रहे हैं पटियाला हाउस फिल्म से शफकत अमानत अली की आवाज में गीत। अन्विता दत्ता ने इस गीत को लिखा है, संगीत शंकर एहसान लॉय का है।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्रपट संगीत। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। रात के 8:20 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम संगीत सरिता।

श्रोताओं, ये गैर फिल्मी गीत अभी आपने सुना। गायक, कलाकार और संगीतकार थे पंकज उदास। शब्द रचना मुनीर की थी। एल्बम का नाम था आहट। कार्यक्रम में अब सुनिए एल्बम आपस की बात से। नसीम अजमेरी का लिखा हुआ ये गैर फिल्मी गीत। गायक, कलाकार और संगीतकार हैं भूपिंदर।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीत सरिता। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। बस कुछ ही पलों में सुनिएगा समाचार संध्या का अनुप्रसारण दिल्ली केंद्र से।
1: संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% की वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशिया अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनकी अमेरिका की व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीम लगातार सक्रिय है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्पेन सरकार के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा अर्थव्यवस्था, व्यापार और व्यवसाय मंत्री कार्लोस क्यूर्पो काबालेरो से मुलाकात की। श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी सहयोग बढ़ाकर भारत स्पेन आर्थिक साझेदारी मजबूत करने पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर भी विचार विमर्श किया। श्री गोयल आज से 5 दिन की स्पेन, बेल्जियम और फिनलैंड की यात्रा पर हैं। भारत और जापान ने स्वतंत्र, मुक्त और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। जापान की टोक्यो में आज भारत जापान रक्षा नीति वार्ता के 8वें दौर में दोनों देशों ने क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा स्थिति पर व्यापक चर्चा की। दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने भारत के रक्षा क्षेत्र में जापान के सहयोग की प्रशंसा की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने आज नई दिल्ली में पोलैंड के विदेश राज्य सचिव और आर्थिक विकास तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अवर राज्य सचिव से मुलाकात की। बैठक में दोनों पक्षों ने भारत पोलैंड रणनीतिक साझेदारी, राजनीतिक गतिविधियों, व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, संस्कृति, वैश्विक आतंकवाद और आपसी हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने की साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की। वियतनाम के फु कोक द्वीप के पास नौका दुर्घटना में जान गंवाने वाले 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज विशेष विमान से भारत लाए जाएंगे। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने बताया कि हवाई जहाज मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रात 9:30 बजे पहुंचेगा।

0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली की एक अदालत ने आज आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और 4N को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में दोषी ठहराया है। ताहिर हुसैन सहित कुल 11 आरोपियों के खिलाफ मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने 5 आरोपियों को दोषी पाया है। अदालत ने ताहिर हुसैन को शत्रुता भड़काने, दंगा, मारपीट, आपराधिक बल प्रयोग और हत्या के आरोपों में दोषी पाया। अंकित शर्मा के पिता रविंद्र कुमार ने प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की हत्या तत्कालीन आम आदमी पार्टी पार्षद हुसैन और अन्य लोगों ने की थी। 24 मार्च 2023 को अदालत ने हुसैन और 10 अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए थे। अयोध्या की एक अदालत ने श्री राम मंदिर के कथित दान चोरी मामले में सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए और बढ़ा दी है। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश प्रतिभा नारायण ने आरोपियों को 27 जुलाई को अदालत में पेश करने का आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने आज केंद्र सरकार को भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 के अंतर्गत बनाए गए नियमों को 2 सप्ताह के भीतर रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया। ये कानून देश के नागर विमानन ढांचे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। मामले की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से प्रवासी भारतीयों तक पहुंच बढ़ाने और नए जमा उत्पाद शुरू करने को कहा है। नई दिल्ली में बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में उन्होंने धन जुटाने की गति बनाए रखने पर भी बल दिया। इस दौरान बैंकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने वित्त मंत्री को रिजर्व बैंक की स्वैप सुविधाओं के अंतर्गत हुई प्रगति से अवगत कराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। उद्घाटन से पहले तीनों नेताओं ने उन्नाव में एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। इसके बाद वे इसी एक्सप्रेसवे से लखनऊ लौटे और सैनिक स्कूल में एक कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर करीब 4,850 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया गया। इनमें लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन, लखनऊ हरदोई राजमार्ग के एक हिस्से को 4 लेन का बनाने का कार्य का उद्घाटन तथा लखनऊ में एक फ्लाईओवर की आधारशिला रखना शामिल है। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तर प्रदेश में उद्योगों का और तेज विकास होगा।
1: कानपुर के पास ऐतिहासिक रूप से डिफेंस प्रोडक्शन की ये पुरानी विरासत है, जो कि अभी ब्रह्मोस मिसाइल की इंडस्ट्री जो यहाँ पर स्थापित हुई है, और मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि वह समय दूर नहीं है, कुछ ही महीनों के अंदर कुछ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लखनऊ के आसपास स्थापित होने जा रही है, और अब मुख्यमंत्री जी ने सहज रूप से उसकी अपनी स्वीकृति दे दी है।
0: श्री गडकरी ने लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे प्रदेश में संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी।
2: लखनऊ में बना हुआ ये एलिवेटेड 3-लेयर फ्लाईओवर ये विश्व के आकर्षण का केंद्र बनेगा, ये विश्वास मैं आपको देना चाहता हूँ। इस रोड में जो सर्विस रोड है वो भी हम बना रहे हैं, तो इसके ऊपर मैं मास रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑन इलेक्ट्रिसिटी ये तैयार करके दूंगा, जिससे एक कोने से दूसरे कोने कब पहुंचे पता नहीं चलेगा, ये भी शुरुआत इसमें करने की कोशिश करूंगा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा।
3: 63 किलोमीटर लंबे और 6 लेन वाले लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 35 से 45 मिनट तक रह जाने की उम्मीद है। इस पर टोल 275 रुपए होगा और दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों को चलाने की अनुमति नहीं होगी। AI आधारित गति नियंत्रण प्रणाली, हर 2 किलोमीटर पर आपातकालीन कॉल बॉक्स और 2 एकीकृत कंट्रोल रूम वाला ये एक्सप्रेसवे 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार के लिए डिजाइन किया गया है और इस पर कोई बैरियर नहीं है। इससे पहले अपने दौरे पर लखनऊ पहुंचे केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आधिकारिक आवास पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI और उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया और राज्य में चल रही और प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। सुशील चंद्र तिवारी।

0: आकाशवाणी समाचार लखनऊ।
1: भारतीय संचार निगम लिमिटेड BSNL ने वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में परिचालन से होने वाले राजस्व में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में BSNL की समीक्षा बैठक के बाद ये जानकारी दी।
2: प्रोविजनली वी आर लुकिंग एट ए 10% इंक्रीज।
3: प्रारंभिक तौर पर हम 2025-26 की पहली तिमाही की तुलना में 2026-27 की पहली तिमाही में आय में 10% की बढ़ोतरी का अनुमान लगा रहे हैं। पिछले वर्ष की पहली तिमाही में ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए थी। इस वर्ष की पहली तिमाही में हमने 4,418 करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है। ये लगभग 10% की बढ़ोतरी है। ये पूरी तरह से सेवाओं से प्राप्त आय है, इसलिए इसमें अन्य आय शामिल नहीं है।
2: अदर ऑपरेटिंग इनकम इज नॉट इंक्लूडेड।
1: इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4 अरब 14 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4 अरब 93 करोड़ डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88 अरब 76 करोड़ डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: नागालैंड के चूमो केदिमा जिले के शुखोबी के पास खोप नाला में एक संदिग्ध आईईडी विस्फोट में आज असम राइफल्स के एक जवान की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। पुलिस महानिदेशक रूपेन शर्मा ने बताया कि अधिकारियों ने घटना की जांच शुरू कर दी है। इस बीच नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य कायरतापूर्ण कृत्य बताया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका और ईरान ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे पश्चिम एशिया में क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंता पैदा हो गई है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक जहाज नहीं गुजरा है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ने कहा है कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इनमें वायु रक्षा प्रणालियों, तटीय रडार केंद्र, मिसाइल और ड्रोन ठिकाने तथा छोटे नौसैनिक पोत शामिल हैं। अमेरिका का कहना है कि इस अभियान में पहली बार एक तरफा हमला करने वाले समुद्री ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया। अमेरिका के अनुसार ये कार्यवाही ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमले के जवाब में की गई। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू मध्य पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने ईरान द्वारा संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन करने की निंदा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने पिछली रात समझौते का उल्लंघन किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका ने रात भर चले हमलों में ईरान के उपकरणों को नष्ट कर दिया है। इससे पहले ईरान ने अमेरिकी हमलों की निंदा करते हुए अमेरिका पर जलडमरू मध्य में सुरक्षा व्यवस्था में हस्तक्षेप करके वैश्विक वाणिज्यिक जहाजों के आगमन को बाधित करने का आरोप लगाया था। समाचार कक्ष से अमीशा।
1: भारत ने एकमात्र महिला क्रिकेट टेस्ट में इंग्लैंड को 270 रन से हरा दिया है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के 457 रन के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम चौथे दिन केवल 186 रन पर सिमट गई। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बना ली है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाजों और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई है। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की है। मौसम विभाग ने बिहार और ओडिशा में कल मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में भी कल तेज वर्षा हो सकती है। असम के कई जिलों में बाढ़ का प्रकोप जारी है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन में राज्य के कई जिलों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक साप्ताहिक कार्यक्रम में जल सुरक्षा और भूजल पुनर्भरण के लिए वर्षा जल संचयन विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। जल शक्ति मंत्रालय के राष्ट्रीय जल मिशन के संयुक्त सचिव सुमंत नारायण कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत और अमेरिका के बीच संतुलित और व्यावसायिक रूप से सार्थक व्यापार समझौते के लिए बातचीत जारी। व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया रिपोर्ट खारिज की। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत का कुल निर्यात 11.37% वृद्धि के साथ $232 अरब से अधिक हुआ। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य को 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान सूचना और संचार अधिकारी की हत्या मामले में दोषी ठहराया गया। होर्मुज जल डमरू मध्य पर नियंत्रण को लेकर विवाद बढ़ने से अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर हमले तेज हुए। भारत ने लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को 270 रन से हराकर इतिहास रचा और जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का
6: गुड इवनिंग।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार संध्या का अनुप्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के सागर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 102.6 मेगाहर्ट्ज पर। रात के 9 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम मन चाहे गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपकी फरमाइशें पूरी करेंगे जो कि हमें मिलती हैं व्हाट्सएप पर, SMS और पत्रों के माध्यम से, और सुनवाएंगे आपके पसंदीदा फिल्मी गीत। पहला गीत शामिल कर रहे हैं फरमाइशकर्ताओं के नाम पहले आपसे साझा कर रहे हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह और रिंकी शेखावत राजस्थान से, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, शाकिर, अलकमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री, गोगावा से इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी और हाजी अयुब शेरी, मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं गाइड फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में गीत। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है, संगीत ST बर्मन का है।
1: दिन ढल

श्रोताओं, कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप सभी ने फरमाइशें भेजी हैं। सालार पहलगाम कश्मीर से पीरज़ादा मिराज़दीन, महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार साई गायकवाड़, कलानौर से नरिंदर शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा, हरियाणा से राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव हरमन और इनके परिवार के सभी सदस्य। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में शैलेंद्र का लिखा हुआ गीत। संगीत किशोर कुमार का है, फिल्म का नाम है दूर गगन की छाव में।

श्रोताओं कार्यक्रम में अब अगला गीत सुनिए। आप सभी ने फरमाइशें भेजी हैं। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, पूजा वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती, गौरी, ओमकार, मोताला, महाराष्ट्र से। मध्य प्रदेश सनावत खरगोन से अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोडाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए इंदिवर का लिखा हुआ गीत, कल्याण जी और आनंद जी के संगीत निर्देशन में, सफर फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज़ में।

श्रोताओं, सफ़र फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम में अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं। आप सभी ने फरमाइशें भेजी हैं। सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक, कमल बालूजा, मधु बालूजा और सागर बालूजा मजनू काटीला से, पैठन से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव और सिया जाधव, जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव, सागर से बंडा तहसील से ग्राम बिनेका से बलराम सेन, अरविंद सेन, रेखा, रविंद्र, संगीता, महेंद्र, रामदेवी, सुरेंद्र, नंदिनी, रिया, गौरव, राज, आर्यन, कौशल और दीप्ति। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए खुशबू फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। इस गीत को गुलजार ने लिखा है, संगीत आर डी बर्मन का है।

श्रोताओं, कार्यक्रम मन चाहिए गीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के सागर केंद्र से। और कार्यक्रम में अब अगली फरमाइश। आप सभी ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश,

जीविका, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा अविका और विशाखा, अशोक कुमार, सानू, अर्चना, अविका, जीविका, गणेश फैक्ट्री श्रीरामपुर से और पुनावले से अजय सोनवने और साईशा, महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर और प्रदीप येमेकर, सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकैस्ट्रो। आप सभी की फरमाइश पर सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत। गुलजार का लिखा हुआ, खयाम ने संगीत तैयार किया है। फिल्म का नाम है थोड़ी सी बेवफाई।

थोड़ी सी बेवफाई, इस फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। समय को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में एक और फरमाइश हम पूरी कर रहे हैं। आप सभी श्रोताओं ने व्हाट्सएप पर टेक्स्ट भेजे हैं। खंडवा से मोहम्मद रफ़ीक, बेनज़ीर कौसर, मोहम्मद साकिर, अलमास बानो, मोइन छोटू, शंकर लाल, वनीता और मोहम्मद हसनैन। खंडवा से हस्सू बाबा, मोइन छोटू और मोहम्मद फाजिल। दतरेंगी से भागवत वर्मा, रुद्र वर्मा, शांति देवी, लीलावती और विनीता। महाराष्ट्र विदर्भ यवतमाल से संतोष खड़से और विनोद खड़से। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, सुरीत रमेश साहू।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम मनचाहे गीत को हम संपन्न कर रहे हैं। ये आकाशवाणी का सागर केंद्र है। अब से कुछ ही देर में यानी 9:30 से आप सुन सकेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: नमस्कार, आज का ये कार्यक्रम केंद्रित है भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध खलनायक और चरित्र अभिनेता प्राण पर,
1: जिसे दुनिया चंदन टाकू के नाम से जानती। और चंदन किसी का एहसान अपने सर पर नहीं रखता। मांगो, क्या चाहती हो?
2: मैं जो मांगूंगी वो आप दे सकेंगे?
1: मांग कर देखो, 10, 20, 25, 50 हजार, 1 लाख।
2: मुझे पैसों की जरूरत नहीं। तो आप की कोटे पर पैसा घुंघरुओं के झनकार के साथ बरसता है, जब चाहूं बटोर सकती हूँ।
1: फिर क्या चाहिए?
2: इज्जत चाहिए, जो इस बाजार से बहुत दूर है। आप सच जानिए, मैंने आज तक इज्जत का सौदा नहीं किया है। आवाज बेची है, अदाएं बेची है। आप मुझे एक औरत की जिंदगी दे सकते हैं, एक शरीफ घर दे सकते हैं, आप मुझे इस पाप के दलदल से निकाल सकते हैं।
1: तुम में किसी शरीफ का खून है, ये तुम्हारे खून और आत्मा की पुकार है। मैं वायदा करता हूं, जो कुछ तुम मांग रही हो मैं तुम्हें उसी तरह दूंगा जिस तरह एक बाप अपनी बेटी को जहेज देता है। कल सुबह एक शरीफ आदमी तुम्हें लेने आएगा, बेझिझक उसके साथ चले जाना।
0: सन 1940 से सन 2007 तक अभिनय जगत में सक्रिय रहने वाले अभिनेता प्राण केवल सिकंद की गिनती एशिया के 25 सर्वकालिक महान अभिनेताओं में की जाती है। 12 फरवरी सन 1920 को पुरानी दिल्ली में कोटगढ़ बल्लीमारा में जन्म हुआ था प्राण का। उनके पिता केवल कृष्ण सिकंद पेशे से सिविल इंजीनियर थे। उनकी माताजी का नाम था रामेश्वरी। युवा प्राण एक मेधावी छात्र थे और गणित पर उनका अच्छा अधिकार था। उनकी पढ़ाई देहरादून, कपूरथला, मेरठ, उन्नाव और रामपुर में हुई। पढ़ाई पूरी करने के बाद युवा प्राण दिल्ली की एक फोटोग्राफी कंपनी में अप्रेंटिस हो गए। फोटोग्राफी के सिलसिले में ही प्राण को शिमला जाना पड़ा, जहां उन्होंने रामलीला के मंचन में भाग लिया। उस रामलीला में मदनपुरी राम बने थे और प्राण बने थे सीता, और

0: प्राण ने सीता की भूमिका निभाई थी।
1: आज चाय भजिया कोर्स नहीं मिलेगा, आज दुकान बंद है।
2: हाँ, दुकान बंद है।
1: हाँ,
2: किस खुशी में?
1: तुम्हारी खुशी में। तुम खुश तो मैं भी खुश।
2: अरे मैं क्यों खुश भाई?
1: हम जो बनते हो, आधी आधी रात को एक सुंदर जवान लड़की को अपने घर में लाते, उससे खुशर पुशर बातें करते, पूछते मुझसे हो खुशी किस बात की।
2: किसने कहा तुझे ये सब?
1: एक काले कौए ने।
2: काले कौए ने?
1: हाँ, सुबह ही सुबह आया था। हकलाता जरूर है लेकिन सच्ची बात सुनाता है।
2: साला रामू गुपचुप सब बता गया तुझे?
1: अरे बड़े खुश नसीब। अच्छा ये बताओ कि अब कब इंतजाम करूँ?
2: किस चीज का?
1: अरे पंडित का, मंडप का, ढोल तमाशे का, बाजे का, बारात का।
2: बस बस बस बस प्यारे भैया, यही तो तुम में एक कमजोरी है।
1: क्या?
2: आम पके नहीं कि सारे मोहल्ले को दावत दे दी।
1: अरे भैया जब आम लगे हैं तो एक दिन पकेंगे भी, एक बार मुझे उससे मिला दो
2: ताकि तू अपनी बड़बड़ शुरू कर दे।
1: अरे भाई तुमने गड़बड़ की है तो मुझे बड़बड़ करनी पड़ेगी। अरे सुन सुन सुनो, गुस्से मत हो। अगर तुम बोलो तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा।

0: आठ से साठ हो सकते हैं, जो करता है पाता है। अरे अपने बाप का क्या जाता है। जोशी पड़ोसी कुछ भी बोले बोले, हम तो कुछ नहीं बोलेगा। हम बोलेगा तो बोलोगे के बोल।
1: लाहौर की हीरा मंडी में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दलसुख पंचोली की यहाँ नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दलसुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी।
2: कैदी नंबर 602
3: हाजिर है।
2: सर झुकाकर बात करो।
3: ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा।
2: बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना हो। होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं।
3: तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है।
2: लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुवीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस।
1: सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुईं, लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ी।

0: मुंबई में रहते हुए उन्होंने मरीन ड्राइव के डेलमर होटल में भी काम किया। मुंबई में मशहूर कहानीकार सादत हसन मंटो और अभिनेता श्याम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला।
1: मेरे बात करने का तरीका गलत था।
2: तरीका छोड़ो साहेब, बात गलत था। एनीवे हैव अ ड्रिंक, कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा।
1: नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता।
2: पर हम तो 24 घंटा पीता है साहेब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू बिग टी, लेट गो। कोई मतलब का बात है? बोलो।
1: आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बर्गेंद्र। मैं पूछने आया हूँ आपको कितना पैसा चाहिए।
2: हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं?
1: बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बर्गेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप, अच्छी मछलियां फांस लेते हैं, और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 30,000, 50,000।
2: पैसा का किताब लेकर आया तुम? टेरो मैन, तुम वेट, यू वेट मिस्टर नाथ। अभी बताता है तुमको, यू वेट। लेकिन तुम बड़ालों के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी, दिल नहीं है। अगर हम छोटालों के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना, उसको हम बेचता नहीं है, समझे? तुम
3: बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे, धंधा।
1: इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे?
0: फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई, और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गईं।
4: तू सुना, कॉलेज का क्या हाल है?
5: ठीक ही है। तो कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा?
4: वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना,
5: वो हितोपदेश पंचतंत्र में से।
4: हो, कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई।
5: कौन सी?
4: वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की।
5: हाँ हाँ,
4: जब गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे।
5: क्या बात है, दूसरे क्यों देख रहा? कहने का चाहता है
4: यही कि खरगोश अब भी संभल जा, वरना फंस जाएगा। 2 दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देख कर आया हूँ। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे।
0: करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल नेगेटिव रोल किया है,

0: एक तरफ होते दिलीप कुमार देवानंद या राज कपूर हीरो के रूप में, और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण।
1: चूट और चूट का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह, अरे गोलू गवाह AWD मतलब एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया?
2: आया सेठ रतिराम।
1: आओ सेठ रतिराम मलंग, हमें क्या करना होगा काम?
2: तलाक का है काम, बीवी पर बचलने का इल्जाम।
3: मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले।
1: अरे सतनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की।
3: गोलू, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस है।
1: सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम, अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो
2: एक नंबर का यहाँ से सेठ।
1: अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट।
4: गोलू भैया।
1: अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई?
4: सेठ रतिराम की बीवी हूँ, 3 बच्चे लेकर कहाँ जाओ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं।
1: ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा तंदा गवाही देना, तू ज्यादा पैसे दे दे।
4: उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं।
1: ओ, यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसे की दूंगा।
0: हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलूवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं।

0: फिल्मी दुनिया में प्राण साहब के अन्य प्रिय मित्रों के नाम हैं शम्मी कपूर, प्रकाश मेहरा, किशोर कुमार, दिलीप कुमार और मनोज कुमार। अभिनेता, निर्माता, निर्देशक मनोज कुमार की फिल्म उपकार में प्राण ने मलंग बाबा की यादगार भूमिका निभाई।
1: देख लिया भारत, कई बार मैंने तुझसे कहा कि जी भर कर लोगों पर उपकार कर, मगर पहले अपनी सोच। मगर पगले, तू अभी तक इतना भी नहीं समझा कि राम ने हर युग में जन्म लिया मगर लक्ष्मण फिर पैदा नहीं हुआ।

0: प्राण जिन दिनों फोटोग्राफर के रूप में नौकरी करते थे उन्हें महीने में 200 रुपए मिलते थे, लेकिन फिल्म यमला जट के लिए उन्होंने ये काम छोड़ दिया। यमला जट में काम करते हुए उन्हें महीने के 50 रुपए मिला करते थे। अभिनेता दिलीप कुमार के साथ प्राण की पहली फिल्म थी आजाद। इसी फिल्म से दोनों गहरे दोस्त बन गए। जिस फिल्म में प्राण साहब ने पहली बार दोहरी भूमिका निभाई वो थी जंगल में मंगल। इसके बाद इंसाफ और खून का रिश्ता में भी उन्होंने दोहरी भूमिकाएं निभाई। प्राण साहब ने तेलुगु और बांग्ला भाषा की फिल्मों में भी काम किया। खलनायक के रूप में उन्होंने अपनी अनेक भूमिकाओं में हास्य का रंग भी डाला। ये फिल्में थीं कश्मीर की गली, पूजा के फूल और हाफ टिकट।
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया, ओए आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ सवरिया।

0: ओ गुजरिया ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया
1: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया ओ संवरिया।

0: करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन चीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय लटकट रंगीले सांवरिया आंखें सीधी लगी दिल पे जैसे कटरिया।

0: सवरिया ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया
1: ओ गुजरिया
2: ओ सवरिया।
3: प्राण अनेक संस्थाओं से संबद्ध थे, खेलों से उन्हें बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे।

चाहते हैं बसना धड़कते दिल के हर राग में, चाहते हैं छुपना सांसों की झनकार में, झुक जाएंगे दिल की जानिब, तुम पुकारो तो सही।

देखते ही देखते कर देना घायल, अजी ये तो पहली ही मुलाकात है, बातों ही बातों में दिल चुराने का हुनर, वाह इस हुनर की क्या बात है।

खड़ी लेकिन वहाँ कोई और थी इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा।

तो प्यार इनको भी है, मेरा खुमार इनको भी है, इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी, और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

हम दोस्तों रुसवा हुए हम दोस्तों इनके लिए है मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम। हाँ देखिए साहिबो वो कोई और थी और ये नाजनी है मेरी, मैं इन पे मरता हूँ।

मुस्कम सही मैं सादा दिल मुजरिम सही इनके लिए ए मोहतरम छेड़ा किसी और को था खुदा की कसम हाथे।

मंजिल तय हुई, हम सफर भी बन गए, पता न चला ये दो दिल कब एक हुए, हमें पता न चला, मगर फिर भी हमारी उल्फत का चर्चा हर जुबां पे है।

देख लो, सोच लो, अब तो संभलना होगा। मिलना है कल तो आज की रात चलना होगा।

दौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरी गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे।

0: समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज भारत अमेरिका व्यापार वार्ता में गतिरोध की मीडिया खबरों को पूरी तरह झूठा, निराधार और भ्रामक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने कहा कि भारत और अमेरिका की टीमें व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए तेजी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि इस संबंध में पिछले महीने नई दिल्ली में उनके अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर के साथ बेहद सकारात्मक बैठक हुई थी। श्री गोयल ने कहा कि दोनों पक्षों ने ऐसे समझौते के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है जो दोनों देशों के व्यवसायों, किसानों, श्रमिकों और उपभोक्ताओं के हित में हो। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए दोनों देशों की टीमें लगातार सक्रिय हैं। इस वर्ष अप्रैल से जून के बीच भारत का कुल निर्यात 232 अरब डॉलर से अधिक होने का अनुमान है। पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले निर्यात में 11.37% की वृद्धि दर्ज की गई। एक रिपोर्ट।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार इस वर्ष जून में कुल निर्यात 73 अरब 45 करोड़ डॉलर रहने का आकलन है। इन आंकड़ों के आधार पर पिछले वर्ष के इस महीने के मुकाबले निर्यात में 9.48% की वृद्धि दर्ज की गई। जून में वस्तुओं के निर्यात में तेजी मुख्य रूप से हीरे और जवाहरात, इंजीनियरिंग सामान, जैविक और अजैविक रसायन, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और चावल में देखी गई। इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्यात पिछले वर्ष के जून में 4.14 अरब अमरीकी डॉलर से बढ़कर इस वर्ष जून में 4.93 अरब डॉलर हो गया और इस तरह लगभग 19% की वृद्धि दर्ज की गई। मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जून में वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात 88.76 अरब डॉलर होने का अनुमान है। ये पिछले वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 26% अधिक है। अमरीश की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान दोनों ने हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण होने का दावा किया है। इससे क्षेत्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक प्रयासों को लेकर नई चिंताएं पैदा हो गई हैं। ओमान के पास हॉर्मुज जल डमरू मध्य में वाणिज्यिक जहाजों पर ईरान के हालिया ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ गया है। इसके बाद से हॉर्मुज से कोई भी वाणिज्यिक पोत नहीं गुजरा है। अमरीका ने कहा कि उसने रात भर ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमेरिका के अनुसार ये कार्रवाई ईरान द्वारा वाणिज्यिक जहाजों पर किए गए हमलों के जवाब में की गई है। वहीं ईरान ने जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिका के सैन्य अड्डों के साथ साथ ओमान में रडार ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया है। वियतनाम के फू क्वॉक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर भारत लाए गए हैं। भारत के दूतावास ने कहा कि पार्थिव शरीरों को हो ची मिन सिटी से वियतनाम एयरलाइंस की उड़ान से मुंबई लाया गया। दूतावास ने कहा कि आंध्र प्रदेश, केरलम और तमिलनाडु की राज्य सरकारें पार्थिव शरीर को उनके संबंधित राज्यों में अंतिम संस्कार के लिए ले जाने में समन्वय करेंगी। भारतीय दूतावास ने इस कठिन समय में सहयोग और सहायता के लिए वियतनाम सरकार और वहां के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में नाव पलटने की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। 2 जुलाई को शंकरपुर बंदरगाह से मछली पकड़ने निकले 15 मछुआरों की नाव का 5 जुलाई के बाद संपर्क टूट गया था। तटरक्षक बल, नौसेना और राज्य एजेंसियों ने संयुक्त अभियान में 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में नाव का पता लगाया। हादसे में 9 मछुआरों के शव बरामद किए गए हैं जबकि 6 अब भी लापता हैं। राज्य के मत्स्य मंत्री राजेश महतो ने कहा कि सरकार इस कठिन समय में प्रभावित परिवारों के साथ है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 चैंपियनशिप में 16 भारतीय मुक्केबाजों ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है। अंडर 23 में 8 मुक्केबाज और अंडर 19 में 8 मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। 7 मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में जगह पक्की की। अंडर 23 में 5 महिला और 3 पुरुष मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई। अंडर 19 में 8 महिला खिलाड़ी फाइनल में पहुंच चुकी हैं। पुरुष वर्ग के सेमीफाइनल जारी हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by R.S. Raghu. Commerce and Industry Minister Piyush Goyal today dismissed media reports of a deadlock in India-US trade talks, calling them as completely false, baseless and misleading. In a social media post, Mr. Goyal said, India and the US teams are fully engaged for a trade pact that is balanced, commercially meaningful and delivers tangible benefits for businesses, farmers, workers and consumers. He said, he had a fantastic meeting with the U.S. Trade Representative Jameson Greer in New Delhi last